मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। श्रोताओं, आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित

0: प्रेरित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीटिंग वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं। ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। श्रोताओं, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्म्यो बंधनान मृत्यु मूर्छि मामृतात्। श्रोताओं, सावन के इस तीसरे सोमवार की और नागपंचमी की आप सभी को ढेर सारी बधाई और

जिस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन संपूर्ण सृष्टि का आधार है, उसी प्रकार जीवन में प्रेम और धैर्य का होना आवश्यक है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में गाए इस

0: सचमुच महादेव शंकर सबसे सीधे साधे और सरल देवता हैं। श्रोताओं, ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के स्वर में, और अब रुकते हैं आराधना कार्यक्रम में एक अंतराल के लिए। तो आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब, हम बस अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?

0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। महादेव इतने सीधे और सरल हैं कि एक पुष्प, एक बेलपत्र और एक लोटा जल की धार, बस इतना ही है शिव करते अपने भक्तों का स्वीकार और अपने भक्तों को कर देते हैं उद्धार। श्रोताओं लीजिए सुनिए शर्मा बंधु के स्वर में गए इस भक्ति रचना को।

एकांत में अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि भटकता हुआ मन ही दुखों का कारण बनता है। और श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं पंडित जसराज के स्वर में गाया ये शिव ध्यानम।

0: प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। और इसी के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप राजा राम मोहन राय के विचार सुनेंगे।
1: राजा राम मोहन राय का जन्म 12 मई 1772 को बंगाल के राधानगर स्थान में हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उनके विचार बहुत उदार हो गए थे। उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धर्म की स्थापना की। ये धर्म ब्रह्म समाज नाम से प्रचलित हुआ। इसमें उन्होंने एक ईश्वर की मान्यता पर जोर दिया। किसी भी तरह के अंधविश्वास, जादू टोना या कुप्रथा को इसमें स्थान नहीं था। उपनिषदों को उन्होंने अपने धर्म का आधार बनाया। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में फैली तमाम कुरीतियों को जड़ से मिटा डालने का संकल्प किया था। 5-6 साल की छोटी उम्र में ही उन दिनों बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। बाल विवाह की इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया। जनता से ये अपील की कि वे खुद इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन जनता तो मानो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे उठाने के लिए भारी धमाकों की जरूरत थी। पति के मरने के बाद

0: सती विधवा नारी को उन दिनों जिंदा आग में झोंक दिया जाता था। राममोहन राय ने इस समस्या के हर पहलू का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि इस कुप्रथा को जारी रखने में घर के मुखियाओं का भी पूरा हाथ होता है। पति के मरने के बाद विधवा औरत के भरण पोषण का पूरा भार उन पर आ पड़ता है। इस भार से बच जाने के लिए वे उस कुप्रथा को जारी रखना ही ज्यादा पसंद करते थे। पति की मृत्यु के बाद समाज में विधवा स्त्रियों का घोर अनादर किया जाता है। उनके सिर के बाल कटवा दिए जाते हैं, उन्हें कोई भी गहना पहनने नहीं दिया जाता। सफ़ेद किनारी वाली धोती के अलावा कोई रंगीन कपड़ा वे नहीं पहन सकती। लोग उनकी छाया से छू जाने में भी पाप समझते हैं। राममोहन राय ने इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने दो तरह के अभियान चलाए। एक अभियान अंग्रेज सरकार द्वारा कानून बनवाने का और दूसरा जनता में इसके खिलाफ वातावरण तैयार करने का। वे ये जानते थे कि आज का सभ्य और पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बर्बर कुप्रथा का कभी समर्थन नहीं कर सकता था। उनका विश्वास था कि यदि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए और उन्हें अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी दी जाए तो वे भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सकती हैं। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए वे प्राचीन भारत की लीलावती, मैत्रेयी आदि विदुषी नारियों का उदाहरण दिया करते। इन नारियों ने अपनी विद्वत्ता से सारे भारतवर्ष का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया था। स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। राममोहन राय ने स्त्रियों के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें संपत्ति पाने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। विधवा विवाह में भी वे कोई दोष न मानते थे। यदि एक पत्नी के मरने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो स्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया।
1: श्रोताओं, विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप राजा राम मोहन राय के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे नींबू वर्गीय पौधों में होने वाले प्रमुख रोग और उसका निदान, और इस विषय पर डॉक्टर अतुल बावने से बातचीत की है दुर्गेश कुमार मिश्रा ने।
1: पंचों देखा भाई, खेती के साथे साथे अपने कुछ भैया अरे बागवानी भी करे हैं। बागवानी में तो बहुत सारे भाई पपीता भी लगा हुआ थे, आम के भी बाग बाटे, लेकिन कुछ भैया अरे नींबू भी लगाए रहा। उसमें काका रोग लगत है और ओकर उपचार कैसे कीन जाए, आज अपने कार्यक्रम में जानकार भैया आए हैं अतुल सुरेश बावने, जे हमें सबके बताई हैं कि नींबू में ऐसे कौन कौन से रोग लागत है और ओके निदान कैसे कीन जात। अतुल भैया आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे। सबसे पहले हमारे किसान भैया अरे ई जाना चाहिए ओ हमें कौन कौन से प्रमुख बीमारी हो, ई सबसे पहले बता।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम नींबू के फसलों में कौन से प्रमुख बीमारियाँ होती है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रमुख इसमें यह है कि नींबू के वर्गीय बीमारियों में हमें उसे कैसे पहचानना है, जैसे कि उसके लक्षण क्या है, और उस लक्षण को जानने के बाद उसके ऊपर निदान क्या कर सकते हैं। इसमें प्रमुख रोग है, पहला है सिट्रस कैंकर,

0: यह एक बैक्टीरिया जनिक रोग है। दूसरा है गमोसिस, यह एक फूफाद से होने वाला रोग है। तीसरा है सिस्टस ट्रिस्टिजिया वायरस, ये एक वायरल रोग है जो वायरस के कारण होता है। उसके बाद दूसरा रोग आता है सिट्रस ग्रीनिंग, यह भी बहुत खतरनाक रोग है। इसके बाद आता है पत्ती झुलसा और फल सड़न, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लीफ स्पॉट और फ्रूट रॉट, यह फुफाजनक रोग है।
1: अतुल भैया, जैसे ये पांच प्रकार के आप जो नींबू में रोग लगा थे, तो ये बताएं अब इसमें जैसे अपने किसान भैया रे ये जाना जरूर चाहिए कि ये संबंधित रोग के लक्षण का होते, कैसे पहचाने कि संबंधित रोग ही के बा एक निदान कैसे करें। तो अगर जैसे बात करत रहें कि आप साइट्रिस कैंकर के, तो साइट्रिस कैंकर कैसे पहचाने।
0: सबसे पहले जब हम खेतों में या फिर जहाँ भी हम फसलों में जाते हैं नींबू के पौधों को देखते हैं, एक बैक्टीरिया जनिक रोग है जो कि सैंथामोनस सिट्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो जैसे कि लक्षण ये है सिट्रस कैंकर के कि जो पत्तियाँ होती है, शाखाएँ होती है और फल होते हैं, उस पर गोल उभरे हुए धब्बे बनते हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे पत्तियों पे थोड़े थोड़े धब्बे बनेंगे, शाखाओं पे धब्बे बनेंगे, साथ ही साथ आपके फलों पे भी आपको धब्बे दिखाई देंगे। धब्बों के चारों ओर पीली रेखा होती है, अगर पीली रेखा होती है तो ये आपका सिट्रस कैंकर का पहला लक्षण है। उसके बाद फल झड़ जाता है, पहले स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाएगा, उसके बाद जब बढ़ जाएगा, इसका प्रादुर्भाव ज़्यादा हो जाएगा, ये जब फल पे जब आएगा झड़ जाएगा, या फिर अगर जिस फल पे ये रोग दिखेगा उसका आकार जो है बिगड़ जाएगा। अब नियंत्रण की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले तो जिस नर्सरी से हम पौधे खरीदते हैं वह एक प्रमाणित नर्सरी होनी चाहिए।
1: अब मतलब एक शुरुआती दौर में इस तरीके के पौधे खरीदें जहाँ पे प्रमाणित नर्सरी हो वहीं
0: हाँ,
1: से।
0: और जिस नर्सरी में आप पौधे खरीदोगे ये सुनिश्चित करना है कि पौधा स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार का उसमें रोग ना हो। कभी ये होता है कि कुछ कुछ वैरायटी जो मार्केट में उपलब्ध है उसी तरीके से पौधे आप कोई खरीदते हैं, कोई रेजिस्टेंट वैरायटी होती है तो आपको रोग उसके ऊपर नहीं लगेगा।
1: एक तो आप बताएं साइट्रस कैंकर के
0: हाँ जी
1: एक तरह जैसे जो फफूंद नासी जो बीमारी है गमोसिस,
0: हाँ,
1: इसमें पौधों पे का असर पड़ा था।
0: जैसे गमोसिस की बात की जाए, ये फफूंदनाशक से होती है, फाइटोप्तोरा नामक फफूंद से हो जाती है। इसमें तन या जड़ों से गोंद जैसा रस निकलता है, जो छल होती है वो काली पड़ जाती है, उसी के कारण जब कुछ समय के बाद पौधा सूखने लग जाता है, यह अधिक नमी या खराब जल निकास के कारण होता है। अगर नमी ज़्यादा हो तो भी जब यह फूफाद इसे ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं
1: अच्छा,
0: इसके
1: अगर नमी ज्यादा रही तब वो एक प्रकार की बीमारी पौधों में लग
0: जब
1: जाएगी।
0: लग जाएगी। आपको प्रमाणित नर्सरी से आपको
1: बिल्कुल
0: स्वस्थ
1: बिल्कुल,
0: पौधा लेना है, पहला
1: अच्छा,
0: वही रहेगा
1: यानी अगर
0: स्वस्थ।
1: शुरुआत में ही अगर हम स्वस्थ पौधा ले प्रमाणित नर्सरी से, तो निश्चित भाग भी कई सारे रोग हम बचा जा सकते। बिल्कुल।
0: जैसे कि गमोसिस में जहाँ पे लक्षण दिखते हैं उसकी टहनी या छाल हटा लीजिए, साथ ही साथ बोर्डो पेस्ट, वहाँ पे बोर्डो पेस्ट का लेप लगा लीजिए, उससे भी उस पे नियंत्रण पाया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अतुल भैया, एक ग्रीनिंग रोग के बात आप करे रहें, ओमे का हो तो लक्षण और उसके उपाय कैसे किए जाए।
0: ग्रीनिंग रोग यह सिट्रस ग्रीनिंग के भी नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ यह बैक्टीरिया जनिक रोग है। इसमें भी पत्तियों का पीला पड़ना, धब्बे आना और जिंक की कमी जैसे इसके लक्षण दिखते हैं। जैसे कुछ पौधों में मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बोलते हैं जिंक, जब हम खाद डालते हैं तो सूक्ष्म जीव खाद जो होते हैं उसके साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात की जाए तो जिंक की कमी के तरह वो धब्बे दिखते हैं, लेकिन यह जिंक की कमी के कारण नहीं, ये सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया के वजह से जनक रोग है तो
1: जी
0: होता है। इसमें फल का जो है आकार तो बदलता ही है, साथ ही साथ इसमें फल में जो कड़वापन आ जाता है, पौधे धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस रोग में हम व्यवस्थापन के लिए यही कहेंगे कि आपको स्वास्थ्य पौधा तो पहली बार लेना है किसी भी नर्सरी से।
1: बिल्कुल बिल्कुल। उपाय का
0: दूसरे उपाय जैसे कि जो भी आपके फल होते हैं, टहनियाँ होती है जो प्रभावित हुई है रोग से, उसे हटाकर नष्ट कर दीजिए।
1: अच्छा, वो टहनी जहाँ जहाँ पे इस प्रकार के कोनो रोग हों वो
0: हाँ,
1: का पहले काट दें,
0: काट
1: काट
0: दीजिए।
1: के हटा दें।
0: और काट के हटाने के कारण ये भी है कि उसका

0: वायु संचार अच्छा होगा, सूर्य प्रकाश अच्छा मिलेगा, जब सूरज की किरणें अच्छी गिरेगी तो उससे वायु का आना जाना रहेगा और आपका जो है पौधा स्वस्थ भी रहेगा। साथ ही साथ जब आपको रूट स्टॉक जब लगाते हैं, इससे रूट स्टॉक का ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि कार्बन डाइजिन से कर सकते हैं, इसका हम घोल बना के रूट स्टॉक को उसमें डुबो के उसके बाद ही हम पौधा लगाएं। और साथ ही साथ हमें सुनिश्चित करना है कि अधिक नमी का भी ना हो,
1: जी।
0: वातावरण अच्छा हो।
1: अतुल भैया, एक बात और कहते रहे कि फफूंदनाशी पत्ती झुलसा और फल सड़न वाला रोग भी लागत है,
0: हाँ जी,
1: एक उपाय कैसे करें और का पहचाने कैसे?
0: पत्ती झुलसा और फल सड़न यह एक फुफाद नाशक जनक बीमारी है। ये कीड़ों से भी फैलता है। जब ये फुफाद के लक्षण होते हैं, जब कीड़ा किस पे कोई आता है खाने के लिए या रस शोषण करने के लिए, उसी के साथ वो फुफाद दूसरे स्वास्थ्य पौधों में भी फैल जाता है।
1: फैल जाते हैं।
0: उसके लक्षण ये है कि पत्ते पे आपको छोटे छोटे धब्बे दिखेंगे, उसका आकार अनियमित होता है,
1: अच्छा,
0: उसके बाद उसका आकार बढ़ते जाता है, समय
1: धीरे
0: के
1: धीरे वो बढ़
0: हिसाब
1: जाता।
0: से बढ़ते जाता है। कुछ समय कालांतर के बाद उसका पत्ती का रंग भूरा पड़ जाएगा, फिर काला होगा और फिर पत्ती गिर जाएंगे
1: कोई उपाय
0: सूख के।
1: कैसे करें?
0: इनका उपाय ये है कि आपको पहले इनका कार्बन डाइजिन का स्प्रे करना पड़ेगा। 0.02% आपको 1 लीटर में मिला के उसका स्प्रे करना है।
1: बिल्कुल
0: स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से।
1: जी।
0: और जैसे कि आपकी टहनियाँ पत्तियाँ जो सड़ जाती है उसे आपको हटाना
1: काट
0: है,
1: के
0: काट
1: निकालना।
0: के निकालना है, खाल है काट के निकालना है, उसको नष्ट कर देना है। साथ ही साथ आप मैनकोजेब और कार्बन डाइजिन का तो छिड़काव कर ही सकते हैं। नीम तेल का भी आप जैविक के हिसाब से
1: हाँ, नीम के तेल के भी।
0: 5 मिली प्रति लीटर में उसका घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। अब रही बात फल सड़न की। अब फल सड़न में ये होता है कि फल का जो आकार होता है वो बिगड़ जाता है, लेकिन उससे पहले फल के ऊपर धीरे धीरे छोटे छोटे धब्बे आते हैं। धब्बे दिखने के बाद वो कुछ कालांतर में आपका उसके धब्बे का बढ़ जाता है। रूट स्टॉक से जब हम पौधा लगाते हैं तो उसे हम कार्बन डाइजिन का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। कार्बन डाइजिन और मैनकोजेब
1: जी।
0: इनका हमें घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। जैविक में देखेंगे तो नीम तो है ही।
1: अतुल भैया, जितनी बढ़िया जानकारी दें कि कैसे प्रबंधन कीन जाए, निश्चित बाकी अगर ये जितना आप बताएं, अगर यही तरीके से प्रबंधन करी है कि कोनो भी रोग समझ में आवत है ओके उपचार का बात है, तो निश्चित बाकी अच्छा पैदावार हुई। इतनी बढ़िया जानकारी दें आपके कार्यक्रम में आवे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे नींबू वर्गीय पौधों में होने वाले प्रमुख रोग और उसका निदान, और इस विषय पर डॉक्टर अतुल बावने से बातचीत की दुर्गेश कुमार मिश्रा ने। और इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम आपको डॉक्टर राधे श्याम कुशवाहा की वार्ता सुनवाएंगे। वार्ता का विषय है हड्डियों में होने वाले सामान्य रोग।
1: आज हम लोग हड्डी की सामान्य बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो ढेर सारी बीमारियां हड्डियों में होती हैं, लेकिन कुछ सामान्य बीमारियां जो अक्सर मिलती हैं उसमें है CTEV यानी कंजनाइटल टेलीपस इकोनोवायरस, रिकेट्स, ट्रॉमा, स्पोर्ट्स इंजरी, आर्थराइटिस, लो बैक पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रोजन शोल्डर, ट्यूमर यानी गांठ या कैंसर जो हड्डियों में होती है, ऑस्टियोमलाइटिस यानी जो मवाद बन जाते हैं हड्डियों में। ये कुछ सामान्य बीमारियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंजनाइटल टेलीपस इकोनोवायरस यानी क्लबफुट के बारे में बात करते हैं। यह बच्चों में होने वाली सबसे ज़्यादा पैदाइशी बीमारी है। पैरों की सबसे ज़्यादा होने वाली पैदाइशी बीमारी टेलीपस इकोनोवायरस होती है। 1000 जीवित जन्म पर एक क्लबफुट होता है, जिसमें से 50% पैरों में दोनों पैर इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर समय इसके साथ और कोई विकृति नहीं होती है, लेकिन और भी विकृति जैसे रीढ़ की हड्डियों में हो सकता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो विकृति स्थायी हो सकती है तथा आगे चलकर चलने में दिक्कत हो सकती है और साथ में दर्द भी रह सकता है। इसके लक्षण में पैरों के पंजे अंदर की ओर टेढ़े मुड़े हुए होते हैं। अगर कारण की बात करें तो इसमें कोई नोन रीजन नहीं है, यानी अज्ञात होता है। रिस्क फैक्टर्स में है आनुवंशिक धूम्रपान माता द्वारा जो किया जाता है,

0: पुरुष होने में और इथनी सिटी यानी जातीयता, इसमें मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसके इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो क्रमिक प्लास्टर लगाने की विधि होती है जिसको पॉजिटिव मेथड कहते हैं, जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इफेक्टिव भी है। इसमें आखिर में टिनोटमी यानी टेंडो अकेलिस टेंडन के छोटा सा चीरा लगा के उसको कट करके फिर प्लास्टर लगाते हैं। 4 साल के अगर बच्चे हो जाएं और उनका करेक्शन नहीं हुआ है तो उसमें सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी की जाती है, और अगर उससे भी ज़्यादा बड़े बच्चे हो जाते हैं तो हड्डियों में कट करके तब फिर उसकी सर्जरी करके उसको करेक्शन किया जाता है। अब दूसरी बीमारी हम रिकेट्स या सूखा रोग के बारे में बात करते हैं। सूखा रोग आपके बच्चों के हड्डियों में होने वाली एक दशा है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और पैर धनुषाकार हो जाता है। विटामिन डी की कमी इसका मुख्य कारण है। विटामिन डी का स्रोत भोजन है और सूर्य का प्रकाश होता है। त्वचा पे सूर्य प्रकाश पड़ने से विटामिन डी का निर्माण शरीर करता है। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे वसी मछली और मछली के तेल प्राकृतिक रूप से विटामिन डी से भरपूर होते हैं, परंतु ऐसे खाद्य पदार्थों की कमी होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग विटामिन डी भोजन में मिलावट करके ही पाते हैं, जैसे दूध व डेयरी प्रोडक्ट में, बच्चों के जो फार्मूला फूड्स होते हैं उसमें मिलता है, अनाज में और संतरे के जूस में विटामिन डी को मिलाया जाता है। लक्षणों की बात की जाए तो हड्डियों में टेढ़ापन, हड्डियों में दर्द, दांत की समस्या जैसे कैविटी, वृद्धि में देरी, कमजोर मांसपेशियां, मिर्गी के दौरे, पसेलियों के सिरों पर सूजन, रीढ़ में असामान्य घुमाव, घुटनों तथा टखनों का चौड़ा होना। कारण, अगर इसके कारणों की बात करी जाए तो आनुवंशिक तथा न्यूट्रिशनल यानी पोषण दो कारण होते हैं। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ऐसे बच्चे जो लगातार बहुत लंबे समय तक स्तनपान करते हैं, बच्चे जो 6 से 24 माह की उम्र वाले होते हैं, जो बच्चे प्री मेच्योर पैदा होते हैं, गहरे रंग के चमड़ी वाले बच्चे, बच्चे जो सीधे सीधे धूप के संपर्क में बहुत समय तक नहीं रहते हैं, उनमें रिकेट्स होने की संभावना बहुत रहती है। अगर जाँच की बात करी जाए तो एक्सरे, खून की जाँच तथा पेशाब की जाँच कराई जाती है। इसके इलाज में ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी दिया जाता है। भोज्य पदार्थों जो कि विटामिन डी से प्रचुर हो ऐसे दिया जाता है। पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश में संपर्क में रखा जाता है बच्चों को। अगर टेढ़ापन आ गया है तो हड्डियों को सपोर्ट दी जाती है और कभी कभार सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम ट्रॉमा की बात करते हैं। ट्रॉमा यानी क्षत, सदमा या अभिघात। हड्डियों की तरफ से तो हम फिजिकल इंजरीज के ही बारे में बात करते हैं, जिसमें जो कि घाव, हड्डियों के टूटने या आंतरिक अंगों के नुकसान के तौर पर आती है, जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं। अक्सर लोग जिन्हें शारीरिक चोट लगती है उन्हें मानसिक आघात भी होता है, जो कि असोचनीय चोट की वजह से होता है। एक कारण के बारे में अगर हम बात करें तो शरीर से बाहर के बल या धूस अथवा चुभने वाली चीजों से हो सकती है, जैसे ऊंचाई से गिरना, सड़क दुर्घटना, क्रश इंजरीज, मारपीट होना, आग से जलना इत्यादि। लक्षणों में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा दर्द, घाव, हड्डियों का टूटना, हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी, रक्तस्राव यानी हेमरेज, ढेर सारा खून का बहना, बेहोशी होती है और कभी कभार मौत हो जाती है। इसमें जो जांचें कराई जाती हैं, खून की जांचें रूटीनली जो होती हैं, पेशाब की जांचें, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और कभी कभी कंट्रास्ट सीटी और एमआरआई करवाई जाती है। इलाज के संदर्भ में अगर हम इसके बारे में बात करें तो कम गंभीर चोटों का इलाज दर्द की दवाइयों, मलहम पट्टी तथा एंटीबायोटिक्स के द्वारा हो जाता है, परंतु ज़्यादा गंभीर चोटों का इलाज अस्पताल में भर्ती के साथ साथ आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है तथा कई बार सर्जिकल तरीकों से इलाज करना पड़ता है। धन्यवाद।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी हम आपको डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा की वार्ता सुनवा रहे थे। वार्ता का विषय था हड्डियों में होने वाले सामान्य रोग, और इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा सुबह 7 बजे, और 7:10 पर फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। सुबह 7:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कमल कुमार का बांसुरी वादन हम आपको सुनवाएंगे, और दोपहर 12:15 बजे पंडित सीआर व्यास का ख्याल गायन, और रात 10:30 बजे मधुसूदन भावे का ख्याल गायन। सुबह 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की है, और सुबह 9:00 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम का आप आनंद लीजिएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर मोहम्मद फिरोज अहमद के स्वर में गाए गीत और भजन का आनंद लीजिएगा। सुबह 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की है। लोकगीत कार्यक्रम में 10:30 बजे खोखा मिर्जापुरी के स्वर में गाए लोकगीतों का

आनंद लीजिएगा। दिन में 11 बजे एक ही कलाकार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे, प्रस्तुति प्रदीप मिश्रा की है। दोपहर 12:30 बजे आपकी पसंद के गीतों का आनंद लीजिएगा, कार्यक्रम आपकी पसंद में, प्रस्तुति मधु कुमार की है। दोपहर 1:15 बजे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में चर्चा नागपंचमी, संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण का संदेश पर, साथ ही मिलीदास की वार्ता संगीत उपासना सुरों की, जायका में ठेकुआ बनाने की विधि बताई जाएगी। नन्ही दुनिया कार्यक्रम में शाम 5:00 चर्चा दांतों की सही देखभाल पर और आओ जाने में बच्चे सुनेंगे सांपों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। शाम 5:15 युवाणी कार्यक्रम में चर्चा प्लास्टिक मुक्त जीवन पर और प्रेरणा पुंज में बात होगी मदनलाल ढींगरा पर और अंसल रूबे की वार्ता सुनिएगा। वार्ता का विषय है प्लास्टिक मुक्त भारत और युवा प्रतिभागिता। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 आज चर्चा वर्षा ऋतु में कृषि यंत्रों की देखभाल पर और लोक भाषा में कविता पाठ सुनिएगा शिव प्रताप से, साथ ही मौसम संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में श्याम मिश्र की वार्ता हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की यात्रा आप सुनेंगे। रात 8:30 कानून और हम कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अधिवक्ता अतुल कुमार यादव की वार्ता डिजिटल युग में निजता का अधिकार और डेटा संरक्षण कानून। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

आप हमारे सभी कार्यक्रमों का आनंद न्यूज ऑन AIR ऐप पर ले सकते हैं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: न्यूनतम समर्थन मूल्यं च निरन्तरं वर्धितमिति। नवदिल्ल्याम् अद्य केन्द्रीय राज्यमन्त्रिणा डॉक्टर जितेन्द्र सिंहेन 17 जनेभ्यः राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कारः प्रदीयते। राष्ट्रनिर्माणे विशिष्ट योगदानं दत्तवद्भ्यः सेवानिवृत्त कर्मचारिभ्यः एतत् पदकम् अर्प्यते। एतदतिरिच्य पेंशन मित्र पुस्तिकायाः विमोचनं तथा 15 वित्तकोषाणां प्रदर्शनी अपि आयोज्यते। एयर इंडिया विमान सेवया विशाखापत्तनम नगरस्य सर्वाः वैमानिक यात्राः अद्य भोगापुरात् अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनात् अनुवर्त्यन्ते। यासाम विमान संकेतः VTZ इति पूर्ववत् एव स्थास्यति। संस्थया भोगापुर देहली मार्गयोः मध्ये प्रतिसप्ताहं 14 उड्डयनानां चक्रं निर्दिश्यते। अस्य आधुनिक विमानपत्तनस्य प्रायः 77,000 वर्गमीटर परिमिते प्रांगणे 22 चेक इन स्थानकानि, 18 स्वचालित भार अर्पण यंत्राणि, 7 च उड्डयन सेतवः संयोजिताः सन्ति। राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरणेन UGC नेट परीक्षायाः आंग्ल वाणिज्य समाजशास्त्र इति विषयत्रयस्य पुनः परीक्षा संचालनस्य घोषणा कृता। परीक्षायां संभूतानां अशुद्धीनां परिष्काराय सितंबर मासस्य 9 दिनांके आंग्ल वाणिज्ययोः तथा सितंबर मासस्य 10 दिनांके समाजशास्त्रस्य पुनः परीक्षा भविष्यति। विशुद्धानां निष्पक्षाञ्च परीक्षां विधातुम् एषः निर्णयः समिति अनुशंसया गृहीतः। भारतं श्वः नवदिल्ल्यां 12 ब्रिक्स ऋतुदशा मन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोजयिष्यति। इतः प्राक् अद्य ऋतुदशा कार्यसमूहस्य जलवायुपरिवर्तनस्य सुस्थिरविकासस्य विषये सम्पर्कसमूहस्य च ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारिणां सभा भविष्यति। 26,000 भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षपदस्य विषयः स्थितिस्थापकतायाः नवान्वेषणस्य सहकारस्य सुस्थिरतायाः च निर्माणम् इत्यस्ति। भारतम् अद्यारभ्य अगस्तमासस्य 23 दिनांकं यावत् नवदिल्लीनगरे स्थिते इन्दिरागांधी स्टेडियम् इति स्थाने BWF विश्व चैंपियनशिप स्पर्धाम आयोजयिष्यति। 9,000 स्पर्धायाः अनन्तरमिदं द्वितीयवारं यदा भारतदेशः एतां स्पर्धाम आयोजयति। FIH पुरुष हॉकी विश्व चषक स्पर्धा मालिकायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम अद्य स्वस्य विजय यात्रां निरन्तरं कर्तुं इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 7 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं सुधा मल्होत्रा और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
2: एपिसोड 31 3-1

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती

ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थी सुधा मल्होत्रा और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं, सांसों की माला पर सिमरूं शिव के, शिव का नाम फिल्म से। और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है सिंपल राजा ने, अनुरव दत्त ने संगीत दिया है। ये भजन चला आप सबके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, उम्मीद है कि ये भजन सुनकर आप सभी झूम गए होंगे। और अब हम आपको सुनवाते हैं चार धाम फिल्म का भजन। हरिहरण के स्वर में उदय शंकर पानी ने इस भजन की रचना की है और सुरेंद्र कोहली ने संगीत दिया है। और ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब। सुबह के 7:20 होने वाले हैं।

प्रार्थना संदेश में प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का किया आह्वान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। अब समाचार विस्तार से। नागपंचमी का पर्व आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक तरीके से श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव से कामना की है कि प्रत्येक घर आंगन आनंद शांति और खुशहाली से आलोकित रहे। उन्होंने नागपंचमी को प्रकृति के प्रति श्रद्धा सह अस्तित्व और शिवत्व का संदेश देने वाला पावन पर्व बताया है। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पर्व के कारण प्रदेश भर के शिव मंदिरों में आज तड़के से ही श्रद्धा

0: लोगों की भारी भीड़ है। श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर जय घोष करते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्त श्रद्धालु अपने घरों में आज भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बीच वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कल से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ पहुंची है।
1: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन पर्व से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दराज के जिलों और राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। सावन सोमवार को शिव पूजन जबकि नागपंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक संयोग को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रदेश भर में श्रद्धालु और कांवड़ियों की सुविधा एवं सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संभल, एटा और बिजनौर सहित कई अन्य जिलों में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 12वीं तक के सभी विद्यालयों में आज के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं पीलीभीत जिले में सावन के सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पूरे राष्ट्र ने कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भावना के साथ निरंतर कार्य करते रहे।
2: भारतीय राजनीति के वे अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय सीट से देश की संसद के लिए चुने जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने 5 बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की संसद में नेता विरोधी दल के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपने सुशी शासन का लोहा मनवाया हो।
0: स्वर्गीय वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के केजीएमयू साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में अटल स्मृति संध्या का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चक्रधर ने काव्य पाठ किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवंतीबाई का आदर्श लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए बदायूं में वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर पीएससी की नई वाहिनी का गठन किया गया है।
3: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पीएसी बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, इन 3 पीएसी महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो भेद था उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था।
0: सिद्धार्थनगर जिले में सांसद जगदम्बिका पाल ने वीरांगना अवंतीबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को उनके द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ जितेंद्र सिंह ने कल वर्चुअल माध्यम से भारत में मधुमेह के अध्ययन के लिए अनुसंधान सोसाइटी के डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मधुमेह जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी विश्वास का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ सिंह ने मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण भारत में मधुमेह की बढ़ती बीमारी से बचाव के लिए समुदाय, तकनीकी और आंकड़ों पर आधारित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने दूध

0: और दुग्ध उत्पादों जैसे खोआ, पनीर, घी आदि में स्वास्थ्य के लिए घातक हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं।
1: आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसी डेयरी या डेयरी उत्पाद की विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई में हानिकारक रसायन अथवा अपमिश्रक पाए जाने पर संबंधित निर्माण इकाई को तत्काल बंद करने तथा समस्त दुग्ध उत्पादों को जब्त करने के साथ साथ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज होगी। इसके अतिरिक्त मिलावटी ब्रांड्स की बिक्री पर प्रदेश व्यापी रोक लगाकर प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण और विक्रय उनकी मूल प्रकृति एवं निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार कल तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी कल ही है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए यूपी T20 लीग सीजन 4 के मुकाबले में काशी रुद्रास की टीम ने कानपुर सुपरस्टार्स की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। हमारे लखनऊ प्रतिनिधि ने बताया कि पहले बल्लेबाजी करते हुए कानपुर सुपरस्टार्स ने 163 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाबी बल्लेबाजी में काशी रुद्रास की टीम ने 18.1 ओवरों में 2 विकेट पर 167 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाराबंकी में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। सभी नाविकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। इस बीच चित्रकूट जिले में रामघाट पर मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने राज्य में कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका के प्रति भी लोगों को सतर्क किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धा और हर्षोल्लास के वातावरण में पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा नागपंचमी का त्योहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का किया आह्वान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको कमल कुमार का बांसुरी वादन सुनाएंगे। राग है बैरागी भैरव और आपके साथ तबले पर संगत किया है पूरन कुमार मिश्रा ने।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप कमल कुमार का बांसुरी वादन सुन रहे थे। राग था बैरागी भैरव और आपके साथ तबले पर संगत किया था पूरन कुमार मिश्रा ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप देश गान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर

0: कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। PM गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएँ कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंग

0: पल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
1: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17-17 या 23-71-71-06 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उड़ीसा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
3: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
4: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की

0: जुड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में पांचवी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आज़ादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफ़ी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जाँच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आज़ादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir, and BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
4: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration will collect detailed information on population distribution, demographic composition, education, economic activity, migration,

0: 167 runs. KL Rahul scored 82 runs and Dhruv Jurel contributed 51 runs. For Sri Lanka, Prabhat Jayasurya clinched 4 wickets while Keshara Nuwantha took 3 wickets. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
1: Thank you, Abhishek. Amit Shah seeks Congress apology over Vande Mataram Rao, reports The Hindu. West Bengal launches Ayushman Bharat, CM health insurance schemes, says The Statesman. Hindustan Times, in its editorial piece, A Roadmap for Progress, writes that the successes of the PM's Sabsadara focus is critical to resolving the immediate crisis of jobs. The paper elaborates that, like every such address from the ramparts of the Red Fort over the past 8 decades, Prime Minister Narendra Modi's speech to mark the 80th Independence Day combined a short-term actionable roadmap with the long-term path that the country should embark on. And finally, in a world record and Guinness feat, The Asian Age writes that 3 UAE-based Indians were among 65 skydivers who jumped from an aircraft at an altitude of 13,000 feet, each carrying their respective national flag, making it to the Guinness World Records. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic, West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शिनाख्तशुदा बर्फानी इलाकों में 2027 की मर्दुम शुमारी के लिए खुद इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA 3 मजामीन इंग्लिश, कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए UGC नेट इम्तिहानात दोबारा मुनाकिद कराएगी। झारखंड में एहतजाज कराने वाले तलबा आज रांची में रियासती सरकार के साथ बातचीत का ताज़ा दौर शुरू करेंगे। महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा, गंगोत्री, मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू होगी। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में सितंबर के महीने में मर्दमशुमारी 2027 के दूसरे मरहले के तहत आबादी के इंदराज का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल आज से खुद इंदराज का अमल शुरू हो रहा है। ये मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में आज से शुरू होकर 31 अगस्त तक जारी रहेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: लद्दाख मुल्क में मरकज के जेर इंतजाम ऐसा पहला इलाका बन जाएगा जहां 1 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान आबादी के इंदराज का अमल के साथ ही मर्दमशुमारी 2027 का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। खुद इंदराज के अमल आज से शुरू हो रहा है। लद्दाख में मुकम्मल कवरेज के लिए तकरीबन 637 इंदराज के ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए मर्दमशुमारी के ऑपरेशन से मुतालिक अफसर अमित शर्मा ने बताया कि इस खित्ते में मौसम सरमा की सख्त सूरत हाल, मुश्किल रास्तों और लद्दाख तक महदूद रसाई की पेश नज़र सितम्बर के शेड्यूल का मनसूबा बनाया गया था। मर्दमशुमारी 2027 डिजिटल तरीके से की जा रही है। मकानात की फहरिस्त साजी का अमल 1 जून से 30 जून तक मुकम्मल कर लिया गया था। लेह लद्दाख से यंगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगे सलीम।
2: जम्मू कश्मीर के बर्फानी इलाकों में डिजिटल तरीके से खुद इंदराज का अमल आज से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। ये आने वाली मर्दमशुमारी के आबादी का इंदराज के अमल का हिस्सा है। हमारे जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि आज

0: और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। जबकि इसी तरह के हालात मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में भी रहने की पेशगोई की है। ओडिशा में शदीद बारिश का इम्कान है क्योंकि आज खलीज बंगाल के ऊपर हवा का कम दबाव और शदीद हो सकता है, जिससे शिमाली ज़िलों में सैलाब की सूरत हाल मजीद ख़राब होने का ख़तरा है। महकमे मौसमियात IMD ने 4 ज़िलों के लिए रेड अलर्ट और 11 ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और शिमाली ओडिशा में कई मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दरियाओं में तुगयानी और लाखों लोगों के मुतासर होने के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने राहत कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। वज़ीर आला मोहन चरण मांझी आज सैलाब से मुतासरा भद्रक और जाजपुर ज़िलों का फजाई जायजा लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल खराब है। कई शुमाली ज़िलों के इलाकों में पानी भर गया है। रियासती हुकूमत ने मुतासरा ज़िलों में अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं और 3 IAS अफसरान को तैनात किया है ताकि भद्रक, बालासोर और जाजपुर में राहत और बाज़ाबाद कारी के काम में तालमेल बरकरार रखा जा सके। एहतियाती कदम के तौर पर मयूरभंज, केउनझार, भद्रक, जाजपुर और बालासोर में आज स्कूल और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो कल तक समुद्र में ना जाएं। बालासोर ज़िले के जालेश्वर में 2 अफराद की मौत हो चुकी है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: पूंछ ज़िले में मंडी तहसील के राजपुरा गांव में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए 12 दिन तक चलने वाली सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दौरान शुरू होगी। ये यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी और रक्षाबंधन को इख्तिताम पजीर होगी। हुकाम ने पूंछ, राजौरी और राहदारी रास्तों पर सख्त कसीर सतही सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ा दी है। ये यात्रा पूंछ ज़िले के मंडी तहसील में राजपुरा गांव में वाक़े भगवान शिव के कदीम बुद्ध अमरनाथ मंदिर में श्रावण के मानसून पवित्र महीने के दौरान हर साल मुनक़िद होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के आज सुबह पूंछ के सरहदी ज़िले की जानिब जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास से यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। राजौरी और पूंछ के सरहदी ज़िलों के राहदारी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ा दी गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी ऑपरेशन ग्रुप के दस्ते दशनमी अखाड़ा जैसे ठहरने के मकाम के नज़दीक तलाशी और तस्दीक की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। अकीदतमंदों के दस्ते पुलिस मुहाफिजों की निगरानी में पेश कदमी करेंगे। ज़िला इंतजामी और मकामी इदारों ने वाटर प्रूफ खेमों और कम्युनिटी किचन, पार्किंग और हिफ़्ज़ान सेहत मकाम समेत सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। खवातीन के सिंगल्स में दुनिया की साबिक चैंपियन और 9वें दर्जे की खिलाड़ी PV सिंधु आयरलैंड के सूफिया नोबेल का सामना करेंगी, जबकि खवातीन के डबल्स में ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले राउंड में स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिक्स का मुकाबला करेंगी। शाम में भारत के आयुष शेट्टी मर्दों के सिंगल्स के जुमरे में चीन के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन ओशिक यूकी के खिलाफ खेलेंगे। मर्दों के डबल्स के जुमरे में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी पहले ही एक बाय हासिल करने के बाद दूसरे राउंड में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के खिलाफ गाले बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी पहली इनिंग का दोबारा आगाज करेगा। भारत ने कल के खेल के अख्तितम पर 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव अभी क्रीज पर ही हैं। इससे कबल देवदत्त पुडिकल ने शानदार सेंचुरी बनाते हुए 167 रन का स्कोर किया, जबकि KL राहुल ने 82 और ध्रुव जुवेल ने 51 रन का शानदार स्कोर किया। मर्दों की हॉकी में आज नीदरलैंड्स में वागनेर हॉकी स्टेडियम में भारत की टीम सेकेंड पूल के डी के अपने मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। इसका मकसद FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे गुमराह कुन लेबलिंग और सारिफिन के हकूक से मुतालिक बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामईन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं। ये नंबर्स हैं

0: 0001-2371-7811-2371-7 अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 अता करेंगे। अमले अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत ने कहा है कि अवार्ड्स की तकसीम से मुतालिक तकरीब में पेंशन मित्रा से मुतालिक किताबचा और मुल्क की सतह पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC मुहिम 5 के लिए रहनुमा खतूत भी जारी किए जाएंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया कौन है। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए वजीर आजम के इस बयान को खसूसियत के साथ नुमाया किया है कि नौजवानों को मुफ्त कोचिंग और मसनू जहानत AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शिनाख्तशुदा बर्फानी इलाकों में 2027 की मर्दमशुमारी के लिए खुद इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA 3 मजामीन इंग्लिश, कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए UGC नेट इम्तिहान दोबारा मुनाकिद कराएगी। झारखंड में एहतजाज करने वाले तलबा आज रांची में रियासती सरकार के साथ बातचीत का ताज़ा दौर शुरू करेंगे। महकमे मौसमियात ने ओडिशा गंगोत्री मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8:45 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का। तो कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: हां जी श्रोताओं, वेरी गुड मॉर्निंग। न्यूज ऑन AIR ऐप और आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में मैं आपकी हम साथी नीलम श्रीवास्तव आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को नागपंचमी पर्व के ढेर सारे शुभकामनाएं और कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ सुविचारों से। तो सुविचारों के इस क्रम में हमें नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार प्राप्त हुआ है। वो लिखती हैं, जो वृक्ष पतझड़ सहने का साहस रखता है वही बसंत की सुंदरता देख पाता है। ठीक उसी तरह जो इंसान संघर्षों से नहीं डरता अंततः वही सफलता का स्वाद चखता है। क्या बात है नीरा जी। और दूसरा सुविचार इन्होंने लिखा है, प्रकृति की तरह बनो, शांत रहो और मजबूत भी रहो, क्योंकि प्रकृति बताती है कि धैर्य में ही

सबसे बड़ी शक्ति है और सादगी में ही सबसे बड़ी सुंदरता है। नीलम जी नमस्कार, नागपंचमी की आप सभी को बधाई। तो भाई नीरा जी आपको भी बधाई। और इनका एक सुविचार और इन्होंने भेजा है, जो पढ़ना तो बनता है। आई है सावन महीने में नागपंचमी की पावन बेला, हर जगह लग रहा गुड़िया का मेला। क्या बात है, आओ मिलकर धूम से नागपंचमी का त्यौहार मनाएं। भगवान शिव के गले में सर्पों की माला, जो पिलाए सांपों को दूध सच्चे दिल से, उसका बेड़ा हो पार। आप सभी श्रोताओं को नागपंचमी की बधाई और आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी आप सभी को नागपंचमी पर्व की ढेर सारी बधाई। तो भाई अब आते हैं अपने विषय पर। आप सभी को सावन के शुक्ल पंचमी की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वैसे तो नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है आप सभी जानते होंगे, बट हमारे वो श्रोता जो नहीं जानते कि नाग पंचमी की पौराणिक कहानी क्या है, उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं, नाग पंचमी की मुख्य पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। हुआ यूं कि राजा जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की नागदंश से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरे सर्प वंश को समाप्त करने के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी सांप आ रहे थे और आकर यज्ञ की वेदी में समाप्त हो जा रहे थे। तब आस्तिक मुनि ने सर्पों की रक्षा के लिए अपनी बुद्धि और ज्ञान से राजा जनमेजय का यज्ञ रोककर नागवंश की रक्षा की और जिस दिन ये रक्षा हुई थी उस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से लोग नाग पंचमी का ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा श्रोताओं, आपको बता दूं कि आस्तिक मुनि मनसा देवी के पुत्र थे और मनसा देवी नागवंश की माता हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने गले में नागों की माला बनाकर आभूषण की तरह धारण करते हैं, ऐसा कि आप सब ने देखा होगा, है ना। इसलिए सावन के महीने में नागों की पूजा का विशेष महत्व है। तो भाई जब हम बात कर रहे हैं नागों की पूजा और भगवान भोलेनाथ की, तो एक भजन तो बनता है। तो आनंद लीजिए इस भजन का और मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

जी श्रोताओं, तो मज़ा आ रहा है ना इस भजन को सुनकर। भाई सावन का आज तीसरा सोमवार है, जाइए भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाइए और अपनी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। तो भाई अब आप सभी को ये भी बता दूं कि नाग पंचमी का पर्व का सांस्कृतिक और व्यवहारिक महत्व क्या है। तो भाई ये पर्व प्रकृति और जीव जंतुओं, विशेषकर सर्पों के प्रति सम्मान और उनके संरक्षण का संदेश देता है। शास्त्रों के अनुसार नागों को दूध से स्नान कराने का विधान है, ना कि उन्हें जबरन दूध पिलाने का, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा होता है। वैज्ञानिकों की माने तो सांप कभी दूध पीता ही नहीं है। अब आप बताइए, आप दूध लेकर जाएंगे और नाग देवता दूध ही नहीं पिएंगे? ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। क्योंकि अब ये भी बता देती हूँ कि वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दूध में मिलकर उनके मुँह का लार खतरनाक विष बन जाता है, जिसकी वजह से खुद सांपों की जान जा सकती है। और ज्योतिषों की माने तो सावन के महीने में सांपों की पूजा करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है। क्या बात है! तो भाई जितने लोग उतनी विचारधारा, इन सभी विचारधाराओं का निचोड़ ये है कि हमारी प्रकृति ने हमें जो कुछ भी उपहार स्वरूप दिया है उसका हमें संरक्षण करना चाहिए, ना कि दोहन। माने कि सांपों को देखकर डर लगता है और ये स्वाभाविक भी है, पर यदि आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। हमारे अन्नदाता यानी कि किसान खेतों में चूहों और कीटों को नियंत्रण करने वाले सांपों को मित्र और रक्षक मानते हैं। देखिए हर जगह अलग अलग मान्यता है, और बारिश के मौसम में बिलों में पानी भरने से सांप बाहर आते हैं। इस दौरान उनके प्रति अहिंसा और सम्मान का भाव रखने का यह पर्व हमें संदेश देता है। और दोस्तों, हर किसी को प्रेम और सम्मान की चाहत होती है। चलते चलते एक और बात आप सभी को बता दूँ, कहिए तो बता दूं कि उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर नागचंदेश्वर का मंदिर है, जो साल में केवल एक बार ही नाग पंचमी के दिन खुलता है। तक्षक नाग के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था, जिसकी वजह से नागचंद्रेश्वर मंदिर में तक्षक नाग आज भी जीवंत रूप में स्थित हैं। तो आप सभी जाइएगा, देखिएगा ज़रूर, उनकी एकांता में कोई बाधा ना आए, इसलिए ये मंदिर साल में एक बार 24 घंटे के लिए नाग पंचमी के दिन खुलता है। तो आप सभी जाइए, दर्शन करिए और नाग पंचमी का ये पर्व पूरे उत्साह और सावधानी के साथ मनाइए। ये नारा आप सब रास्ते भर लगाते हुए जाइए।

भोलेनाथ को यूं ही भोलेनाथ नहीं कहा जाता है, तो नागपंचमी का ये पर्व आप पूरे उत्साह के साथ मनाइए। और अब अपनी रेडियो साथी नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की थी। और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो नमस्कार प्रयागराज।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: UPI 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
7: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
6: UPI 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
7: शहर या देहात, दिन हो या रात, UPI 112 है आपके साथ।
6: UPI 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं मंजिल फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ है, योगेश की रचना है, आरडी बर्मन का संगीत है। तो भाई सावन चल रहा है और रेडियो पर ये गीत ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता है।

बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल अभी तो हम निकले नहीं हैं, और अब हम आपको सुनवाते हैं प्यार में ट्विस्ट, इस फिल्म का गीत। इस गीत को अपने स्वरों से सजाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, समीर की रचना है और संगीत देखिए जतिन ललित ने बनाया है। और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर, आप भी कहेंगे कि सावन में रिमझिम की जब बूंदें गिरती हैं तो पल तो बिल्कुल थमसा ही जाता है।

श्रोताओं, इन गीतों का आनंद आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ले सकते हैं। तो उठाइए अपना मोबाइल सर्च और ये ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए।

श्रोताओं, गीतों को सुनकर पल तो ज़रूर थम जाता है, लेकिन कहाँ थमता है ये पल भाई। अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं 1942 ए लव स्टोरी फिल्म से, और इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। रचना है जावेद अख्तर की और आर डी बर्मन ने संगीत दिया है, और ये गीत चला आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, आप मत कहिए भाई, हमारे भी चलने का वक्त हो गया है और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

और जिलाधिकारी अरुण कुमार समेत अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं व गणमान्य नागरिकों ने राष्ट्रगान के साथ अमर शहीदों को नमन किया। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। उन्होंने पुलिस कर्मियों को संविधान, देश की एकता, अखंडता और जन सुरक्षा के प्रति पूरी निष्ठा से दायित्व निभाने का संकल्प दिलाया। पुलिस लाइन व कैंप कार्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी उन्होंने संदेश दिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सेवा पदक, प्रशंसा चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व और पुलिस से संबंधित मामलों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए, लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने शिकायत पंजिका का निरीक्षण कर पूर्व में निर्धारित मामलों का फीडबैक भी लिया। संत कबीर नगर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह के नेतृत्व में जिला न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला जज ने अपनी माता के नाम पर पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि माँ सृजन का प्रतीक है और वृक्ष भी जीवन व सृजन का आधार है। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में सैनिक बंधु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में करीब 40 पूर्व सैनिकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। डीएम ने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शहीद वीर चक्र विजेता सत्यवान सिंह के नाम से नवनिर्मित सभागार का फीता काटकर उद्घाटन किया। संत कबीर नगर में भूजल सप्ताह के तहत जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से भूजल संरक्षण जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि भूजल संरक्षण आज प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। वर्षा जल संचयन को अपनाने, तालाबों और जलाशयों को स्वच्छ रखने तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने की जरूरत है। संत कबीर नगर में पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने बीते दिनों कारागार स्थित महिला बंदी गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं की

जानकारी ली। अध्यक्षा ने महिलाओं की सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। संत कबीर नगर में संभावित बाढ़ एवं तटबंधों के कटान से बचाव को लेकर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। एडीएम ने सभी तटबंधों पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत चौपाल शिविरों की व्यवस्था, बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन, नौकाओं का सत्यापन, विद्युत व्यवस्था मजबूत करने और आपातकालीन रास्तों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। संत कबीर नगर पहुंची प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री

0: व्यवस्था, बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन, नौकाओं का सत्यापन, विद्युत व्यवस्था मजबूत करने और आपातकालीन रास्तों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। संत कबीर नगर पहुंची प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री ग्राम विकास विभाग विजय लक्ष्मी गौतम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। प्रभारी मंत्री ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बीते दिनों संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरक, पाकशाला, अस्पताल और महिला बैरक का जायजा लेते हुए साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता तथा बंदियों की समस्याओं की जानकारी ली। संत कबीर नगर में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कोपिया शिव मंदिर स्थित झारखंडी शिव मंदिर और बाबा कुबेरनाथ शिव मंदिर बखिरा का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, यातायात, सड़क सुरक्षा और कांवड़ यात्रियों के आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों को कांवड़ मार्गों पर सतर्क निगरानी और नियमित भ्रमण के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने को कहा गया। कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिले में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है।
1: 30 जुलाई से 28 अगस्त तक पवित्र श्रावण मास का महीना है, जिसमें श्रद्धालुगण कांवड़ लेकर नदियों से, घाटों से जल भरकर मंदिरों में भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संत कबीर नगर पुलिस ने प्रशासन तंत्र को मैन 3 जोन बनाए हैं, जो तीनों धनघटा, महदावल और खलीलाबाद सेक्टर। साथ ही इसमें 8 हमने सेक्टर बनाए जो हमारे थानों के स्तर पर रहेंगे। इसके अलावा हमने 31 QRT की स्थापना की, प्रत्येक थाने पर 2-2 QRT अलग से रहेगी। साथ में CCTV कैमरे से पूर्ण 30 की कांवड़ की घाटों पे, मंदिरों के अंदर और रूट पे।
2: संत कबीर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ में सावन के पावन मास में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। हापुड़ में भक्ति और आस्था का अनोखा दृश्य देखने को मिला। जिलाधिकारी हापुड़ कविता मीना और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने हेलीकॉप्टर के जरिए शिव मंदिरों और ब्रज घाट पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। इसके अलावा जनपद की सीमाओं में कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। जनपद में छपकोली स्थित प्राचीन शिव मंदिर और ब्रज घाट गंगा घाट पर कांवड़ियों एवं शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर का भव्य स्वागत किया, जिसको देखकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। श्रद्धालुओं द्वारा हर हर महादेव का जय घोष किया गया। कांवड़ यात्रा को प्रशासन द्वारा शिव भक्तों की आस्था और विश्वास को कायम रखते हुए सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार के निर्देश का पालन किया गया।
4: जनपद हापुड़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा की गई। उसमें प्रथम स्थल हमने छपकोली मंदिर लिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है हापुड़ का, और वहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु थे। और उसके पश्चात सेकंड स्पॉट हम लोगों ने ब्रज घाट लिया। हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत सारे कांवड़िए जल उठा रहे थे और बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए हमको भी बहुत अच्छा लगा, पूरा भक्तिमय माहौल था।
3: सावन मास शिव भक्ति के लिए खास माना जाता है। वहीं कांवड़ियों हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा जल लेकर आ रहे हैं। वहीं जनपद हापुड़ के ब्रजघाट से भी जल लेने के लिए कांवड़िए पहुंचे और जल लेकर अपने गंतव्य के लिए पहुंचे। हापुड़ के तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट सहित हापुड़ शिवमय दिखाई दिया। वहीं कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा रहा। जनपद की सीमाओं को सील करते हुए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा जनपद में CCTV कैमरे लगवाकर कंट्रोल रूम से निगरानी की गई। गंगा तट पर नाविक और गोताखोर लगाए गए। सड़कों के एक साइड को कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया, जबकि दूसरी साइड से हल्के वाहनों को निकलवाया गया। भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया गया, ताकि किसी को कोई समस्या न हो सके।
5: कांवड़ में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बढ़िया एक रोड चल रहा है, एक रोड कांवड़ियों के लिए खाली है। वहीं से ये हमारी कांवड़ हरिद्वार से लेकर पलवल तक जाएगी।
3: जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने अस्पताल ले जाते समय पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहे 1,00,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को उपचार के बाद जेल भेज दिया गया। हापुड़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री, न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने सिंचाई विभाग में आयोजित बैठक में कहा कि नीट परीक्षा लीक होने के बाद CJP के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ है। जो छात्रों की मांगे थी उनको पूरा किया गया है। पेपर एक के आरोपी जेल में है। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दों पर कहा कि राम मंदिर के लिए देश और विदेश से चंदा दिया जाता है और इस तरह की घटना निंदनीय है। प्रदेश सरकार ने इस पर SIT गठित की है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में विभिन्न योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक की। पूर्व सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने के भी निर्देश दिए। जनपद हापुड़ में

0: विभाग ने टोडलपुर सिंभावली की तरफ से आ रही पनीर लेकर एक गाड़ी को पकड़कर पनीर के दो नमूने संग्रहित किए गए पनीर ड्रमों में भरा हुआ था, जो कि असुरक्षित तरीके से भंडारित था, जिसकी मात्रा लगभग 200 किलोग्राम थी, जिसको जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नष्ट कर दिया गया। पनीर की कीमत करीब 40,000 रूपए बताई गई है। जनपद हापुड़ के विकास भवन के सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत केनरा बैंक, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बाबूगढ़ छावनी में सिलाई प्रशिक्षण ले रही महिलाओं और बालिकाओं को सिलाई किट एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किए गए। जनपद हापुड़ की मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता भी की, साथ ही उन्हें समूह से जोड़कर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जनपद हापुड़ में जनपद के प्रभारी मंत्री केपी मलिक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अटल पार्क में सम्पन्न हुई। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों, युवाओं के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा शहीदों को श्रद्धांजलि है। बीते 14 अगस्त को आजादी के विभाजन की विभीषिका पर देश के विभाजन के समय हुए नरसंहार में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप देशगान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था और सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से, आइए सुनते हैं।
1: आज से हम उर्दू प्रोग्राम में एक नए किस्तवार जासूसी सिलसिले की इब्तदा कर रहे हैं, जिसका उन्वान है शह और मात। आज की हमारी कहानी का उन्वान है मैं कौन हूं। पेश खिदमत है इसकी पहली किस्त। इस जासूसी सीरीज के तमाम किरदार और वाकयात तख्लीकी हैं। इनका किसी भी हकीकी शख्स, वाक़े या मकाम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर किसी भी किस्म की मुशाबहत पाई जाती है तो उसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए।

लाख छुपा लो सच्चाई को, जुर्म के काले पर्दों में अदल आया हो जाएगा, फिर भी दुनिया के बाजारों में

रात के 1 बज रहे थे। लखनऊ की सड़कों पर एक कार रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी थी और मौसम खुशगवार था। कार में बैठे दोनों शख्स को हुकूमत ने एक खास मिशन पर भेजा था, डिटेक्टिव सैयद हसन मुस्तबा और उसका असिस्टेंट कामरान खान, दोनों हुकूमत के खुफिया शोबे और महकमाए सुरागरसा से वाबस्ता थे। हसन मिजाज का संजीदा था, बोलता कम था, सोचता ज्यादा था। इसके बरक्स कामरान तबीयत का शोख, दिल फेंक और मस्त मौला था। दोनों ने साथ ही कॉलेज से पढ़ाई की थी और एक साथ ही खुफिया डिपार्टमेंट में शामिल हुए थे। नौकरी में हसन बॉस था, लेकिन दोनों की दोस्ती आज भी कायम थी। कामरान हसन के हर हुक्म की तामील करता, उसको इज्जत देता और हसन सबसे ज्यादा कामरान पर भरोसा करता था।

0: कभी कभी कामरान की मजाक की बातों से परेशान होता, मगर ये बातें कभी दोस्ती और भरोसे की दीवार को न तोड़ पाती थी। कार अब गोमती नदी के पुल को पार कर रही थी। कामरान अपनी तबीयत के मुताबिक अपने मुंह को ज्यादा देर बंद न कर सका और बोला,
1: क्या नसीब है मेरे, कितना आशिकाना मौसम है और साथ मिला है तो इस खड़ूस का।
2: कुछ कहा क्या तुमने?
1: अरे कुछ नहीं हुजूर, बस एक चाय पीने का मन हो रहा था।
2: बकोमत, अभी सुना मैंने तुमने क्या कहा था। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम आज मेरे असिस्टेंट हो, वरना डिटेक्टिव बन सकते थे।
1: हुजूर, मैं बेगुनाह हूँ। कॉलेज में वो सायरा और नरगिस ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था, वरना मैं तो मासूम ही था।
2: मासूम? तुम्हारी असलियत मैं जानता हूँ, और वो तबस्सुम।
0: कामरान ने बेचैनी से पहलू बदला और नजरें चुराते हुए बोला,
1: अरे मोहतरम, मैं बस इतना कहूंगा कि मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों।
2: अच्छा कामरान, अगर वक्त में पीछे जाना पड़े तो क्या बदलना चाहोगे, क्या मांगोगे?
1: यकीन मानिए, नरगिस बहुत अच्छी थी।
2: गधे कहीं के, मुझे लगा डिटेक्टिव की पोस्ट मांगोगे।
1: आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं।
0: हसन और कामरान की नोकझोंक जारी थी और कार मूसा बाग के पास पहुंच चुकी थी। कामरान ने कहा,
1: अच्छा हुजूर, अब तो बता दें हम लोग कहां और क्यों जा रहे हैं।
2: बस थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा।
0: हसन ने थोड़ी दूर जाकर एक जगह पर कार रोक दी। और बोला,
2: कामरान उतरो, यहाँ से हम आगे पैदल जाएंगे, कार को छिपाना पड़ेगा, साथ में पीछे रखा बैग भी ले लो।
0: हसन कार छुपाने चला गया और कामरान अकेला खड़े खड़े गाना गुनगुनाने लगा।
1: सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम को न जाए कहीं।
0: हसन कार छुपा कर वापस आया और दोनों आगे चले। मूसा बाग से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री थी जो पिछले 7-8 महीनों से बंद थी। दोनों फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे। कामरान बोल पड़ा,
1: जब आपने मुझे औजारों वाला बैग साथ रखने के लिए कहा था ना, तभी मैं समझ गया था कि आज ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब क्या हमें ताला तोड़ना है?
2: मेरा समझदार बेटा, चलो अब मुझे ताला तोड़ने दो।
0: कामरान ने बैग से ताला तोड़ने का बड़ा औजार निकाला और हसन ने पल भर में ताला तोड़ दिया। लावाली में कामरान ने पूरी ताकत के साथ भारी गेट को धक्का दिया, जिसकी आवाज पूरी फजा में गूंज गई। हसन ने खा जाने वाली नजरों से देखा। कामरान ने चुप रहना ही बेहतर समझा। फैक्ट्री में आने जाने के सामने वाले दरवाजे पर ताला नहीं था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। हसन ने दरवाजे का कांच तोड़ा और अंदर हाथ डालकर दरवाजे को खोल दिया। अंदर पहुंचकर दोनों को सीलन और बू सी महसूस हुई। कमरा बिल्कुल खाली था। हसन ने स्विच ऑन करके कमरे में रोशनी कर दी।
2: कामरान, जहां हो वहीं रहना, ज्यादा चलना नहीं है कमरे में। बैग से वो मशीन और स्प्रे बोतल भी निकाल लो।
0: हसन ने जमीन पर कोई केमिकल स्प्रे किया। और फिर मशीन को खड़ा किया और मशीन का तार एक बोर्ड में नस्ब कर दिया। हसन ने कमरे की लाइट बुझा दी और मशीन को ऑन किया।

0: मशीन एक शोर के साथ चलने लगी। और मशीन से नीली रोशनी निकलकर कमरे में फैलने लगी और कुछ देर बाद कमरे में जगह जगह पैरों के निशानात दिखाई देने लगे, जिसे देखकर कामरान हैरत ज़दा भी हुआ और खुश भी।
1: वाह भाई वाह, ग्रेट डिटेक्टिव साहब, आखिरकार आपने पैरों के निशानात खोज ही निकाले, तो आज हम यहाँ इसलिए आए थे।
2: तुम्हें क्या लगता है मैं आज यहाँ इन पैरों के निशानात के लिए आया हूँ? मुझे तो कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पैरों के निशानात ना हो।
0: ये सुनकर कामरान और हैरतज़दा हुआ।
1: ओफो, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम यहाँ पैरों के निशान नहीं बल्कि बिना निशानों वाली जमीन खोजने आए हैं। खैर, वो कोने के पास देखिए जरा, वहां मुझे किसी भी तरह के निशानात नजर नहीं आ रहे।
0: हसन की आंखें चमक गईं, वो खुश हुआ और बोला,
2: बहुत अच्छे फरजंद, मेरे पीछे दीवार के किनारे से मिले हुए आ जाओ,

0: ये दोनों यहां फैक्ट्री में मसरूफ थे। वहीं दूसरी तरफ ठाकुरगंज के एक किनारे में एक वेल्डिंग की दुकान थी। दुकान तो दुनिया को दिखाने के लिए थी, असली खेल वहां कैसीनो का था। वहां का मालिक सुल्तान था, जो बेहद गुस्सैल और लंबा तगड़ा आदमी था। लोग उससे डरते थे। सुल्तान के आदमी किसी आदमी को पकड़ कर लाए थे और उसे कुर्सी से बांध कर अजियत पहुंचा रहे थे। वो जितना तड़पता वो लोग उतना ही कहकहा लगाते। तभी सुल्तान की गजबनाक आवाज गूंजी।
1: इसने बताया कि वो सोना इसने कहां छुपा के रखा है?
2: नहीं सुल्तान भाई, बड़ी सख्त जान है, कब से मार खा रहा है, कुछ बोलता ही नहीं।
1: बोलेगा, सुल्तान के आगे पत्थर भी बोलते हैं।
0: सुल्तान की आंखों पे खून उतर आया था। उसने उस आदमी को बिजली के झटके देने शुरू किए। और दो ही झटकों में वो आदमी बेहोश हो गया।
1: होश में आते ही दोबारा झटके देना।
0: इतने में सुल्तान का फोन बजा।
1: सुल्तान बोल रहा हूं।
3: सुल्तान के बच्चे, तुझे बोला था ना कि फैक्ट्री की निगरानी करनी है।
0: आवाज सुनकर सुल्तान भीगी बिल्ली बन गया और हकलाने लगा।
1: नहीं जनाब, सब मेरे काबू में है, मेरे लोग निगरानी कर रहे हैं।
3: मुझे पता चला है फैक्ट्री में दो लोग घुसे हैं, पता लगाओ वो कौन है और रास्ते से हटाओ उनको। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, ये बात किसी को पता ना चले, समझे?
1: मैं अभी अपने आदमी भेजता हूँ।
0: उधर दूसरी तरफ फैक्ट्री में हसन और कामरान उस जगह पहुंचे जहां पैरों के निशानात नहीं थे।
4: कामरान, यहां जरूर कुछ ऐसा है जिसकी हमें तलाश है। तुम दीवार देखो, मैं फर्श की जांच करता हूं।
0: दोनों दीवार और फर्श की जांच करने लगे। हसन को फर्श में एक जगह कुछ अलग आवाज आई।
4: कामरान, यहां देखो, यहां फर्श में कुछ है।
0: कामरान ने फर्श से लकड़ी का एक हिस्सा खोला और नीचे एक तहखाना मिला। सीढ़ियां नीचे तहखाने में जा रही थी।
4: कामरान, अब हम सही सिमत में जा रहे हैं, चलो तहखाने में चलते हैं।
0: इससे पहले दोनों तहखाने में जाते, चार मुसलह बदमाशों ने उनको घेर लिया।
5: खबरदार, तुम लोग हमारी बंदूक के निशाने पर हो,

0: एक गलत हरकत और इस दुनिया से टिकट काट दिया जाएगा। अपने हाथ उठा लो।
1: और दोनों ने अपने हाथ हवा में ऊपर उठा लिए।
2: मोहतरम, इस पुर मसर्रत मौके पर मैं आपको बशीर बद्र साहब का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की।
1: कामरान और बदमाशों ने हैरत से हसन को देखा। कामरान को लगा हसन का दिमागी तवाजुन खराब हो गया है।
3: इतनी देर मेरे साथ थे तब तो कोई शेर ना सुनाया, बंदूक के सामने शायरी, अजीब इंसान है।
2: कामरान देखो तो जरा, मेरा दोस्त आया है। अफसोस ये मुलाकात लंबी ना चलेगी।
1: पुलिस की दो सिपाहियों ने पीछे से आकर बदमाशों को घेर लिया। मजबूरन बदमाशों को अपनी बंदूकें नीचे रखनी पड़ी। अब कामरान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने एक बदमाश को मुक्का मारा। बदमाश की चीख से कामरान को सुकून मिला। दो बदमाशों को हसन ने संभाल लिया। तभी किसी ने फैक्ट्री की लाइट काट दी। हर तरफ अंधेरा हो गया और अंधेरे में गोलियां चलने लगी। हसन कामरान को लेकर तहखाने में कूद गया। दोनों सिपाही बाहर ही रह गए। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज बंद हो गई। हसन कामरान को लेकर तहखाने से निकला। बाहर उसे दोनों सिपाही मिले, जिसमें से एक जख्मी था। कामरान को भी कुछ चोटें लगी थी। हमलावर जा चुके थे। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और एक लड़की भी। हसन ने कामरान को उस लड़की से मिलवाया, जिसे देखकर कामरान का सारा दर्द गायब हो गया।
2: कामरान, इनसे मिलो, ये है रिपोर्टर अलशिफा।
4: हेलो, माय सेल्फ अलशिफा एंड आई एम अ जर्नलिस्ट।
3: हेलो अलशिफा, कैसी हैं आप? वैसे आपको कुछ भी जानना हो तो ध्यान रहे, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ।
2: बको मत कामरान, चुप रहो। अलशिफा, यहाँ की न्यूज कवर करना, लेकिन ध्यान रहे, मेरा और कामरान का किसी भी तरह का जिक्र नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता दुश्मन मोहतात हो जाएं।
4: आप बेफिक्र रहिए सर, मुझे पता है अब भी लोगों को क्या बताना है और क्या नहीं।
2: बहुत शुक्रिया अलशिफा। कामरान अब चलो, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं।
1: अगली सुबह हसन और कामरान हजरतगंज के एक होटल में अपने कमरे में बैठे थे। नाश्ता आ चुका था, मगर कामरान का मूड गड़बड़ था।
2: बेटे, नाश्ता आ चुका है, कर लो, मिजाज क्यों खराब है?
3: आपको नाश्ते की पड़ी है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे कुछ बताना जरूरी क्यों नहीं समझते। मुझे क्यों नहीं बताया था कि दो सिपाही भी पीछे हैं हमारी निगरानी के लिए, और वो रिपोर्टर कौन थी? कब से जानते हैं उसे? मुझे उसका फोन नंबर भी नहीं लेने दिया। चला था जिक्र जमाने की बेवफाई का, सो आ गया है तुम्हारा ख्याल वैसे ही।
2: तुम्हारा जहन अभी रिपोर्टर के पीछे ही भाग रहा है। तुमने ये नहीं सोचा कि वो बदमाश कौन थे और उनको किसने भेजा था। पुलिस को वहाँ कोई भी नहीं मिला, किसी की डेड बॉडी भी नहीं मिली, जबकि एक सिपाही जख्मी है। कोई तो ऐसा दिमाग है जिसे पता था हम वहाँ पर हैं।
3: और पता नहीं कितने राज दफन कर रखे हैं इस बंदे ने अपने सीने में।
1: इससे पहले हसन कुछ कहता, दरवाजे पर दस्तक हुई। वेटर कोई खत लेकर आया था।
2: इस पे तो भेजने वाले का पता ही नहीं है, किसने भेजा है?
5: पता नहीं साहब, एक बच्चा अभी आपका नाम बोलकर ये लिफाफा दे गया है।
1: हसन ने खत खोला। अंदर लिखा था, कल रात की मेहमान नवाजी कैसी रही? इस मामले से हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। तुम कभी नहीं जान पाओगे मैं कौन हूं।

0: खत पढ़कर हसन मुस्कुराया, जबकि कामरान हैरत ज़दा था। कौन था यह खत भेजने वाला? कौन था सुल्तान? उस फैक्ट्री का राज क्या था और वो बदमाश कौन थे? इस बार हसन और कामरान किस मुश्किल में फंसने वाले थे, जानने के लिए सुने मैं कौन हूं।
1: डरती हैं अहले जुर्म हसन कामरान से, शमशीर जब भी निकली है उनकी मियान से। छुप जाएं कहीं जाके वो दुनिया की नजर से, मुजरिम को ढूंढ लाएंगे सारे जहान से।

0: इस ड्रामाई सिलसिले को अपनी दिलकश आवाजों से आरास्ता करने वालों के इसमें गिरामी हैं सुरेंद्र राजेश्वरी, आसिफ इकबाल, जमशेद सिद्दीकी, शमसुल आरफीन, मोहम्मद उमैर, डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर, सैयद मोहम्मद उमैर और शाइस्ता जाहिद। तहरीर और पेशकश आसिफ इकबाल की है। सामईन अपनी कीमती आरा आप हमको ज़रूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157, 7991778157। अब आज के उर्दू प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आदाब।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको मोहम्मद फिरोज अहमद के स्वर में गाए भजनों को सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद फिरोज अहमद के स्वर में गाया ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप फिरोज़ अहमद के स्वर में गाए भक्ति रचनाओं का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप तंत्र के माध्यम से किया गया है। उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।

0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। पवित्र सावन माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। गंभीर रूप से घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जिला सदर अस्पताल में जारी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ थाने के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत में फैल गई। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज का। तो वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आज हम आपको आनंद भूषण सरन से नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी की बातचीत का पहला भाग सुनवाने जा रहे हैं।
2: श्रोताओ नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिनसे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको याद ही है कि जब भी हम फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं उसमें ट्रेन ज़रूर होता है ना। ट्रेन में सिमरन को देखा होगा, अपने राज को देखा होगा और हम सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। आखिर ये ट्रेन की पटरियां और ट्रेन काम कैसे करती है ना, इतनी दूरी कैसे तय करती होगी। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर आनंद भूषण सरन जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: और इस कार्यक्रम में अभिकांत तिवारी जी भी हमारे साथ होंगे और इस कारवां को बहुत सुंदर ढंग से हम लोग ले चलेंगे, सुनकर आनंद आएगा। क्यों अभय जी?
4: श्रोताओं नमस्कार। नमस्कार नेहा जी।
2: जी नमस्ते।
4: जरूर मजा आएगा क्योंकि हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं कि सिग्नल रेड हुआ, ग्रीन हुआ, कैसे होता है, उसका काम क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या, उसका महत्व क्या है, ये सब समझने के लिए आज हम आनंद भूषण सरन जी से बात करेंगे।
2: सर, 30 सालों का अनुभव है आपका, तो इन 30 सालों को जब आप अब पलट कर देखते हैं, वो सारे वाकये, वो सारे पल, शहर कैसा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन सा महसूस होता है?
3: सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो 30 साल बोला, मैं आपको बता दूं मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ क्योंकि मेरी पोस्टिंग यहाँ पे है। मैं रेलवे में भी रहा हूँ, रेपुटेशन पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हूँ, जो भी रेलवे की सिस्टर कंसर्न है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो प्रयागराज और यहाँ आके मुझे इतनी खुशी होती है और कुछ बहुत परिवर्तन भी हुए हैं, अच्छे परिवर्तन हुए हैं और जो विकास हुआ है प्रयागराज का, उसको देख के

0: जब ज्यादा लोड स्ट्रेस ले सकती है ट्रैक तो
1: जी
0: नेचुरली स्पीड बढ़ेगी। नंबर एक। नंबर दो, आपने पूछा कि सिग्नलिंग का सिस्टम का क्या है। मुझे याद है मैंने 98 में ज्वाइन किया था तो मैं देखता था कि वहां पहले आपने देखा होगा सीमाफोर सिग्नलिंग कहते हैं उसको, वो एक आर्म सी निकली होती थी सिग्नल पे, वो नीचे
1: जी
0: ऊपर करती थी, उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस थे और उसमें जो उस सिग्नल तक ट्रांसमिशन होता था लीवर फ्रेम से होता था, बीच में रॉडिंग लगी होती थी तो वो इतना उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आते थे, बीच में किसी ने पत्थर फंसा दिया, पब्लिक जा
1: हाँ
0: रही है काट दी तोड़ दी, तो उससे क्या होता था तो बहुत डिले होता था। उसके बाद हमने कलर लाइट सिग्नलिंग की, जो जो
1: जी
0: आर्म वाली सिग्नलिंग हट गई, उसके बाद हमने ऑटोमेटिक कर दी। ऑटोमेटिक में मतलब ट्रेन लगातार अपने आप सिग्नल का एस्पेक्ट बदलता रहेगा, जाती रहेंगी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, जो एक सपोज करिए 100 किलोमीटर के सेक्शन में पहले जहां 2 ट्रेन जाती थी, फिर वो कलर लाइट सिग्नलिंग से 10 हुई और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से वो 25 करीब हो गई। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
1: जी
0: तो अगर आप 100 किलोमीटर 25 ट्रेन आपने डाल दी तो नेचुरली आपकी ज्यादा ट्रेनें चलेंगी और जल्दी पहुंचेंगी।
1: अच्छा, आपने कहा ये पटरियों को आपने स्टंदन करने का काम किया, ये पटरियां तो मतलब स्टेट वाइज चलती रहती होंगे, लेकिन अभी आपके मन मस्तिष्क में कुछ चल रहा है, मैं चाहूंगी पहले वो उस पर बात कर
0: नहीं, स्ट्रेंथ
1: लें
0: इस तरह
1: जी
0: बढ़ी, जो पहले जो हम मटेरियल यूज करते थे, पहले 52 kg के थे, 90R के थे, अब 60 kg की रेल आती है, तो इस तरह स्ट्रेंथ बढ़ाई। और जहाँ तक सिग्नलिंग मैंने बताई, क्योंकि मैं सिग्नल इंजीनियर हूँ, मैंने आपको जो शॉर्ट में प्रगति बताई कैसे कैसे विकसित हुआ ऑटोमेटिक तक हम आए, ये तो चलिए आपका स्पीड मतलब पंचुअलिटी की बात बताई, लेकिन आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि ये जो सिग्नल होते हैं इसकी वजह से हमारी ट्रेनें बहुत सेफली चलती हैं। मतलब दो ट्रेनें अगर चल रही हैं तो इनका भिड़ना आपस में असंभव है, हमारी सिग्नलिंग फेल सेफ होती है। अगर सिग्नल खराब भी होंगे तो सेफर साइड में होंगे, ट्रेनें रुक जाएंगी लेकिन लड़ेंगी नहीं, तो इसका ध्यान रखा जाता है। पूरी हमारी इंटरलॉकिंग होती है, कौन सा सिग्नल कब आएगा, उस सिग्नल को आने के लिए हमारे काफ़ी ट्रैक सर्किट वगैरह लगे रहते हैं, वो
1: जी
0: इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट रहते हैं, उसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं,
1: जी
0: तो उसकी कंडीशन फुलफिल होती है तभी सिग्नल ग्रीन होता है। ये नहीं कि एक स्विच दबा दिया किसी ने तो ग्रीन हो गया।
1: कई बार वो फाटक हम लोग छोटी जगह
0: हाँ तो
1: से भी ताल्लुक रखते हैं, फाटक बंद
0: हाँ,
1: हो जाते हैं।
0: फाटक बंद होंगे तभी वो सिग्नल ग्रीन होगा। अगर फाटक खुला रहेगा तो सिग्नल लाल रहेगा, क्योंकि उधर से रोड का ट्रैफिक जाएगा और इधर से
1: जी
0: आपकी ट्रेन जाएगी, और जब ट्रेन
1: ओ
0: जाएगी तो रोड ट्रैफिक नहीं जाएगा, और जब खुलेगा तो ट्रेन नहीं जा सकती क्योंकि सिग्नल लाल है।
1: अच्छा, ये शुरुआत में कितना कठिन रहा होगा, न जाने कितने लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस रेलवे को इतना सुचारू रूप से चलने के लिए।
0: इसमें अब हम लोग को लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन आप सोचिए कि एक मैकेनिकल सिग्नलिंग जो मैंने आम वाली बताई, उससे कलर लाइट सिग्नलिंग करना ही अपने आप में बहुत टफ बात थी। कोई सोच नहीं सकता था कि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उस सिग्नल को इस तरह कर सकते हैं विद प्रॉपर इंटरलॉकिंग एंड सेफली रनिंग द ट्रेन। तो अब जो नए लोग आ रहे हैं उन लगता है, लेकिन इसके पीछे मेरे भी पहले जो लोग रहे हैं उनकी भी कड़ी मेहनत।
1: दोस्तों, ये बातचीत जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से म्यूजिकल
2: नेहा जी, हमारे बॉलीवुड के कई
1: जी
2: गीत हैं वो ट्रेनों से बनाए गए हैं और ट्रेनों से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा ही कोई गीत या जो आपकी पसंद हो आप आनंद भूषण जी बताइए।
0: नहीं, मुझे अपनी पसंद बतानी है कि रेलवे से
2: हाँ
0: जुड़ी अपनी
2: पहले
0: पसंद बतानी है।
1: जो आप
2: जो
1: गुनगुनाया करते
2: आप
1: रहे
2: गुनगुनाते हैं, जो
1: हैं
2: आपको पसंद है सुनना।
0: तो सबसे पहले तो मैं एक हम दोनों का गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
1: जी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बहुत बहुत सुंदर सा है, तो चलिए इस गीत का आनंद लेते हैं।
3: मैं जिन

0: अभय जी, इस गीत से पहले हम लोग चीफ जनरल मैनेजर आनंद भूषण सरन जी से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि सिग्नलिंग और पटरी का कामकाज कैसे लोग करते रहे हैं, न जाने कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन रेलवे में रहा है। आनंद जी, जब पटरियों को स्तंभन करने का काम होता रहा है, ये पटरियां तो न जाने कितने राज्यों से और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश उनसे भी गुजरी, कभी कोई दिक्कत आई कि नहीं भाई इस शहर के लोग नहीं मान रहे, ऐसा नहीं वो नहीं करना चाह रहे हैं, खेती का काम रुक रहा है या फिर लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कभी कुछ हुआ?
1: लैंड एक्विजिशन में क्या कभी कोई समस्या आई?
2: बिल्कुल सही अभय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारा ट्रैक बिछाने का काम होता है उसमें सबसे पहले हमारा काम होता है लैंड एक्विजिशन
0: जी।
2: अब लैंड एक्विजिशन के लिए सर्वे होता है पहले कि किस तरफ से हमारा ट्रैक जाएगा, उसका एक रूपरेखा बनती है। उसके बाद उस एरिया में जो हम ROW कहते हैं, जहाँ पे हमारी बाउंड्री तक है, वहाँ तक हमको लैंड एक्विजिशन करना रहता है। तो उस लैंड एक्विजिशन में हमको बहुत दिक्कत आती है, सबसे कठिन काम है, क्योंकि आपको तरह तरह के गांव मिलेंगे, तरह तरह कस्बा मिलेगा, शहर मिलेगा और शहर में रोड मिलेंगी। वहाँ कुछ लोग तो आपको दे देंगे, गवर्नमेंट लैंड होगी तो मिल जाएगी, लेकिन जो प्राइवेट पार्टीज होती हैं वो बड़ी दिक्कत करती हैं।
1: हर स्टेट का अपना अलग वो है।
2: तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से टाई अप करते हैं, उनकी मदद लेते हैं, लैंड एक्विजिशन करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं आप कि लैंड एक्विजिशन हम कर लेते हैं, सब कुछ हमारे नाम हो जाता है, उसमें कई प्रोसेस होता है, हो जाता है, उसके बाद भी जो पार्टी रहती है खाली नहीं करती है मुआवजा देने के बाद भी।
0: हाँ।
2: तो उसमें हमें स्टेट पुलिस और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हम पूरी मदद लेते हैं और पूरा उसको, ऐसा नहीं कि हम किसी को ऐसे ही खाली कराते, उसको पूरा मुआवजा देते हैं, उसको होता है तो रिप्लेसमेंट के लिए एक जगह भी देते हैं अगर जरूरत है तो, वो करके हम लैंड एक्विजिशन करते हैं। लेकिन हम जिस आसानी से बता रहे हैं उतना
0: इतना आसान
1: के बावजूद भी मैंने देखा है, हम सभी देखते हैं, अतिक्रमण भी एक समस्या
0: है, एनक्रोचमेंट ना जी, आफ्टर
2: ट्रैक का ये अतिक्रमण उसके बाद होता है
0: जी।
2: जिस इलाके मान लीजिए लेवल क्रॉसिंग गेट है, बिजी है, जिसको संपात फाटक कहते हैं, और मेरी श्रोताओं से ये गुजारिश है, संपार फाटक जब बंद हो
0: जी,
2: तो अपनी बाइक साइकिल के साथ ना निकलें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलती आपकी जान ले सकती है। तो बेसिकली इंक्रोचमेंट वहीं होता है जहाँ भीड़ होती है, तो वहाँ कोई घुमटी लगा लेगा, वो भी धीरे धीरे कोई ध्यान इनिशियली नहीं दिया तो जम जाते हैं।
0: अच्छा, आपको वैसे देखा जाए सर तो बहुत सरल दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपसे बात हो रही है तो अंदर जो एक प्रशासनिक कुशलता है वो एकदम कूट कूट के भरी हुई है। ऐसे तो आपसे कोई डरेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो आपसे बातचीत शुरू करेगा या कागजों में, तो आपसे डर जाएगा।
2: कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो फैक्ट है। और अतिक्रमण में बहुत दिक्कत होती है, अतिक्रमण करने के बाद कोई खाली नहीं करता, आज गुमटी हमने हटाई, कुछ दिन बाद वो फिर वापस आ जाते हैं
0: जी,
2: और इस तरह चलता रहता है। तो हम लोग भी देखते हैं कहाँ पे हम लोग को हुआ है, तो हम लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं, जहाँ किसी की गुमटी लगी है वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो रही है, ट्रेन पास हो रही है, अगर रिस्की है तो उस पर हम कोई समझौता नहीं करते, क्योंकि वो तो गलती से कर रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन जान जा सकती है, तो इसमें हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस गुमटी को वहाँ से हटवाएं जबरदस्ती और इंश्योर करें कि दोबारा वहाँ ना आए। थोड़ी दूर पे हमारी लैंड पे है तो हम लोग भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि ठीक है चलो
0: जी। तो अभय जी और आनंद जी, वक्त फिर से हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और सुनते हैं आपकी ही पसंद का कोई गीत जो आपने कभी सुना हो। या
2: एक गाना है, मुझे फिल्म तो नहीं याद है, वो गाड़ी बुला रही है,
0: सीटी बजा रही है जी,
1: चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है।
0: तो सुनते हैं ये गीत।

0: सर, जैसे मालगाड़ी जाती रहती है वो बीच से ही हमेशा जाती है, प्लेटफॉर्म से नहीं गुजरती, उसका कोई खास का, आम लोग कैसे जाने कि भाई ये बीच से क्यों गुजर रही है, कभी प्लेटफॉर्म पर नहीं आती?
1: बिल्कुल आपका वाजिब क्वेश्चन है। बीच से इसलिए जाती है कि बेसिकली जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो पैसेंजर ट्रेन के लिए होते हैं।
0: जी,
1: गुड्स ट्रेन से कोई पैसेंजर उतरता नहीं है तो प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मली हम यही करते हैं। और हर स्टेशन पे गुड्स ट्रेन रोकने का मतलब भी नहीं है, तो मेन लाइन जो होती है, जो जहाँ से पास होती है वो नॉर्मली मेन लाइन होती है। मेन लाइन का मतलब स्ट्रेट ट्रैक होता है,
0: उसे मेन कहते हैं। आम लोग उसे कहते हैं वो संटिंग, वो बीच, वो मालगाड़ी वाली
1: नहीं, वो मेन लाइन होती है बेसिकली। जो राजधानी भी अगर आपके स्टेशन पे नहीं रुक रही है तो वो भी उसी लाइन से जाएगी, जो ट्रेन नहीं रुकनी होती वही उस ट्रेन वहाँ से जाती है। और कुछ स्टेशन पे आपने देखा होगा कि हर एक लाइन पे प्लेटफॉर्म होता है, तो वहाँ मेन लाइन पे भी प्लेटफॉर्म होता है, जो बहुत बड़े स्टेशन होते हैं। जैसे प्रयागराज में भी मेन लाइन पे भी प्लेटफॉर्म है
0: जी जी,
1: लेकिन नॉर्मली जो छोटे स्टेशन होते हैं उसमें मेन लाइन पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो सीधे निकल जाती गाड़ी। इसलिए मालगाड़ी इसलिए नहीं कि वो गिरे कोई छोटी चीज़ है
0: जी,
1: वो इसलिए कि उसको रोकना नहीं है, उसको निकाल देते हैं, पैसेंजर उतरना नहीं।
0: जी
2: आनंद भूषण जी, आपने बताया कि हमारी ट्रेनों की पंक्चुअलिटी बनी रहे इसके लिए ट्रैक्स की जो है स्ट्रेंथ बढ़ाई गई, तो क्या उनकी लेंथ भी बढ़ाई गई? ओवरऑल लेंथ क्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है जो पहले हुआ करती थी, या सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है?
1: नहीं, ये इसको मैं दूसरी तरह से बताता हूँ आपको। स्ट्रेंथ से तो ठीक है आप कह सकते हैं, एक कारण है सिग्नलिंग बताइए कारण। इलेक्ट्रिकल में हमारे पहले 25 केवी की OHE होती थी, अब 2x25 है, तो नंबर ऑफ ट्रेन से एक सेक्शन में ज्यादा हो गए, मल्टीपल रीजन है, टेक्निकल रीजन है, तो मैं इस फोरम पे मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो मैं बेसिक ये बता दूं, सब ये इलेक्ट्रिकल SNT और सिविल, जिसको ट्रैक कहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग और जो हमारे लोको हैं, मालगाड़ी के डिब्बे हैं, इनकी इम्प्रूवमेंट से स्पीड बढ़ी है और जो हमारे LSP कोचेज आ गए इसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ी है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता दूं कि जिसकी वजह से हमारी पंचुअलिटी बढ़ी है, तुम कहें तो मैं आपको इलाहाबाद डिवीजन वाला
0: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर।
1: दोस्तों, मैं प्रयागराज डिवीजन में था पहले, तो उस समय हमारे डिवीजन की पंचुअलिटी 38-40% होती थी, और जिस दिन 43-44 होती थी उस दिन हमारे कंट्रोल में मिठाइयां बढ़ती थी।
0: वाह,
1: तो उसको लगता था कि मतलब कि हमने अचीवमेंट लिया। अच्छा, जैसे इस समय 2022 से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ गया, जो मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक है, उसके बाद से मैंने नोटिस किया कि ये पंचुअलिटी जो है 85 और 90 के बीच में रहती है और कोई मिठाई नहीं बढ़ती।
0: कई बार क्या होता है कि छोटी सी सफलता भी मिलती है तो हम अक्सर खुश हो जाया करते हैं। दोस्तों, आज के वॉइस ऑफ प्रयाग में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी बातचीत के साथ अगले एपिसोड में। सुनते रहिए वॉइस ऑफ प्रयाग। तो आज के एपिसोड में हम कहते हैं
1: नमस्कार।

और अभय कांत तिवारी की बातचीत का पहला भाग सुना। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे बुधवार को सुबह 10:05 पर कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज में। और अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं खोखा मिर्जापुरी। आज आप इनके स्वर में गाए लोकगीतों का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले खोखा मिर्जापुरी के स्वर में गाया ये देवी गीत हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और आज के कलाकार हैं खोखा मिर्जापुरी, और अब इनके स्वर में हम आपको सुनवाते हैं कजरी।

श्रोताओं, इस कजरी गीत के बाद हम आपको सुनवाते हैं विदेशिया गीत, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है खोखा मिर्जापुरी ने। आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम।

और इस विदेशिया गीत के बाद हम आपको सुनवाते हैं श्रोताओं कजरी गीत। और इस गीत को अपनी स्वर से सजाया है खोखा मिर्जापुरी ने। आइए सुनते हैं इनके स्वर में गाया ये कजरी गीत।

0: अभी आप खोखा मिर्जापुरी के गाए कुछ लोकगीत सुन रहे थे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, पेश कार्यक्रम एक ही कलाकार। कभी मासूम चेहरे पर बचपन की मुस्कान बनकर आए, कभी किरदारों में ढलकर जिंदगी के रंग दिखाए, कभी कैमरे के आगे अपनी अदाकारी का जादू चलाया, तो कभी कैमरे के पीछे रहकर हुनर का परचम लहराया। ये कहानी है उस फनकार की जिसने उम्र के हर पड़ाव को एक नया किरदार बनाया, सचिन पिलगांवकर।

सिनेमा के पर्दे पर सचिन पिलगांवकर की आमद उस उम्र में हुई जब ज्यादातर बच्चे खिलौनों से खेलते थे। मगर सचिन ने कैमरे की रोशनी को अपना खेल का मैदान बना लिया। बाल कलाकार के रूप में सचिन की प्रतिभा ने जल्द ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया। फिल्म हा माझा मार्ग एकला में उनके अभिनय को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला और वे कम उम्र में ही अपनी पहचान बनाने वाले कलाकारों में शामिल हो गए। उम्र छोटी थी मगर हुनर में आसमान था, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अरमान था। पर्दे पर आए तो किरदार बोल उठे, ये बच्चा नहीं आने वाला फनकार था।

सचिन पिलगांवकर पर केंद्रित एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपने होस्ट और दोस्त उज्जवल सिन्हा के साथ।

70 और 80 के दशक में रफ्ता रफ्ता हौले हौले सचिन पिलगांवकर का फिल्मी सफर यूं ही आगे बढ़ता रहा, गाते हुए मुस्कुराते हुए।

कभी गीतों की धुन में मोहब्बत बनकर आए, कभी भोलेपन में दिलों को अपना बना गए। सादा सा चेहरा मगर अंदाज निराला था। सचिन थे कि पर्दे पर आते ही कहानी का रंग बदल जाता है।

चोले बालिका वधू गीत गाता चल अखियों के झरोखों से और नदिया के पार जैसी फिल्मों ने उन्हें दर्शकों के दिलों तक पहुंचाया।

सचिन पिलगांवकर का हुनर सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने निर्देशन की दुनिया में भी कदम रखा और मराठी सिनेमा में अपनी रचनात्मक पहचान मजबूत की। यानी फन अगर जुनून हो तो रास्ते कम पड़ जाते हैं, फन अगर जुनून हो तो रास्ते कम पड़ जाते हैं, किरदार छोटे बड़े नहीं, कलाकार बड़े हो जाते हैं। जिसने अभिनय से दिल जीते, निर्देशन से सोच बदली, ऐसे ही फनकार वक्त के साथ अमर हो जाते हैं।

0: सुना था चल।
1: टेलीविजन और मराठी मनोरंजन जगत में भी सचिन ने अपनी सक्रियता बनाए रखी। अभिनय, निर्देशन, निर्माण और मंच, हर क्षेत्र में उनकी मौजूदगी ने ये साबित किया कि सच्चा कलाकार किसी एक दायरे का मोहताज नहीं होता। सिनेमा की राह में कई चेहरे आए और चले गए।

कुछ पर्दे पर चमके और फिर धुंधले पड़ गए, मगर कुछ नाम वक्त की किताब में ऐसे लिखे जाते हैं जिन्हें उम्र नहीं उनकी कला जिंदा रखती है।

बाल कलाकार से अभिनेता, अभिनेता से निर्देशक और निर्देशक से एक मुकम्मल फनकार तक सफर अभी भी जारी है, कहानी अभी अधूरी है।

फ़न की ये रवानी आज भी उतनी ही ज़रूरी है जिसने बचपन में सिनेमा को अपना साथी बनाया। उस सचिन ने हर दौर में अपने हुनर का नया अध्याय सजाया।

अपने कार्यक्रम की ओर से और आकाशवाणी प्रयागराज परिवार की ओर से सचिन पिलगांवकर को एक बार फिर जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में हमने अपने जिन फिल्मों के गीत सुनवाए उनके नाम है। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था शैलेंद्र सिंह और हेमलता की आवाजों में अखियों के झरोखों से फिल्म। कार्यक्रम का दूसरा गाना मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में था ब्रह्मचारी फिल्म से। इसके बाद हमने आपको सुनवाया था सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना किशोर कुमार, भूपिंदर, सपना चक्रवर्ती और आरडी बर्मन की आवाज में। फिर बालिका वधु फिल्म का गीत आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने गीत गाता चल फिल्म से लिया था, जिसे गाया था

जसपाल सिंह और साथियों जी। और बैकग्राउंड में ये जो गीत आप सुन रहे हैं, इसे गाया येसुदास और हेमलता ने। फिल्म का नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इसी के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त करने की अपने होस्ट और दोस्त उज्जवल सिन्हा को इजाज़त दीजिए। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये है कार्यक्रम का पहला गाना, जावेद अख्तर का लिखा, अनु मलिक का संगीतबद्ध किया। गाने में आवाजें आपको सुनने को मिलेंगी कुमार सानू और चित्रा की। फिल्म विरासत का युगल गीत है ये।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। कभी भी कहीं भी आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप ट्यून कर सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR

सावन की फुहारों में कुछ ऐसा असर है, सावन की फुहारों में कुछ ऐसा असर है, हर बूंद में जैसे तेरा ही जिक्र है। भीगती हुई सुबह और तेरी यादों का साथ, यही तो मेरे दिल की सबसे हसीन बरसात।

कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में आप सुन रहे हैं समीर की गीत रचना, नदीम शर्मा का संगीत, फिल्म जान की कसम।

0: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे हैं ये सदाबहार गाना, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया, फिल्म का नाम अनुरोध।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको

रिमझिम फुहारों का मौसम बड़ा सुहाना है, भीगे हुए लम्हों में तेरा ख्याल आना है। बादल कर

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाज़ों में आप सुन रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा दो गाना। धन आर डी बर्मन की फिल्म का नाम राजा रानी।

गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा या अन्य कार्यक्रम हमारे कैसे लगते हैं, आपको अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर नंबर है 8008

4926250। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4

0: अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की रूपरेखा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद 12:15 पर सुनिए पंडित C.R. व्यास का गायन। शास्त्रीय संगीत के एक दूसरे कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आपको सुनवाएंगे मधुसूदन भावे का गायन। संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर आएंगे 12:30 पर। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी 1:15 से प्रसारित किया जाएगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 2:30 पर। नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुन सकते हैं 5:00। युवाणी में 5:15 पर युवजन सुनेंगे अंशिल रूबे की वार्ता, प्लास्टिक मुक्त भारत और युवा प्रतिभागिता। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे खोखा मिर्जापुरी के गाए लोकगीत और शिव प्रताप से लोक भाषा कविता पाठ। हिंदी कार्यक्रम में 7:31 पर सुनिएगा श्याम मिश्र की वार्ता, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की यात्रा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 7:45 पर आपको सुनवाएंगे गार्गी द्विवेदी की गाई कुछ भक्ति रचनाएं। फिल्म संगीत का निर्णय लीजिएगा रात 8:00 और 10:00। कानून और हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे अधिवक्ता अतुल कुमार यादव की वार्ता, डिजिटल युग में निजता का अधिकार और डेटा संरक्षण कानून। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां रात 9:30 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की रूपरेखा।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। सुशील कुमार निवासी ग्राम जौहरपुर थाना हिंदवारी जनपद बांदा सूचित करते हैं कि मोनी देवी 14 जुलाई 2026 से बहतगाम खुना थाना मोहम्मदपुर पैंसा जनपद कौशाम्बी से लापता है। मोनी देवी के विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 22 वर्ष, रंग गोरा, इकहरा बदन और चेहरा गोल है। मोनी देवी के विषय में कोई भी सूचना आप थाना मोहम्मदपुर पैंसा कौशाम्बी को या इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9035600308। ये थी खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग शुद्ध सारंग में गाया ख्याल। गायक कलाकार पंडित सी आर व्यास।

राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन अभी आपने सुना। गायक कलाकार थे पंडित सी आर व्यास। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब पेश है संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ। रेगिस्तान का पेड़ और नदी किनारे का पेड़, दोनों की हरियाली एक जैसी दिख सकती है, मगर एक ने हर बूंद के लिए तपती जमीन से लड़ाई लड़ी है और दूसरा बिना संघर्ष के पानी की छांव में पला है। हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। कुछ लोग हालातों से संवरते हैं तो कुछ लोग संघर्षों से निखरते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम। और कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म का नाम है आराधना। आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है और इस गीत की फरमाइश हमें की है डब्बवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का आराधना फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग ये है कि लोग क्या कहेंगे, और लोग तब तक कहते रहेंगे कि जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी, और जिस दिन ये सांसें थम जाएंगी उस दिन भी कहेंगे अच्छा आदमी था। इसलिए लोगों की बातों में अपनी जिंदगी मत गंवाइए, क्योंकि उनकी राय तो बदलती रहती है लेकिन आपका बीता हुआ जीवन वापस नहीं आता। लोगों की राय आपके बारे में क्या है ये उन पर छोड़ दीजिए, उनके जैसे विचार हैं वो आपको उसी तरह देखेंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बगैर इस जिंदगी को खुशनुमा बनाइए, क्योंकि लोगों का हालचाल तभी पूछना होता है जब वो आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है इसकी दिलचस्पी रखते हैं। ये समझ लीजिए कि ऐसे दोगले लोगों से दूर रहना ही समझदारी है, और अगर खुश रहना चाहते हैं तो हर बात को दिल पे लेना छोड़ दीजिए, लोगों को उनकी तरह से रहने दीजिए, और जो बीत गया उसे जाने दीजिए, और खुद पर ध्यान दीजिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर, अपनी आत्मिक शांति पर, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है और इसे दूसरों की सोच के अनुसार नहीं अपने अनुसार जीना चाहिए। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, और ये गीत है, फिल्म का नाम है बालिका वधू, आवाज अमित कुमार की है, और इस गीत की फरमाइश हमें की है पुलिस लाइन प्रयागराज से गोविंद कनौजिया, मधु कनौजिया, गौरी कनौजिया, हनी कनौजिया। पूर्णिया बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक, पीहू, विमल और इनके परिवार के अन्य सदस्य। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत थांदी और वामिका। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का बालिका वधू फिल्म का ये गाना।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और इस कार्यक्रम में अपने संदेश और अपनी फरमाइश के गानों को लिखकर भेजने के लिए हम आपको बता रहे हैं एक नंबर। कई श्रोता इस नंबर को जानते हैं, लेकिन जो नए श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं वो लिख लें ये नंबर 8004926250। नंबर एक बार फिर से 8004926250। और इस नंबर पर आप संदेश लिखकर हमें भेज दें, इस नंबर पर कॉल मत करिएगा। तो अब हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गाना, लेकिन उससे पहले उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, आर्यनगर कोहका से उत्तम सिंह जंघैल, मोरस, अनिल कुमार, आयुष और नंदिनी, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है दर्द और आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

दोस्तों, स्कूल डेज में हमें बहुत कुछ पढ़ाया गया है, जैसे कि त्रिकोण, लघु कोण, समकोण, परंतु जो जीवन में सबसे उपयोगी था वो ही नहीं पढ़ाया गया। अब आप पूछेंगे वो क्या था? वो था दृष्टिकोण। जी हाँ, आप किसी चीज के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर होता है, और दृष्टिकोण यदि आपका सही होगा तो वो चीज आपको सही नजर आएगी, और गलत दृष्टिकोण हर बात का स्वरूप ही बदल देता है। तो दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, और ये गीत आ रहा है, फिल्म का नाम है हिना, और इस गीत की फरमाइश की है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा और इनके परिवार के अन्य सदस्य, मुरादाबाद दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। तो सुनिए अपनी पसंद का हिना फिल्म का ये गीत।

0: ये था संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया मधु कुमार ने।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सड़क पर चलते समय सदैव यातायात के नियमों का पालन करें। दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य धारण करें। चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट बांध कर यात्रा करें। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, एक बजने वाले हैं समाचारों की, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: ब्रिक्स की पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के 11 स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन 3 विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के 3रे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 3रे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: आज लखनऊ में राशन डीलर्स के लिए नए ई पॉस पर मबनी राशन डीलर्स कमीशन सिस्टम के आगाज़ में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने मुनसिफाना कीमत फरोख्त करने वालों के मुनाफे का मार्जिन 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये फ़ी क्विंटल कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत ने रियासत के खुराक की तकसीम के निज़ाम में आई कमियों को दूर करने के लिए काम किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के ज़रिए रियासती हुकूमत ने बेसिक एजुकेशन काउंसिल के हर स्कूल में फ़र्श, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग बैतुलखला, पीने के पानी की सहूलत, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, फर्नीचर वगैरह समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की हैं।
1: ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।
0: नाग पंचमी का त्यौहार आज पूरी रियासत में रवायती अंदाज में अकीदत और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर रियासत के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने भगवान शिव से दुआ की कि हर घर और आंगन खुशी, अमन और खुशहाली से मुनव्वर हो। उन्होंने नागपंचमी को एक मुकद्दस त्यौहार के तौर पर बयान किया जो फितरत, बकाए बाहमी और शिवत्व का पैगाम देता है। इस दरमियान बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कल से ही अकीदतमंदों और कांवड़ियों की बड़ी भीड़ वाराणसी पहुंच रही है। एक रिपोर्ट।
2: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन पर्व से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दराज के जिलों और राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। सावन सोमवार को शिव पूजन जबकि नागपंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक संयोग को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: नागपंचमी और सावन महीने के तीसरे सोमवार के मौके पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान शिव की मंगला आरती की गई। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दर्शन पूजा के लिए आए हुए कांवड़ियों और अकीदतमंदों का फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार और जज्बाती इस्तकबाल किया गया। बाराबंकी के रामनगर में वाक़ श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर के दरवाजे जैसे ही खुले वहाँ अकीदतमंदों की भीड़ लग गई और पूरा कॉम्प्लेक्स बोलबम और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। अमरोहा, फर्रुखाबाद और जौनपुर में भी बड़े शिव मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की कतारें देखी जा रही हैं। पीलीभीत में ज़िला मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह ने सावन के सोमवार पर भारी भीड़ और रास्ते बदलने की वजह से दर्जा 8 तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। अग्निवीर भर्ती रैलियां रियासत के 6 ज़िला मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अयोध्या में मुनक़िद की जाएंगी। भर्ती रैली आज 17 अगस्त को मेरठ में शुरू होगी जो 14 अप्रैल को अयोध्या में इख्तिताम पजीर होगी। एक हालिया जायजा मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी SP गोयल ने उम्मीदवारों की रिहाइश, सिक्योरिटी और भर्ती की जगहों पर भीड़ और ट्रैफिक के इंतज़ाम के मौसर इंतजाम की हिदायत दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट इम्तिहान के 3 मजामीन अंग्रेज़ी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए दोबारा इम्तिहान का ऐलान किया है। यह फ़ैसला इन मजामीन में गलतियों की मुतअद्दिद शिकायत मौसूल होने के बाद किया गया है। NTA ने कहा कि 9 सितंबर को अंग्रेज़ी मजमून सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, उसी दिन कॉमर्स का मजमून सहपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और सोशियोलॉजी का मजमून 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। नतायज काउंसिल की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। ये मालूमात देते हुए काउंसिल ने कहा कि हाई स्कूल के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट इम्तिहान में 20,855 उम्मीदवारों ने शिरकत की जबकि इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट इम्तिहान में 21,227 उम्मीदवार शरीक हुए। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई अज़ला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज मशरक़ी और मगरबी डिवीज़न के कई मकामात पर तेज़ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चित्रकूट में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी के पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा हुआ है। मंदाकिनी नदी रामघाट पर ख़तरे के निशान को उबूर कर चुकी है। पानी की बढ़ती हुई सतह के पेश नज़र इंतज़ामिया मुकम्मल अलर्ट मोड पर है।

0: इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी सुन रही मेरी सभी प्यारी गृहलक्ष्मी सखियों को रोशनी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार,
1: और आप सबको मेरा यानी तनु का भी बहुत बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और देखिए बहनों, घड़ी की तरफ ठीक सवा एक बज रहे हैं और अपने वादे के मुताबिक मैं और रोशनी हाजिर हो गए हैं। और हमें पता है ये बात कि आप सबको भी बहुत इंतज़ार रहता है हमसे मिलने का, इसलिए आप सब अपने सारे काम निपटाकर मी टाइम निकालकर रेडियो सेट्स खोलकर हाजिर हो गई हैं हमारे कार्यक्रम, हमारी प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए, है ना रोशनी?
0: बिल्कुल, जहाँ संस्कृति प्रकृति का हाथ थामे और हर परंपरा संरक्षण का संदेश बन जाए, वहीं से शुरू होती है गृहलक्ष्मी की सुंदर कहानी।
1: वाह,
0: इस सावन में हम लेकर आए हैं नागपंचमी पर एक विशेष बातचीत, ऐसी बातचीत जिसमें होगी आस्था, संस्कृति, लोक परंपरा, प्रकृति और संरक्षण की बात।
1: आज हम जानेंगे नागपंचमी केवल नाग देवता की पूजा है या इसके पीछे प्रकृति को बचाने का भी कोई संदेश है।
0: तो सावन की हरियाली और मन की उमंग के साथ शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम का एक सुंदर गीत से। सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: कितना खूबसूरत गीत था, है ना रोशनी?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल आज के मौसम जैसा। बाहर भी तो रिमझिम रिमझिम हो रही है, है ना? और रोशनी देखो, नागपंचमी आते ही हमारे मन में पूजा, व्रत, कथा और नाग देवता की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या हम इस पर्व का व्यापक अर्थ समझते हैं?
1: हाँ दीदी, नागपंचमी हमें ये बताती है कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है। खेत, मिट्टी, वर्षा, पेड़ पौधे और जीव जंतु, इन सभी के साथ मिलकर जीवन का संतुलन बनता है।
0: बिल्कुल, सांपों को अक्सर डर की नज़र से देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो चूहों और कई छोटे जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं और इस तरह फसलों वगैरह को बर्बाद होने से बचाते हैं, या हम साधारण भाषा में कहें तो हमारे इकोसिस्टम को वो बचा कर रखते हैं, संतुलित करके रखते हैं।
1: इसलिए नागपंचमी का सच्चा संदेश कहें तो यही हुआ, भय नहीं समझ, हिंसा नहीं संरक्षण। और जब भी नागपंचमी की बातें आती हैं तो दिमाग में हर बार मुझे वो विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर के उफानों के बीच शयन करते हुए नजर आते हैं, जो बार बार मुझे लगता है कि यही संदेश दे रहे होते हैं कि शेषनाग जैसी जब नकारात्मकता हमारे जीवन में आ जाए तो खुद को, अपने विवेक को, अपनी आत्मा को जब हम लोग जगा कर रखते हैं तो ये नकारात्मकता भी जो होती है हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पा सकती।
0: बिल्कुल। और इसके बाद हम बहनों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सार्थक बातचीत, सफ़ेद दाग, भ्रांतियां और उपचार। और इस बातचीत में डॉक्टर पल्लवी सिंह से बात कर रहे हैं अभय कांत तिवारी जी। तो आओ सुनते हैं ये बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। विटिलगो अर्थात सफ़ेद दाग, यह त्वचा संबंधी एक बड़ी समस्या है। अनुमानतः विश्व की 0.5% से 2% तक आबादी विटिलगो से प्रभावित है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 1-4% है। विटिलगो हमें सिर्फ शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं करता बल्कि मानसिक रूप से काफी प्रभावित करता है। इसी समस्या पर और इससे जुड़ी भ्रांतियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पल्लवी सिंह। डॉक्टर पल्लवी नमस्कार।
3: नमस्ते।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि विटिलगो आखिर है क्या?
3: विटिलगो, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में सफेद दाग कहते हैं, ये बेसिकली एक नॉन कम्युनिकेबल मर्ज है जिसके कई कारण हैं, जिसको ऐसे नॉर्मली कंफ्यूज कर लिया जाता है कुष्ठ के साथ।
2: कुष्ठ के साथ,
3: लेकिन सच पूछा जाए तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल मर्ज है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो इसके कारणों में आपका सबसे बड़ा कारण तो ऑटो इम्यूनिटी आता है। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? तो बेसिकली जो शरीर की क्षमता होती है बाहर के कीटाणुओं से लड़ने की, जब वो आप ही के शरीर के तत्वों से लड़ने लगे तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। अब विटिलिगो या सफ़ेद दाग में क्या होता है कि आपकी शरीर की सेल्स जो हैं वो आपकी त्वचा में जो रंग बनाने वाली सेल्स हैं, जिनको हम मिलानोसाइट्स कहते हैं, वो उनको अटैक कर देती हैं।

0: तो जब वो उनसे लड़ने लग जाती हैं तो मेलानोसाइट को मार देती हैं, जिस वजह से वहां पर रंग बनना बंद हो जाता है और सफेद दाग आ जाता है। तो ये तो सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा सफेद दाग में थोड़ा बहुत जेनेटिक बेसिस भी देखा गया है, मतलब अगर आपके माता पिता में है सफेद दाग तो आपको मिलने का चांस 20% तक होता है। फिर तीसरा कारण अगर हम देखें तो फ्री रेडिकल डैमेज जिसको हम कहते हैं। तो अब ये होता कैसे है कि आजकल जो हमारे खान पान की चीज़ें हैं उनमें बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, प्रेजर्वेटिव्स ये सब मिले होते हैं। तो ये सारे जो केमिकल्स होते हैं या इवन सब्जियों में फलों को पकाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं या फिर जो पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, ये सब क्या करते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बनाने लग जाते हैं और वो जो हैं फिर सेल्स को अटैक करके मारने लग जाते हैं। तो इसको भी हम फ्री रेडिकल डैमेज कहते हैं जो इन बीमारियों को और बढ़ा देते
1: डॉक्टर
0: हैं।
1: साहब, आपने जैसे बताया कि एक तरह से ये ऑटोइम्यून डिसीज है और एक तरह का डिसऑर्डर है,
0: डिसऑर्डर
1: ये
0: है
1: कोई इन्फेक्शन
0: ये,
1: नहीं है
0: कोई
1: कोई
0: इन्फेक्शन नहीं है, नहीं।
1: तो डॉक्टर साहब, इससे जुड़ी एक भ्रांति ये है कि जो हमारे खान पान की चीज़ें हैं, जैसे
0: जी
1: दूध है, उसके साथ जो नॉनवेज खाते हैं, मछली है
0: जी
1: या फिर प्याज है, लहसुन है, इन
0: जी
1: सब का इस पे प्रभाव पड़ता है।
0: नहीं, देखिए इसका कोई साइंटिफिक प्रूवन बेसिस नहीं है कि दूध या कोई भी सफ़ेद चीज़, जैसे कई मरीज़ होते हैं वो अपना खाने पीने में दूध, दही, नमक ये सब बंद कर देते हैं, चीनी बंद कर देते हैं, या खट्टी चीज़ें जो होती हैं जैसे आपका आंवला हुआ, मौसम्मी हुआ, संतरा, नींबू, सब छोड़ देते हैं कि इन सब से बढ़ रहा है, पर इसका कोई भी प्रूवन साइंटिफिक बेसिस नहीं है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित कर सकता है?
0: तो विटिलिगो बेसिकली आपके शरीर में जहाँ जहाँ त्वचा है सब जगह कहीं पे भी हो सकता है, और त्वचा तो पूरे ही शरीर को
1: हाँ
0: कवर कर रही है, तो आपकी त्वचा में, बाल में, या फिर इवन जो आपकी शरीर की ओपनिंग्स हैं उनकी जो लाइनिंग होती है, जैसे आपका मुंह है, नाक है, कान है, गुप्तांग, अंदरूनी जो अंग है उनकी लाइनिंग में भी ये आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ये क्या किसी विशेष उम्र में इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है या ये किसी भी उम्र में हो सकता है?
0: विटिलिगो का मर्ज कभी भी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। यूजुअली ये देखा गया है कि 10 से 30 साल की उम्र में पहला पैच कई बार लोगों को आ जाता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको 30 साल के बाद विटिलिगो नहीं हो सकता, ये कभी भी हो
1: ये
0: सकता है,
1: किसी भी उम्र में
0: किसी
1: हो
0: भी उम्र में
1: सकता
0: हो
1: है।
0: सकता
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब, जब हम आंकड़ों पे चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि पूरे विश्व में औसत जो विटिलिगोस प्रभावित लोगों की संख्या है
0: जी
1: और भारत में उनसे काफ़ी ज़्यादा है,
0: जी
1: तो इसका क्या कारण है? क्या भौगोलिक कारण भी ये रोग होने में, विटिलगो होने में
0: जी
1: कुछ सहायक है?
0: नहीं, भौगोलिक तो मैं नहीं बोलूँगी, सत्य बात तो ये है कि भारत की पॉपुलेशन आबादी भी विश्व में काफ़ी ज़्यादा
1: ज़्यादा
0: है,
1: है।
0: तो ऐसा नहीं है कि कोई इसमें भौगोलिक या ज्योग्राफिक कारण है या किसी पर्टिकुलर रंग के लोगों में ज़्यादा पाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन जनरल भारत में ऑटो इम्यूनिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है ऑफ लेट। अब जैसे जो दुनिया का सबसे कॉमन ऑटो इम्यून मर्ज़ है डायबिटीज़, वो भी भारत में सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो जब ऑटो इम्यूनिटी की टेंडेंसी बढ़ रही है तो जितने भी ऑटो इम्यून मर्ज़ हैं उनको होने की भी टेंडेंसी बढ़ रही है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये संक्रामक नहीं है,
0: जी
1: क्या ये वंशानुगत हो सकता है? जैसे माता पिता को है, दादा दादी को है, तो
0: जी
1: क्या पोते को या बच्चे को होने की संभावना बढ़ जाती है?
0: जी संभावना मान के चलिए कि अगर आपके इमीडिएट जैसे पेरेंट्स को है, माता पिता को है या दादा दादी को है, तो 20% तक चांस है कि ये आप में आ सकता है। पर ऐसा नहीं है कि मतलब सारे बच्चों में आ जाएगा या फिर घर के हर मेंबर में आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, एक और इससे जुड़ा प्रश्न है कि धूप
0: जी
1: का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ज़्यादा धूप में रहने से
0: जी
1: ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है?
0: नहीं, देखिए धूप को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी इसलिए होती है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि विटिलिगो केवल खुली जगहों पर आता है, मतलब जो आपके कपड़ों से नहीं ढकी जगहें हैं वहीं पर आता है, पर ऐसा कुछ नहीं। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि विटिलिगो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, और सत्य बताऊं तो जैसे हम अगर विटिलिगो के इलाज की बात करें तो इलाज के लिए कई बार जो हम दवाइयाँ देते हैं उसमें ये रिक्वायर्ड होता है कि आप वो दवा खा कर या लगा कर धूप में
1: धूप
0: जाके
1: में बैठे,
0: बैठें ताकि जो है आपके मेलानोसाइट्स एक्टिवेट होके रंग बनाना चालू करें।
1: अच्छा, धूप एक तरह से सहायक है
0: आप
1: इसको उपचार
0: जी
1: में।
0: जी उपचार में हेल्प करती है।
1: डॉक्टर साहब, कई भ्रांतियाँ ऐसी भी हैं कि कुष्ठ से इसको जोड़ते हैं,
0: जी
1: तो या सफेद कुष्ठ बोल देते हैं,
0: जी
1: तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या भ्रांति है?
0: नहीं, देखिए विटिलिगो और कुष्ठ रोग बिल्कुल

0: दो अलग मर्ज हैं। कुष्ठ रोग एक इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया से फैलता है, जबकि विटिलिगो, जैसा मैंने पहले भी बोला, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके अपने अलग कारण हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अलग मर्ज हैं। कई बार सफ़ेद दाग को मान लिया जाता है कि ये कुष्ठ का एक फॉर्म है, वो इसलिए क्योंकि दिखने में दोनों में ही आपको शुरू में हल्के हल्के से लाइट कलर के स्किन में लीजन दिखाई देते हैं, तो इसलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कुष्ठ ही विटिलिगो है, विटिलिगो ही कुष्ठ है, पर ये दो बिल्कुल अलग मर्ज हैं।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे किसी को सफ़ेद दाग शरीर में आ रहे हैं तो कैसे समझे कि उसको विटिलगो ही है? क्या इसके लिए कोई जांच होती है या अपने से इसको पता कर सकते हैं?
0: नहीं, देखिए, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके शरीर में सफ़ेद दाग आ रहा है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जल्द मिलें, क्योंकि हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता। सफ़ेद दाग के कई सारे कारण होते हैं, और सफ़ेद दाग जो बिल्कुल सफ़ेद है या फिर हल्का सा उसमें पिगमेंटेशन का फ़र्क है, उनके भी कई सारे कारण होते हैं। जैसे एक हमने बात की कि सफ़ेद दाग का एक कॉमन डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस होती है वो कुष्ठ रोग हो जाती है, क्योंकि उसमें भी आपके स्किन का जो रंग है वो थोड़ा हल्का पड़ने लग जाता है। इसी तरीके से बच्चों में एक कंडीशन होती है जिसको हम पिट्रियासिस एल्बा कहते हैं, तो वो दूसरे कारण से होता है, वो अंदरूनी कारण से होता है, वो सफ़ेद दाग या कुष्ठ रोग दोनों से ही रिलेटेड नहीं होता। फिर अगर आप देखें तो एक कंडीशन होती है बहुत कॉमनली सेहुआ कहते हैं जिसको, पी वर्सिकुलर, तो ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। तो बहुत सारे कारण हैं आपके शरीर पे सफ़ेद दाग बनने के। अब अगर आप पहले से खुद ही उसमें सोचने लग जाएं, तो जैसा कि आपने बोला कि सफ़ेद दाग के बहुत मानसिक इम्प्लिकेशंस हैं, इंसान बहुत तनाव में आने लग जाता है इसको लेके, बिकॉज़ सोसाइटी में इसको लेके बहुत सारी धारणाएं फैली हुई हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आपको शरीर में कभी भी सफ़ेद दाग दिखे तो खुद से कोई कंक्लूजन ना बनाएं, बल्कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, तो वो बेसिकली उसको एग्जामिन करेंगे। कुछ जैसे एज सच ब्लड टेस्ट इसमें नहीं होते हैं, इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जैसे ग्लास लाइट से टेस्ट किया जाता है, या फिर जो है वुड्स लैम्प होता है उससे देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जो है आपका डायग्नोसिस बनाने में हेल्प होती है।
1: डॉक्टर साहब, ये हमारी त्वचा को प्रभावित करता है,
0: जी
1: क्या ये हमारे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है, अंदरूनी अंगों को?
0: नहीं, विटिलिगो बेसिकली आपका एक कॉस्मेटिक डिसेबिलिटी है। ये जो भी है बाहर से, जो आपके मेलानोसाइट्स हैं वो अटैक हुए हैं, इस वजह से उनको प्रभावित किया गया है। ये अंदर से आपको कोई मर्ज नहीं दे रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि ये एक ऑटो इम्यून मर्ज है, तो कुछ लोगों में देखा गया है कि इसके साथ दूसरे ऑटो इम्यून मर्ज भी पाए जा सकते हैं। जैसे इन पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में डायबिटीज़ मिल सकता है, थायराइड डिसऑर्डर मिल सकता है, फिर जो ऑटो इम्यून खून की कमी होती है जिसे हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं वो मिल सकता है। एलोपेशिया एरियाटा एक मर्ज़ होता है जिसमें आपके सर से पैच पैच में बाल गायब होने लग जाते हैं, वो मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, पर ये भी ऐसा नहीं कि हर पेशेंट में मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, बात हो गई लक्षण की और उससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं,
0: जी
1: अब आते हैं उपचार पे। तो इसकी
0: जी
1: लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है?
0: देखिए, जो सबसे ज़रूरी है समझना जानना वो ये कि एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के मन में है कि विटिलिगो लाइलाज है,
1: हाँ, ये भ्रांति है।
0: तो ऐसा नहीं है। आज के दिन में विटिलिगो के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप इसको ट्रीट करना चाहते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, इसका ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है कि मर्ज की स्टेबिलिटी कैसी है। अब हम स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो इसका ये अर्थ होता है कि 1 साल के ड्यूरेशन में अगर आपका मर्ज जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, तब उस सिनेरियो में जो है आपकी डिजीज़ अनस्टेबल मानी जाती है। लेकिन अगर 1 साल तक ना मर्ज घट रहा है ना बढ़ रहा है, चाहे आप ट्रीटमेंट पे हो या ना हो, तो उसको हम स्टेबल विटिलिगो कहते हैं। अब उसी के बेसिस पर उसके उपचार डिसाइड होते हैं। तो जो अनस्टेबल विटिलिगो होते हैं, जहाँ आपका मर्ज बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती हैं, और दूसरा होता है फोटोथेरेपी दी जाती है। लेकिन जो आपका स्टेबल विटिलिगो होता है उसमें बेसिकली सर्जिकल मैनेजमेंट काफ़ी हेल्पफुल होता है,
1: डॉक्टर
0: मतलब
1: साहब,
0: सर्जरी
1: आपको
0: की
1: बीच में
0: जाती।
1: रुकना चाहूंगा, आपने फोटोथेरेपी की बात की, तो
0: जी,
1: फोटोथेरेपी क्या होती है, संक्षेप
0: फोटोथेरेपी
1: में बता सकते
0: बेसिकली लाइट थेरेपी इसको कहा जाता है,
1: हैं?
0: या हम इसको अगर बोलें तो एक तरीके की सिकाई होती है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में ये जो मेलानोसाइट्स होते हैं, तो ये सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट पर ज़्यादा एक्टिवेट होकर कलर बनाते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनको लगाकर पेशेंट को बोला जाता है
1: धूप
0: धूप
1: में।
0: में खड़े होने को,

0: तो वो इसलिए क्योंकि धूप में 7 तरीके की किरणें होती हैं। उनमें से जो आपकी यूवीए और यूवीबी वाली किरणें हैं वो हेल्प करती हैं रंग बनाने में। इसीलिए फोटोथेरेपी के जो यूनिट्स होते हैं, जैसे नैरो बैंड यूवीबी कहते हैं उसको, तो वो उसमें 311 नैनोमीटर पे जो आपको लाइट मिल रही है वो कलर बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो उससे पेशेंट की सिकाई कराई जाती है ताकि कलर थोड़ा जल्दी बने, या फिर अगर डिजीज़ अनस्टेबल है तो वो स्टेबल की तरफ बढ़ने लगे।
1: डॉक्टर साहब, आपने बात की सर्जिकल ट्रीटमेंट की, तो उसके
0: जी,
1: बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: तो बेसिकली देखिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट विटिलिगो का तभी पॉसिबल होता है जब आपका मर्ज स्टेबल है। मतलब चाहे आपने ट्रीटमेंट लिया हो या ना लिया हो, 1 साल तक आपका मर्ज ना बढ़ना चाहिए ना
1: ना
0: घटना
1: घटना चाहिए।
0: चाहिए, तभी हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अब उसके भी कई तरीके हैं, बहुत सारी ग्राफ्टिंग सर्जरीज की जाती हैं, जैसे पंच ग्राफ्टिंग हो गया, स्मैश ग्राफ्टिंग हो गया, सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग हो गया, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग हो गया, ये सारे। तो इनमें बेसिकली किया क्या जाता है कि जहाँ पे आपका नॉर्मल स्किन अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ से उन स्किन को निकाल कर, क्योंकि जो हमारे मेलानोसाइट्स या कलर बनाने वाली सेल हैं वो हमारी स्किन की सबसे ऊपरी परत में पाई जाती हैं,
1: अच्छा,
0: तो उनको निकाल कर फिर उनको इन जगहों पर ग्राफ्ट कर दिया जाता है। और ग्राफ्ट करने के बाद जो है, हम फोटोथेरेपी की मदद से या सनलाइट की मदद से फिर इनको एक्टिवेट करते हैं कि ये धीरे धीरे कलर बना के वहाँ पर फैलाने लग जाते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, इससे ये विटिलगो जो है पूरी तरह ठीक हो जाता है?
0: काफ़ी हद तक देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो विटिलिगो में बहुत, मतलब उसकी आगे कैसी प्रोग्नोसिस होगी वो बहुत मैटर करते हैं, जैसे कहाँ का विटिलिगो है। अब जैसे शरीर पे जो विटिलिगो आ रहा है, जैसे मान लीजिए पैर पे है, पेट पे है, वो फिर भी ट्रीटमेंट को ज़्यादा अमेनेबल होता है, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। लेकिन जो विटिलिगो आपका लिप टिप विटिलिगो होता है, मतलब जो आपके लिप्स पे पाया जा रहा है, या आपकी उंगलियों की टिप्स पे पाया जा रहा है, या पैर की उंगलियों के टिप्स पे पाया जा रहा है, वो डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करने में। तो वहाँ ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स बोथ मेडिकल और सर्जिकल थोड़ा कम देखा गया है। ऐसे दूसरी चीज़ एक और होती है कि विटिलिगो का मर्ज जैसे शुरू में छोटे एरिया से स्टार्ट होता है, तो अगर आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट कराएं तो बेटर होता है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनकी पूरी बॉडी में फैल चुका होता है, वो तब आते हैं, तो उस केस में भी उसको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर विटिलिगो का पैच आपकी हड्डियों पर प्रेजेंट है या जॉइंट पर प्रेजेंट है, एकदम सीधे सीधे घुटने पर है या फिर आपके फिंगर के जॉइंट्स पे है, तो वो पैच भी डिफ़िकल्ट होते हैं ट्रीट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को 100% रिजल्ट मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी इलाज नहीं हो पाता या पेशेंट बिल्कुल ही ठीक नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है। जैसे सर्जरी जिन पेशेंट्स में की जा रही है उनमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे जा रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने शुरू में जैसे कहा कि ये त्वचा संबंधित बीमारी है, त्वचा संबंधित रोग है,
0: जी
1: और ये हमारी बाहरी त्वचा तो हो ही सकता है, क्या हमारे मुंह के अंदर या जीभ में या मुंह के अंदर कहीं भी क्या हो सकता है ये?
0: जी देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि ये म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर सकता है। म्यूकोजा का मतलब होता है जो आपकी लाइनिंग होती है, जितने भी आपके खुले पार्ट्स हैं, जैसे मुंह हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, इनकी जो लाइनिंग होती है उसमें ये आ सकता है। तो इसीलिए आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको विटिलिगो और कहीं ना आके सिर्फ लिप्स की अंदर वाली लाइनिंग पर आ रहा है, तो म्यूकोजा को ये इन्वॉल्व कर सकता है,
1: तो
0: लेकिन ऐसे अंदरूनी कहीं नहीं जा रहा है।
1: अंदरूनी कहीं नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने उपचार की बात की, एक इसका और पक्ष है मानसिक रूप से
0: जी
1: जो हमें
0: बिल्कुल,
1: प्रभावित
0: बहुत
1: करता
0: बड़ा
1: है,
0: पक्ष है,
1: ये बहुत बड़ा पक्ष है, क्योंकि सामाजिक रूप से इसको काफ़ी बुरी नज़र से देखा जाता
0: बिल्कुल
1: है, कि शादी विवाह में, साथ
0: बिल्कुल
1: खान पान में
0: जी
1: लोग इसको बुरी नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से आदमी मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो जाता है।
0: जी
1: तो विटिलगो से प्रभावित जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, अब
0: जी
1: उनको रोगी न कहें, एक तरह का डिसऑर्डर है,
0: कॉस्मेटिक डिसेबिलिटी कह
1: कॉस्मेटिक
0: सकते हैं।
1: डिसेबिलिटी कह सकते हैं,
0: जी
1: तो उनसे प्रभावित जो व्यक्ति है
0: जी
1: वो मानसिक रूप से कैसे निपटे इससे?
0: देखिए, सच बात तो ये है कि ये एक ऐसा मर्ज है जहाँ पे जो मानसिक इसमें तनाव आ रहा है वो मरीज की खुद के कारण नहीं आ रहा है, जो आसपास के लोग हैं वो उनको दिक्कत पहुँचाते हैं या बोलते हैं उनको चीज़ें। तो मेरा सजेशन ये होगा कि जब भी आपको मानसिक तनाव किसी भी चीज़ को लेकर है, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि जो आपका कारण है मानसिक तनाव का, जैसे विटिलिगो, उस मर्ज के इलाज के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। पहली बात, उनसे समझें कि आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि ये मर्ज लाइलाज नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारी काउंसलिंग सेशंस इन चीज़ों के लिए अवेलेबल होती हैं, तो जो काउंसलर्स हैं आप उनसे मिलें। और इसके अलावा जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें, क्योंकि इसका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं, तो

0: केस में हमको उन केसेस को इवन साइकेट्रिस्ट को रेफर करना पड़ता है।
1: मनोचिकित्सक के पास
0: जी,
1: भी जाना पड़ सकता
0: जाना
1: है।
0: पड़ सकता है। बट
1: तो
0: उस स्टेज पर पहुंचने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और समझें, क्योंकि ये मर्ज लाइलाज नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि हमें सिर्फ मरीज को नहीं ठीक करना है, हमें समाज को भी ठीक करना है।
0: बिल्कुल, समाज को ज्यादा ठीक करना
1: तो
0: है।
1: जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि
0: बिल्कुल
1: ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई
0: नहीं,
1: ऐसा डिसऑर्डर नहीं है जो एक से दूसरे में फैलेगा, या इनके
0: बिल्कुल
1: साथ खाने पीने से,
0: हाथ
1: उनके साथ
0: मिलाने
1: रहने से, हाथ
0: से,
1: मिलाने से
0: कुछ भी
1: कोई
0: करने से नहीं।
1: कुछ भी समस्या होगी,
0: जी
1: और इवन शादी विवाह से भी इसका
0: दिक,
1: कोई।
0: हाँ, शादी विवाह में कोई दिक्कत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, आप आए और विटिलगो से संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं
0: जी
1: और उससे संबंधित जो भी उपचार की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उपचार
0: जी
1: की जो भी विधियाँ हैं, उसके
0: जी
1: बारे में हमारे साथ चर्चा की। आपका
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच।
2: आप सुन रहे थे बातचीत सफ़ेद दाग, भ्रांतियाँ और उपचार। बात कर रही थी डॉक्टर पल्लवी सिंह और अभयकांत तिवारी।
3: रोशनी, बहुत ही अच्छी बातचीत थी और हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी आज ये बातचीत सुनी है, बहुत सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे। और अगर उनमें से कोई भी इस तरीके की समस्या से जूझ रहा है, तो उसको एक रोशनी की किरण या एक रास्ता ज़रूर नज़र
0: ज़रूर
3: आया
0: मिलेगा,
3: होगा, है
0: बिल्कुल।
3: ना। और इतनी अच्छी बातचीत के बाद चलो अब थोड़ा माहौल बदलते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अब आइए लिए चलते हैं अपनी सखियों को अपने अगले सेगमेंट भोर की तरफ, जिसका विषय है कष्ट का डर, जिसमें बात कर रही हैं नेहा गुप्ता और तनु आर्या।

0: अच्छा एक बात बताइए, आपको डर लगता है?
1: बहुत, कई बार, कई चीजों से।
0: कष्ट से डर लगता है?
1: हाँ, कष्ट से इतना डर लगता है कि हर एक वो दिन, हर एक वो पल जो अच्छे से बीत जाता है ना, उसमें दिल से ईश्वर के लिए शुक्रिया निकलता है।
0: अब आपने कहा कि कष्ट से भरा हुआ दिन भी बिताना पड़ता है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कई बार ऐसा होता है तनु कि जो दिन कष्ट से भरे हुए होते हैं, हम सिर्फ सोच भर लेते हैं और उनसे पीछा छुड़ाकर भागने की पुरजोर कोशिश करते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन सवाल ये है कि कब तक कष्ट से भागेंगे?
1: भाग नहीं सकते हैं।
0: नहीं, हमने देखा है,
1: कहाँ जाओगे?
0: कहीं नहीं। वो शायद बात मन में दबी की दबी हुई सी है।
1: हाँ, तो वो डर, उस डर से आप लड़े नहीं, उस डर को आपने कहीं छुपा दिया।
0: जी
1: उस कबूतर की तरह जो बिल्ली को आते देख के आंख बंद कर लिया और सोचा कि अब मैं सेफ हूं, लेकिन नहीं। कोई भी डर, आपको अगर उससे जीतना है तो उस डर से आगे बढ़ना होगा, उसका सामना करना होगा।
0: लेकिन कई बार इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम कष्ट को जबरदस्ती गले लगा लें, और शायद खुद के बिखर जाने का डर भी होता है मन में।
1: देखिए, कुछ चीजें हैं, अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो शायद ये चीजें हमारे लिए इतनी मुश्किल ना रहें।
0: जी
1: जिसमें से कि मुझे लगता है सबसे पहली बात यह है कि इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि हर पल, हर सेकेंड ये सृष्टि बदल रही है। जिस तरीके से दुख अनचाहे आता है ना, उसी तरीके से सुख भी अनचाहे ही आता है। कभी अचानक से कोई खुशी, कोई खबर आपके पास आ जाती है जो आपने सोचा तक नहीं होता है, तो जैसे रात बीतती है, जैसे दिन बीतता है, वैसे वो कष्ट वाला समय भी बीत जाता है। तो उससे डरना क्यों? ये हुई पहली बात।
0: जी
1: दूसरी बात ये हुई कि जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है और हम उसको पार करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और वो जो हमने सीखा, वो ईश्वर ना करे कभी दोबारा हमें अपने लिए इस्तेमाल करना पड़े।

0: कभी कोई और अगर उस सिचुएशन में पहुंचा तो हम उसको तो रास्ता दिखा सकते हैं। तो कई चीजें हैं जिनको अपने मन में रख के हम उससे भागने की कोशिश ना करें, हम उससे सही तरीके से पार होने की कोशिश करें और कुछ सीखने की कोशिश करें।
1: चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अभी भी सवाल हल नहीं हुआ है पूरी तरह से, मन में कुछ भ्रम है।
0: शायद हम आपका सवाल समझ नहीं पा रहे हैं।
1: हाँ, मान लीजिए भाई, एक बड़ा सा परिवार है, ठीक। उस परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुराई करते हैं, कुछ लोगों की परिवार में तानाकशी जिसे हम कहते हैं, या फिर भाई सारी मलाई खुद खा लेते हैं उनको ना देना, ये भी हो सकता है, अपने लिए अच्छी साड़ी ले लेना और उनको काम चलाऊ दे देना,
0: बिल्कुल,
1: अपना कम काम करना, अपनी इमेज बढ़िया बना के रखना और उनके लिए, ऐसा मान लीजिए। तो ऐसे में जो एक अदर इंसान है उसको लगेगा भाई इस इंसान से पीछा छुड़ाना है। लेकिन अब बात है परिवार की, परिवार तो चलना है, अब पीछा कब तक छुड़ाएंगे? क्योंकि जो इंसान पीछा छुड़ा रहा है उसे लग रहा है कि यार ये खामखा कष्ट दे देगा, इस कष्ट से दूर रहो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में है कि नहीं ये परिवार का हिस्सा तो है ये। और आप कह रहे हैं कि नहीं आप पार पाइए।
0: पार पाने का जो तरीका है ना बहुत आसान है।
1: आसान है?
0: हाँ,
1: क्या आसान है?
0: आप दर्पण के सामने खड़े होइए,
1: ठीक है,
0: खुद का आईना देखिए, हम आपसे किसी के भी बारे में कुछ भी कह दें, आप उस बात को नहीं मानोगे। मैं आपसे कहूंगी कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, आप कहोगे नहीं मेरे तो एक्सपीरियंसेस उसके साथ बहुत अच्छे हैं और वो ऐसा नहीं है, तुमने समझने में गलती करी।
1: हाँ, हो सकता है।
0: तो ये डर आप अपने आप से निकाल दीजिए ना कि वो आपकी जो इमेज बनाने की कोशिश करेगा वो आपकी इमेज बनेगी। आपका तो खुद का व्यवहार जो है, आपके खुद के काम जो है वो आपकी इमेज बनाते हैं, वो आपकी इमेज बिगाड़ नहीं पाएगा।
1: श्रोताओं, कई बार जब आपसे बात होती है तो आप कहती हैं खुद पर काम करिए।
0: हाँ,
1: इसका मतलब यही हुआ।
0: हाँ,
1: छोड़िए उनको।
0: हाँ,
1: उनको साथ लिए भी चलिए,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उनसे अफेक्ट हुए बिना
0: साथ चलिए, मस्त रहिए और ये डर बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि छवि खराब कर सकता है। किसी का अपना कॉन्शियसनेस है और वो जानता है आप क्या हो।
1: मान लीजिए छींटाकशी हो ही रही है,
0: हो जी,
1: आपके कान में बातें पड़ रही हैं।
0: हाँ, पता
1: फिर,
0: है
1: फिर
0: हाँ, वो जिससे छींटाकशी कर रहा है ना,
1: हाँ,
0: वो शायद उसके सामने कुछ ना बोले कि क्यों बहस करना, क्यों बात बढ़ाना, वो बाद में आके खुद आपसे कह देगा वो ऐसा कह रहा था, यार मैं तो जानता हूँ ना तुम ऐसे नहीं हो। तो आपको डर किस बात का?
1: लेकिन दिल तो दुखता है ना।
0: मत दुखाइए, आप ये सोच लीजिए कि शायद अनफॉर्चुनेटली उसकी वैसी एजुकेशन है या उसकी वैसी ग्रोइंग अप है या वो ऐसे माहौल में रहता है कि उसकी सोच ऐसी है, वो उससे नहीं उभर पा रहा है। हम उसकी सोच के उसके लेवल पे क्यों जाएं?
1: माय गॉड, मतलब हमें अपनी सीढ़ी नहीं छोड़नी है।
0: हाँ
1: श्रोताओं, हल मिल गया। कई बार घर में ऐसी समस्या होती है ना, इसीलिए मैंने आज खूब प्रश्न पूछे कि हर तरह के सवाल जो मन मस्तिष्क में बहुत सारे लोगों के मन में चल रहे होते हैं कैसे पहुंचेंगे। तो जवाब यही है, कई बार जब दिल चोटिल होने लगे उस समय प्रार्थना भी बढ़िया लगती है, या किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान कर लेना जो आपको ताकत देता हो और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हो, देते हो, है ना?
0: हाँ,

0: अभी सखियां सुन रही थीं भोर। आज का विषय था कष्ट का डर और इसमें मेरे साथ बातचीत कर रही थीं नेहा गुप्ता मैम। और रोशनी अब तुम्हारी बारी,
1: तो चलते हैं सखियों को जायके की तरफ लेके।
0: हाँ,
1: और जायके में अगर

0: औंधी सौंधी खुशबू हो, खस्ता
1: हम्म,
0: स्वाद हो और सेहत का संगम हो, तो जहन में सबसे पहले किस चीज़ का नाम आता है?
1: कुछ क्रिस्पी सा ऐसा हैंडलियर, मतलब कुकीज टाइप का कुछ है ना, कुकीज टाइप का। इतना इंस्टेंटली तुम क्या बताने वाली हो? मठरी या
0: ठेकुआ,
1: ठेकुआ, राइट?
0: जिसे
1: बताओ।
0: खजूरिया या ठोकवा भी कहते हैं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके की जान है ये व्यंजन।
1: हाँ,
0: लेकिन क्या आप जानती हैं कि इसे सिर्फ एक पकवान कहना गलत होगा,
1: अच्छा।
0: क्योंकि ये एक भावना है, ये एक संस्कृति है। इसके अस्तित्व और शुरुआत की बात करें तो इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं।
1: हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। और ऐसा माना जाता है कि ठेकुआ की जो शुरुआत है वो वैदिक काल या उसके ठीक बाद के किसी समय से जुड़ी है, जब इंसान ने खेती करना और गेहूं और गुड़ का संचय करना सीखा। तब सफर के लिए एक ऐसे भोजन की जरूरत थी जो महीनों तक खराब ना हो, इसी जरूरत से ठेकुआ का जन्म हुआ।
0: बिल्कुल, और हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में भी इसका गहरा स्थान है। विशेष रूप से ऋग्वेद में अपूप नामक एक पकवान का जिक्र मिलता है
1: अच्छा।
0: जो गेहूं के आटे और घी गुड़ से बनता था। ठेकुआ उसी अपूप का आधुनिक और बेहद स्वादिष्ट रूप माना जा सकता है।
1: और रोशनी, जब बात शास्त्रों और आस्था की हो तो छठ महापर्व के बिना ठेकुआ की बात अधूरी
0: वो तो
1: है
0: है।
1: ना? छठ पूजा में इसे खरना के बाद विशेष रूप से मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर पूरी शुद्धता के साथ बनाया जाता है। छठी मैया को इसका भोग लगाना सबसे अनिवार्य माना जाता है। इसके बिना छठ का प्रसाद पूरा नहीं हो सकता।
0: आस्था के साथ साथ ये सेहत के लिए भी कमाल का है। आजकल लोग कैलोरी को लेकर बहुत सजग रहते हैं, तो अगर हम कैलोरीज और पोषण की बात करें तो पारंपरिक तरीके से बने एक मिडिल साइज का, जो एक मीडियम साइज का ठेकुआ होता है, लगभग 30 से 40 ग्राम का, उसमें तकरीबन 150 से 180 कैलोरी होती है।
1: अरे वाह। लेकिन रोशनी, ये खाली कैलोरी नहीं होती, इसमें गेहूं के आटे से मिलने वाला फाइबर, गुड़ से मिलने वाला भरपूर आयरन और शुद्ध घी के गुड फैट्स भी होते हैं। यानी ये आज के प्रोसेस्ड बिस्किट से 1000 गुना बेहतर और हेल्दी स्नैक है।
0: तो चलिए हमारे सुनने वालों की भूख थोड़ी और बढ़ाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इसे बनाने की साधारण सी पारंपरिक विधि क्या है।
1: तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दें। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, 3/4 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़ या चीनी, 4-5 चम्मच शुद्ध देसी घी मोयन के लिए, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा सूखा नारियल कटा हुआ और सौंफ, और तलने के लिए घी या तेल।
0: तो सबसे पहले गुड़ को थोड़े से पानी में घोलकर एक सिरप बना लेते हैं और बड़े बर्तन में आटे, इलायची पाउडर, सौंफ और सारी चीज़ों को मिला लेते हैं, और फिर इसमें गुड़ का पानी धीरे धीरे डालते हुए आटा गूंदते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आटे को रोटी की तरह मुलायम नहीं गूंदना है, इसे बस हल्का सा पानी छिड़क कर आपस में समेटना है। और इसके बाद छोटी छोटी लोइयां बनाकर लकड़ी के सीधे साँचा करते हैं और दबाकर सुंदर डिजाइन बना लेते हैं, और
1: और
0: मध्यम धीमी
1: हल्की आंच पर इसे पकाकर मस्त इसका स्वाद लेते हैं। और अब घड़ी कह रही है कि अपनी बहनों से विदा लेते हैं और कहते हैं नमस्कार।
0: नमस्कार।

ये था महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।

0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30वें दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के 3rd सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
4: मंदिर का क्यू वो पहुँचा हुआ था अशोक धाम हॉल तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
3: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा

0: शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची।

0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
1: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर

0: के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: से अभी तक वो गया नहीं है,
2: पता नहीं क्यों। आप
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
3: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा

0: कार्यक्रम है हमारा उमंग,
1: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
1: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
1: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
1: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
0: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
1: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
1: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
2: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
3: जी दादाजी।
4: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
5: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
3: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
4: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
6: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
7: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
6: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है।

0: हाँ
1: जी जी जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
2: वाह क्या ठाट है बीमारों के भी, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता, ओह मैं कब बीमार पड़ूंगा।
3: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
4: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
2: दादी लगता है मुझे बुखार है।
4: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
2: दादी बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
4: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
2: अरे दादी इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
4: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
2: दादी मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
4: अरे बेटा लेकिन स्कूल का क्या होगा?
2: मैंने कहा ना मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
4: अरे ये तो खांस भी रहा है, अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
2: जी दादी।
5: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
6: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश अब कैसी तबीयत है?
2: जी दादाजी अच्छा नहीं लग रहा है।
6: अरे अरे अरे अरे फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
4: जी।
6: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
4: जी जी अभी लाई। लो बेटा काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
2: ओ ये तो बहुत कड़वी है ये।
4: अच्छा इसे खाने में क्या देना है?
6: देखो आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, शाबाश।
2: जी दादाजी।
5: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई, लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
6: कैसी तबीयत है बेटा?
2: जी जी अब बिल्कुल ठीक हूँ।
6: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी

0: पड़ेगी। दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ मैं, पकड़ता हूँ, उठो। चलो चलो, शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
1: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
2: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
3: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
0: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? हैं? बोलो, ठीक है ना? अरे, अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
2: जी दादाजी।
4: चलो चलो, बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है, हाँ, और शाम तक
0: बिल्कुल ठीक हो जाओगे
4: बेटा।
2: जी।
1: सोमेश जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
3: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
0: ऐसे नहीं मानेगा।
6: साहब मत करो साहब।
0: चल सिपाही।
7: यस सर।
6: साहब
0: इसको हंटर मारो।
6: साहब
7: जी सर।
6: साहब
5: अबुआ राज अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
8: अठारह
6: 1857 के

0: आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिदो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हूल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
0: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिदो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
1: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
2: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
3: जी, मेरा नाम कोड़ा है।
2: ओके, तो तुम कोड़ा हो?
3: जी।
2: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
3: जी, ये मेरी जमीन है।
2: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
3: जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
2: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ली जाए।
3: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
2: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
4: जी सर,
2: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
4: जी सर।
2: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
4: जी सर।
2: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
4: जी सर।
3: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो। साहब साहब साहब ऐसा मत करो।
2: चलो हटो।
3: साहब साहब साहब साहब
2: आओ। ऐसे नहीं मानेगा।
3: साहब मत करो साहब।
2: चल सिपाही।
4: यस सर।
3: साहब
2: इसको हंटर मारो।
3: साहब
4: जी सर।
0: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
1: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
0: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं

0: सकता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
1: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
2: भाई कान्हू।
3: जी भैया।
2: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
3: हाँ वो तो है, आज ही देखो ना क्या हुआ।
2: क्या हुआ?
3: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
2: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
3: हाँ भैया।
2: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहां विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
3: लेकिन भैया मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
2: तो फिर
3: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
2: हाँ ठीक कहा तुमने।
3: हाँ
2: ऐसा ही करेंगे।
3: जी भैया।
1: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
0: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
1: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
0: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
4: अंग्रेजों का अत्याचार, अरे हमारी जमीन जब्त।
5: आज बताओ कुछ फैसला।
6: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
7: सही बोले, सही कहे।
6: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
8: हाँ सही कहा।
6: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
7: सिदो भैया सही बात
8: कह रहे हैं।
6: बाजार में हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
8: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
6: लेकिन भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
9: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
6: अब करो या मर जाओ।
9: अब करो या मर जाओ।
6: अबुआ राज, अबुआ तिसुम।
9: अबुआ राज, अबुआ तिसुम।
6: अबुआ राज।
1: इस सभा में सिदो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके

0: साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
1: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया।
2: पकड़ो इनको, पकड़ो हमारा सिपाही को मराई से फायर!
1: भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
0: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
1: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
0: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 3 बजे हैं ये सभा संपन्न होती है। अगली सभा 5 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे अब आज की शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे, नन्ही दुनिया।

0: जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, आपके पसंदीदा शो नन्ही दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी तनु दीदी।
1: और मैं हूँ रोशनी दीदी। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस शो में एक नहीं बल्कि दो दो बहुत ही मज़ेदार और अनोखे विषय लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रोशनी दीदी ने। आज का हमारा पहला विषय है दांतों की सही देखभाल और दूसरा विषय है सांपों की रहस्यमयी दुनिया।
1: वाह तनु दीदी, तो चलो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारी उस प्यारी सी मुस्कान की जो चमकीले दांतों के बिना अधूरी है।
0: रोशनी दीदी, आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो ढेर सारी चॉकलेट, टॉफी और आइसक्रीम खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनको खाने से दांतों में क्या होता है?
1: हाँ तनु दीदी, दांतों में छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं ना, वो अपनी कैविटी

0: सीढ़ी नुमा एक घर बना लेते हैं और फिर शुरू होता है दांतों का दर्द।
1: उफ़ो, बहुत बुरा होता है दांतों का दर्द। तो भाई आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि बच्चों को उस दर्द को कभी भी नहीं सहना पड़े, है ना?
0: और बच्चों ये बहुत आसान है। सबसे पहली बात ये कि दिन में दो बार ब्रश करें, एक बार सुबह उठकर और एक बार रात को सोने से पहले।
1: पता है रोशनी दीदी, बच्चे क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी ब्रश करके भागते हैं, बस ये सोचते हैं कि हम मम्मी से बोल दें कि हाँ ब्रश कर लिया। वो इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि ये तो हमारे दांतों के अच्छे के लिए है, हमें कम से कम 5 मिनट तक ब्रश जरूर करना चाहिए, कोई भी दांत का पोषण आगे पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल। और जो दांतों के ब्रश करने का तरीका है ना, वो भी केवल आगे पीछे और ऊपर नीचे और बहुत जल्दबाजी में करने का नहीं होता। उसका सही तरीका ये है कि हम अपने दांतों के बीच फंसे जो भी हमारे जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको निकालने की कोशिश करें, जो हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि सर्कुलर मोशन में अपनी ब्रश को घुमाकर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और दांत साफ करने का मतलब है कि आपका पूरा मुंह साफ होना चाहिए, कहीं पर भी कीटाणु नहीं होने चाहिए, है ना? उसमें हमारी जीभ भी आती है, तो रोज टूथब्रश करने के बाद हमें टंग क्लीनिंग करना भी बहुत जरूरी है, और अगर हो सके रोज नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डेज में हमें माउथ वॉश भी जरूर करना चाहिए, एवरी डे दांत ब्रश करने के बाद और टंग क्लीन करने के बाद।
0: और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि इससे आपको कभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप कुछ भी खाएं, अगर आप दूध भी पी रहे हो, अगर आप चॉकलेट भी खा रहे हो, तो हर बार साफ पानी से, ये जो पीने का पानी होता है उससे कुल्ला जरूर कर लें, आधा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा और आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।
1: हाँ, और देखिए खाली बाहरी सफाई से काम नहीं चलने वाला है, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी की अगर है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी पार्ट है, नेल्स है, कुछ भी है, तो उनकी हेल्थ जो होती है बेसिकली वो उन चीज़ों से होती है जो हम खाते हैं, उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो हमें वो चीज़ें खानी है जो हमारे दांतों के लिए अच्छी हों, और दांतों के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, कैल्शियम। तो हमें दूध पीना है और जो भी कैल्शियम युक्त चीजें होती हैं जो मम्मी कहती है खाने के लिए, उनमें नानुकुर नहीं करना है, सिर्फ फास्ट फूड के लिए जिद नहीं करते रहना है। जंक फूड तो दांतों के लिए बहुत खराब होते हैं, और स्पेशली जो एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं ना, वो बहुत तेज होते हैं और वो दांतों को बहुत नुकसान पहुंचा दे। तो जो मम्मी कहती है अच्छी चीजें खाइए, हेल्दी चीजें खाइए, दांतों की सफाई का ध्यान रखिए, फिर आपको कभी भी कैविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना?
0: बात अनु दीदी, इस बार पर दांतों की सफाई से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर बाल कविता सुनाते हैं बच्चों को।
1: सुनाइए दीदी।
0: सुबह उठकर जो ब्रश ना करता, कीड़ा उसके दांत में पलता, पीले पीले दांत हो जाते, हंसने में वो गंदे लगते।
1: सुबह और शाम जो ब्रश चलाए, मोती जैसे दांत चमकाए, चॉकलेट टॉफी कम ही खाना, मजबूत दांतों का राज है पाना।
0: तो इसके बाद बच्चों आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बंदर भी आया।
1: कितना अच्छा गाना था ना, बच्चों को जरूर पसंद आया होगा, चुन चुन करती आई चिड़िया। और अब हम चलते हैं अपने अगले विषय पे, हम चलते हैं सांपों की रहस्यमयी दुनिया में। बच्चों क्या आप जानते हो कि आज हम सांपों की बात क्यों कर रहे हैं? रोशनी दीदी आप बताइए।
2: क्योंकि आज नागपंचमी है और नागपंचमी में क्या खास होता है, बच्चे क्या चीज देखकर पहचान लेते हैं कि आज नागपंचमी है? क्योंकि कई जगहों पर आज के दिन में मेला लगता है।
1: हाँ,
2: और उन्हें मेला बहुत पसंद होता है,
1: बेलून्स, है ना?
2: तो इसी मेले के बहाने आपको ये दिन तो जरूर याद होगा।
1: बिल्कुल, और इसी के लिए बच्चों को नागपंचमी का इंतजार भी रहता है। लेकिन हम आज बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि ये फेस्टिवल क्यों मनाना शुरू हुआ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो ज्यादातर क्या होता है ना कि सांप के नाम से सब लोगों को डर लगता है कि सांप काट लेगा, लेकिन ये जो फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग उससे डरे नहीं, हम लोग उनके जो फायदे हैं उनको भी जाने, और हम ये जाने कि वो हमारी प्रकृति के लिए कितने जरूरी हैं, है ना रोशनी दीदी?
2: बिल्कुल तनु दीदी। क्या होता है बच्चों, भारत क्योंकि एक एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि प्रधान देश है, रेनी सीजन में क्या होता है कि खेतों में बिलों तक पानी चला जाता है, जो सांप के बिल होते हैं वो भी पानी से भर जाते हैं, तो अब सांप उसमें रह तो पाएंगे नहीं, वो बाहर निकल आते हैं। और ऐसे समय में जब लोग देखते हैं सांप को तो डर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वो सांप बाहर निकलते हैं तो वो सांप जो है ना वो चूहे को खाते हैं और भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं। तो देखा जाए तो बरसात के मौसम में सांप ने तो किसानों के जो फसल होते हैं उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन हम उनसे देखकर डर जाते हैं और उन्हें मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पुराणों में और हमारे बड़ों ने ये नियम बनाया कि हम इस मौसम में, वर्षा ऋतु के मौसम में, नागपंचमी का त्यौहार मनाएं, ताकि हम नागों की पूजा करें, सांपों की पूजा करें और उन्हें समझें कि वो हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने जरूरी हैं।
1: इससे होता क्या है कि जब हम उनकी पूजा करते हैं तो ये बात हमको समझ में आती है कि नहीं, हमें इनको मारना नहीं है, है ना? और फिर इस तरीके से सांप बच जाते हैं। और ये जिन कीड़ों को खाते हैं, जिन चूहों को खाते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो पूरी पूरी फसल खराब कर सकते हैं। तो अगर पूरी फसल खराब कर देंगे तो फिर लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा, है ना? तो इसलिए उनका एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, हमें उनको मारना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन भाई जहरीले तो होते ही हैं, तो उनसे बच के रहने की जरूरत है। अगर हम कहीं भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, खेत में या पेड़ों के आसपास, तो हम अंधेरे के टाइम पे ना जाएं, टॉर्च लेकर जाएं। अगर हमें कहीं भी सरसराहट लगती है या ऐसा लगता है कि वहां सांप है, तो वहां से हम दूर हट जाएं। हम ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें।
2: हाँ,
1: है ना?
2: और तनु दीदी, हमारे पुराणों में भी बहुत से अलग अलग तरीके के सांपों का जिक्र हुआ है। जैसे पुराणों में कई बार हम लोगों ने शेषनाग के बारे में सुना है, और वासुकी नाग जिसे भगवान शिव के गले में देखा जाता है, और इन्हीं इसी नाग का समुद्र मंथन के समय रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। बच्चे तो कई बार ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं टीवी पर,
1: और वो ड्रामा भी करते हैं स्कूल में, है ना?
2: और इसके अलावा महाभारत में बहुत ही शक्तिशाली तक्षक नाग का भी जिक्र आता है, जो बालकृष्ण की कहानियों में हमने सुना था कालिया नाग को, जो

0: तो बच्चे कभी नहीं भूल सकते, हाँ। जिसकी पीठ पर कृष्ण जी ने डांस किया था,
1: हाँ।
0: तो ये बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आप बच्चों ने सुनी होगी, देखी होगी, वो थी। लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको सांप के बारे में बताएं, वो ये कि सांप के कभी अपनी पलके नहीं झपकाते, क्योंकि उनके पास हमारी तरह पलके होती ही नहीं है।
1: और जो आप लोग हमेशा देखते हो ना कि सांप जीभ बाहर निकाल रहा है, और ऐसा अक्सर दिखाया जाता है कि वो जीभ बाहर निकाल के डरा रहा है, एक्चुअली में क्या होता है कि वो अपनी जीभ से हवा से खुशबू सूंघते हैं, और खुशबू सूंघने से उनको बहुत सारी चीज़ों का आसपास का पता चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर सांप जहरीला नहीं होता है, बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं भी होते हैं।
0: और एक और बात तनु दीदी, हाँ? सांप को कान नहीं होता,
1: हाँ?
0: और जब सपेरा आता है और हम बच्चे भागते हुए बैल्कनी में जाते हैं कि सांप आया है और वो बीन बजा रहा है, तो एक्चुअली होता क्या है कि वो जो बीन बजाने वाला सपेरा होता है वो अपने बीन को जिस डायरेक्शन में घुमाता है, सांप उस मूवमेंट को देख कर घूमता है, ना कि वो बीन को सुनकर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है।
1: और उससे जो हवा निकलती है ना, उससे भी वो इधर उधर होता है, तो हम लोगों को लगता है सांप डांस कर रहा है, लेकिन वो कोई डांस नहीं होता है, वो सिर्फ एक होता
0: तो
1: है।
0: तो बच्चे कभी कभी ना सांप को बुलाने के लिए ये भी ड्रामा करते हैं कि वो बीन बजाने लगते हैं कि कहीं अगर सांप होगा अगल बगल तो वो चला आएगा मेरे पास।
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई बच्चों, इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने आपको बताई, और आप लोग और किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो हमें आप बताना, तो हम आपको अगले नन्ही दुनिया के प्रोग्राम में उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। और अब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो अगले नन्ही दुनिया प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
5: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए यूपी 112 की अच्छी सेवाएं।
4: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
6: यूपी 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल यूपी 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।
0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: हेलो हेलो हेलो एंड वेलकम टू योर वन स्टॉप युवाणी, जहां बातें होती हैं अनगिनत, एंटरटेनमेंट होता है भरपूर और शाम को चाय के समय में लग जाते हैं चार चांद जब हम आते हैं आपके साथ कुछ आपकी सुनने, कुछ हमारी सुनाने। मैं हूं आपकी आज की होस्ट उन्नति,
1: और साथ में मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट, आपकी साथी, आपकी हमदम साक्षी पांडे। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे और चाय, नाश्ता, कुछ पकौड़ों के साथ हमारे आज के एपिसोड का आनंद लेने के लिए तैयार होंगे।
0: वाह साक्षी, हमारे लिसनर्स को तो स्वाद ही आ जाएगा। तो चलो हम भी शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सिलसिले को एक सवाल यानी एक पहेली के साथ। मैं मौजूद रहता हूँ आपकी जेब से लेकर आपके कमरे तक, आपकी कैंटीन से लेकर आपके नाश्ते, स्नैक्स के पैकेट्स और फ्रूट जूसेस तक। आप रोज़ मुझे देखकर नज़रअंदाज कर देते हो, मगर फिर भी सामने से मेरी मांग करते हो। बताओ कौन हूँ मैं?
1: उन्नति, कहीं तुम प्लास्टिक की तो बात नहीं कर रही?
0: बिल्कुल सही कहा।
1: वैसे इस पहेली के जरिए तुमने मेरा और हमारे श्रोताओं का ध्यान एक ऐसे विषय पर केंद्रित किया है जिसे वाकई हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर उन्नति, इस विषय को नज़रअंदाज कर देने की वजह जो है, जो मैं समझ पा रही हूँ, जिसके कारण इस ओर लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, और वो वजह ये है कि ज़्यादातर लोग इस विषय को इंटरेस्टिंग नहीं समझते हैं, उन्हें ये बोरिंग लगता है।
0: सही कहा तुमने, और इसी चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए आ गए हैं हम, यानी आज के हमारे चर्चा के विषय को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने ही तो हमारा काम है, ताकि एक तीर से दो निशाने लग जाए, यानी उस ओर हम अपना योगदान भी दे दें, उस पर हम बातें भी कर लें और वो बोरिंग भी ना लगे।
1: बिल्कुल, और सिर्फ प्लास्टिक की बात नहीं, आज हम बात करेंगे कि क्या हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं। तो सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये मुमकिन है।
0: बिल्कुल, अपने कमरे में अगर आप देखें तो पानी की बॉटल, मोबाइल कवर, कोई पैकेट या कोई टिफ़िन होगा, तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती हैं। और अगर आप कुछ खाने का भी मंगवाते हैं बाहर से, तो उसके साथ भी कितनी सारी पैकेजिंग आती है, ये तो हम सभी जानते हैं।
1: और सच कहूँ उन्नति, तो प्लास्टिक ने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाया है। ये सस्ता है, हल्का है, मजबूत है और आसानी से मिल भी जाता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ज़रूरत और आदत के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। एक पानी की बोतल खरीदी हमने, पानी पिया और बोतल फेंक दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हम सोचते हैं अरे सिर्फ एक ही तो बोतल है।
0: सही कहा, लेकिन अगर करोड़ों लोग रोज़ यही सोचे तो यही छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये मिलकर बहुत बड़ी समस्या बना जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम प्लास्टिक कूड़ेदान में डालते हैं ना, तो भी उसकी कहानी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती।
1: प्लास्टिक कचरा ज़मीन पर तक पहुंच जाता है, नालियों को जाम कर सकता है और नदियों और जल स्रोतों तक भी पहुंच सकता है। और दोस्तों, जब प्लास्टिक जलाशयों और समुद्रों तक पहुंचता है, तो समस्या सिर्फ इंसानों की नहीं रह जाती, मछलियाँ, कछुए, पक्षी और दूसरे जो जल जीव हैं, उन तक प्लास्टिक पहुंच जाता है और उनके और वो उसको भोजन समझकर निगल सकते हैं।
0: बिल्कुल, यानी हमारी फेंकी हुई एक चीज़ से हमारे साथ साथ दूसरे और भी जीवों को उससे खतरा बन जाता है, उनके लिए जानलेवा बन जाता है। और तो और, प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी नेचर में प्लास्टिक को रिसाइकल होने में भी हज़ारों साल लग जाते हैं, और उसे ना तो जलाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम उसे जलाएंगे तो हार्मफुल गैसेज और पल्यूटिंग पार्टिकल्स के एमिशन को बढ़ावा मिलता है।
1: तो डियर लिसनर्स, अब सवाल ये आता है कि प्लास्टिक तो हर जगह है, लेकिन इसे पूरी तरह छोड़ना भी संभव नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: यानी हम प्लास्टिक मुक्त कैसे बने?
0: बिल्कुल साक्षी, लेकिन चलो अपने लिसनर्स को हम थोड़ा सा वक्त दे देते ताकि वो भी इस सवाल के जवाब के बारे में सोच सके। तब तक हम उनको सुनवा देते हैं हमारा आज का पहला गीत, फिर यू टर्न लेके आएंगे तो हम करेंगे उनसे और भी बातें।
1: सो स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक दोस्तों. दोस्तों, गीत के उस पार आपसे हमने एक सवाल पूछा था कि हम पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त कैसे होंगे. तो दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक मुक्त जीवन का मतलब ये नहीं है कि आज रात आप घर जाएं और अपने घर के हर प्लास्टिक वस्तु को बाहर फेंक दें.
1: जी नहीं, हमें अप्लाई करना है द 3 आर्स रूल, जो कि है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. मगर अब इस सस्टेनेबिलिटी के रूल में एक और आर शामिल हो चुका है, यानी 3 आर्स नहीं, अब वो 4 आर्स रूल अप्लाई होता है टू लेसन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक.
0: और ये रूल हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिपेयर. तो अब चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं. दोस्तों, सबसे पहला रूल है रिड्यूस, यानी कम करना. जब भी आप बाज़ार जाएं या सब्ज़ी लेने जाएं, तो प्लास्टिक बैग मांगने के बजाय आप घर से ही जूट या कपड़े का बैग लेके जाएं, ताकि प्लास्टिक कम उपयोग हो.
1: बिल्कुल दोस्तों, इससे एक इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड फैक्ट भी मेरे पास है. अगर आप प्लास्टिक बैग्स में सब्जियां लेके आते हैं, तो प्लास्टिक पर मौजूद जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या प्लास्टिक को बनाने में जो केमिकल्स का यूज़ होता है, वो प्लास्टिक के थ्रू आपकी सब्जियों में भी आ जाता है, जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो जाती है, तो जिससे आपकी हेल्थ को भी नुकसान होता है. तो आप हमेशा ट्राई करें कि आप अपने साथ कोई पेपर बैग या फिर कोई क्लॉथ बैग हो, या फिर जैसा कि साक्षी ने बताया कि कोई जूट का बैग हो, तो आप वो अपने साथ ज़रूर ले करके जाएँ, ताकि प्लास्टिक का यूज़ कम हो. और फिर इसी के साथ आता है अगला रूल, जो कि है रीयूज़, यानी किसी भी चीज़ का दोबारा इस्तेमाल करना. अपनी रीयूजेबल पानी की बॉटल साथ रखें और जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ रीयूजेबल कप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें.
0: और दोस्तों, तीसरा रूल है रीसाइकल. आप कचरे को अलग अलग करना सीखिए और स्थानीय कचरा प्रबंधन व्यवस्था के अनुसार, आपको बता दें, उनका कहना है कि रिसाइकेबल मटेरियल को सही जगह देना बहुत ज़रूरी है. लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि रिसाइकलिंग अच्छी है, मगर रिसाइकलिंग को हर समस्या का जादुई समाधान समझना ठीक नहीं है.
1: बिल्कुल,
0: सबसे बेहतर विकल्प है कि अनावश्यक प्लास्टिक पैदा ही कम हो.
1: बिल्कुल.

0: सही कहा साक्षी। और अब हम आज के यूथ्स की बात कर लेते हैं। आज के जेंजीज जो हैं इसमें अपना ये रोल दे सकते हैं कि सबसे पहले तो आप अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में, प्लास्टिक फ्री कैंपेन्स और नो सिंगल यूज़ प्लास्टिक डे, ऐसा करके आप कुछ डेज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में। इनफैक्ट आप जब घर पे रहें तब भी आप ऐसा एक दिन कम से कम हफ्ते में एक बार बना सकते हैं जिसमें कि आप कोई भी प्लास्टिक की चीज़ का इस्तेमाल ना करें।
1: और अगर आप अवेयरनेस कैंपेन चलाना ही चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, है
0: बिल्कुल।
1: ना। आपकी फैमिली में अगर 3-4 मेंबर हैं, 5 मेंबर्स हैं, आप उनको जागरूक करेंगे तो वो 5 मेंबर्स अपने दोस्तों में और अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, अपने वर्क प्लेस में और लोगों को भी जागरूक करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम जिस सोशल मीडिया का यूज़ अपने एंटरटेनमेंट और रील्स वगैरह देखने के लिए करते हैं, उसी सोशल मीडिया की मदद से हम बहुत अच्छे से जागरूकता फैला सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: आप
0: सही
1: इस
0: कहा।
1: पर रील्स बनाइए, है ना, आप इस पर पोस्ट करिए, आप इस पर अगर कुछ आप व्लॉग कर सकते हैं, आप कुछ ब्लॉग लिख भी सकते हैं, है ना, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा साक्षी, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्लास्टिक का हमारे अर्थ पर, हमारी जो धरती है इस पर कितना नुकसान होता है और इसको रिसाइकल होने में भी कितना टाइम लग जाता है। तो हम इस चीज़ को बचपन से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम उसके टूवर्ड्स कुछ एक्शन ले, हम उसके टूवर्ड्स कुछ छोटे छोटे कदम उठाए जिससे कि कुछ बड़ा चेंज आए।
1: और उन्नति, इसी में मुझे बात याद आई, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी और बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ थी। एक रिपोर्ट था कि आजकल न्यू बॉर्न बेबीज़ के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं।
0: अच्छा।
1: अब वो कैसे उनके ब्लड में आएगा, है ना, मदर्स मदर के थ्रू आ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये हमें लग रहा है कि प्लास्टिक है, अभी हमें ये शायद छोटी प्रॉब्लम्स लग रही हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को मतलब
0: मतलब अभी
1: बदलिए।
0: तक हम इसे एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की तरह देख रहे थे कि मतलब इससे सिर्फ धरती को नुकसान होगा, या अगर हम उसे जला देते हैं या फिर अगर हम उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं तो बस उसे रिसाइकल होने में समय लगेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड तक पहुंच रहा है, हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स तक को वो नुकसान पहुंचाने की अब ताकत रखता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम उस अवेयरनेस कैंपेन्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमारे जो छोटे बड़े सही कदम होते हैं या फिर गलत कदम भी होते हैं उससे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है।
1: तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा आज का चर्चा का विषय,
0: बिल्कुल।
1: और हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपके लिए एक छोटा सा और म्यूजिकल
0: एक और
1: ब्रेक लाएं।
0: बिल्कुल।

0: ये वो भी ऐप से, वाह। फसा
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: दोस्तों, जैसा कि हम प्लास्टिक मुक्त जीवन के बारे में बात कर रहे थे, हमने प्लास्टिक से रिलेटेड इतनी सारी बातें की, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए, हम सबकी वेलबींग के लिए। तो उसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है प्लास्टिक मुक्त भारत और युवा प्रतिभागिता, और जिसके वार्ताकार है अंशिल दुबे। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
5: प्लास्टिक मुक्त भारत और युवा प्रतिभागिता। नमस्कार। आज की बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बहुत प्रसिद्ध शेर सुनाना चाहता हूँ। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इस शेर को आप कुछ ना कुछ आज के हालात से भी जोड़कर देख सकते हैं। कुछ ही सामान प्लास्टिक के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है, तो समझिए अंजाम क्या होगा कि हर सड़क, हर गली, हर मोड़ पर आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जिस वक्त आप मुझे सुन रहे होंगे, उस वक्त भी आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई प्लास्टिक की चीज़ ज़रूर मौजूद होगी। यह मुद्दा ऐसा है कि हर इंसान के पास इस मुद्दे के लिए

ये ढेर सारे सुझाव है, किंतु उस सुझाव को अमल करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न जो हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि मेरे अकेले करने से क्या होगा? क्या मेरे अकेले प्लास्टिक का बहिष्कार करने से इस संसार की सारी समस्याएं प्लास्टिक से जुड़ी खत्म हो जाएंगी? तो इसका जवाब मेरे पास तो नहीं, किंतु इतिहास के पास है कि जब भी बड़ी बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उसमें शुरुआत किसी एक इंसान ने ही की थी, और धीरे धीरे काफिला अपने आप जुड़ता गया। प्लास्टिक का आविष्कार 1907 में लियो बेकलैंड नामक व्यक्ति ने किया था। उन्होंने पहला कृत्रिम प्लास्टिक, या जिसे हम सिंथेटिक प्लास्टिक भी कहते हैं, उसका आविष्कार किया था। प्लास्टिक का उपयोग वहां से शुरू हुआ। धीरे धीरे प्लास्टिक ने अपनी जगह लगभग हर वस्तु के निर्माण में बना लिया, चाहे वो प्लास्टिक के बर्तन हो, पैकिंग के लिए प्लास्टिक की पन्नी हो, प्लास्टिक के फर्नीचर हो, या फिर घर बनाने के लिए प्लास्टिक से बने जरूरी उपकरण। जीवन यापन की लगभग सारी चीजें प्लास्टिक से बनने लगी हैं। अब देखने और सुनने वाली बात यह है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्लास्टिक भले ही हमारे जीवन में हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, उसके उपयोग भी हमारे जीवन में भली भांति होते हैं, किंतु एक बात ऐसी भी है जिसे नकारा नहीं जा सकता, और वो है प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरण को नुकसान। और नुकसान ऐसे कि सदियों तक उसका प्रकोप मानव जाति को झेलना पड़ेगा। कहा जाता है कि प्लास्टिक आसानी से गलता व सड़ता नहीं है, इसी वजह से प्लास्टिक के कण पृथ्वी पर सदियों तक रह सकते हैं। प्लास्टिक केवल इंसानों के लिए ही घातक नहीं साबित होते, किंतु जानवरों के लिए भी उतने ही हानिकारक है। जानवरों में अक्सर गाय खाने की चीज और प्लास्टिक में अंतर नहीं समझ पाती, और अनजाने में प्लास्टिक को अपना भोजन समझ बैठती है। इसे खाने के बाद वे बीमार पड़ जाती है और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। कहा जाता है कि प्लास्टिक में गर्म खाना व पानी रखने से प्लास्टिक के हानिकारक तत्व खाने व पानी में प्रवेश कर जाते हैं। प्लास्टिक को लचीला और मजबूत बनाने के लिए बिस्फेनॉल ए और फथैलेट्स जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग होता है। ये रसायन हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे हार्मोन तंत्र को प्रभावित करते हैं। अब क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन में उपयोग होने वाली चीजों का एक अनमोल हिस्सा है, तो इससे पूरी तरह निजात पाना मुश्किल है, किंतु असंभव नहीं। देश और विदेश में काफी अभियान प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध में चलाए जा रहे हैं। सबसे जरूरी बात, लोग प्लास्टिक को लेकर जागरूक भी हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या भारत देश प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त हो चुका है? तो इसका जवाब है कि पूरी तरह से तो नहीं, किंतु हाँ, लगातार देश के लोग इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब भारत देश पूरी तरह से प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा। प्लास्टिक को लेकर भारत सरकार ने कई अहम फैसले उठाए हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 के तहत फोर वे वेस्ट सेग्रीगेशन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 को जनवरी 2026 में अधिसूचित किया गया, जो एक महत्वपूर्ण हालिया कदम है। इन नियमों के तहत स्रोत पर ही कचरे को चार श्रेणियों, गीला कचरा, सूखा कचरा, स्वच्छता संबंधी कचरा और विशेष देखभाल वाले कचरे में अलग करना अनिवार्य किया गया है। गीले कचरे में किचन के सामान जैसे सब्जी के छिलके, फल के छिलके इत्यादि आते हैं। सूखे कचरे में प्लास्टिक और पेपर जैसे चीजें आती हैं। स्वच्छता संबंधी कचरे में डायपर जैसी चीजें आती हैं, और विशेष देखभाल वाले कचरे में दवाइयाँ और बल्ब जैसी चीजें आती हैं। अब क्योंकि प्लास्टिक सूखे कचरे का हिस्सा है, तो प्लास्टिक को सूखे कचरे के हिस्से में रखकर जमा किया जा सकता है और प्रभावशाली तरीके से रिसाइकिल किया जा सकता है। इन नियमों में प्रदूषक भुगतान करे के सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति, संस्था या कंपनी पर्यावरण को प्रदूषित करती है, उसे उस प्रदूषण से होने वाले नुकसान की भरपाई करनी होगी। भारत सरकार ने एक और अहम फैसला किया है, और वो है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर को मजबूत करना। सरकार ने उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को उनके द्वारा बाजार में लाई जाने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी है। ईपीआर व्यवस्था के तहत प्लास्टिक की रिसाइकिलिंग, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग तथा रिसाइकिल किया हुआ प्लास्टिक के उपयोग के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई कंपनी अपने उत्पाद को प्लास्टिक की बोतल, पैकेट या अन्य प्लास्टिक पैकेजिंग में बेचती है, तो उसकी जिम्मेदारी केवल उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं है। उस प्लास्टिक के इस्तेमाल के बाद पैदा होने वाले

0: कचरे का एकत्रीकरण, रिसाइकलिंग और उचित प्रबंधन की जिम्मेदारी भी कंपनी की है। यानी EPR का मूल विचार है कि जिसने प्लास्टिक बाजार में उतारा उसकी जिम्मेदारी उसके कचरे के प्रबंधन तक है। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई वर्ष 2022 को सरकार ने कई सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बैन कर दिया था। ये सारे अभियान और नीतियां हमें बताती हैं कि सरकार प्लास्टिक के नियंत्रण के लिए कितने महत्वपूर्ण कदम उठाती है। भारत युवाओं का देश है, विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में पाए जाते हैं। प्लास्टिक के नियंत्रण जैसे गंभीर मुद्दे को सुलझाने के लिए युवाओं का समर्थन एवं उनकी भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। युवाओं ने हर कदम पर देश का साथ दिया है। प्लास्टिक के मुद्दे पर भी युवाओं ने जोरों शोरों से अपना समर्थन और भागीदारी दिया है। जैसे कि फरवरी 2026 में आयोजित प्लास्ट इंडिया 2026 में युवाओं, इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए विशेष स्थान रखा गया, जहां सस्टेनेबल प्लास्टिक सॉल्यूशंस प्रदर्शित किए गए। यह दिखाता है कि युवाओं की भूमिका केवल सफाई अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि वे प्लास्टिक के टिकाऊ विकल्प, रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े नवाचारों में भी योगदान दे सकते हैं। दूसरे अभियान नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से है। नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS के 2026 के क्लीन इंडिया 4.0 अभियान में युवाओं की भागीदारी के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के संग्रह यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा करना, स्वच्छता अभियान और गांव की सफाई जैसी गतिविधियां शामिल है। NYKS के डैशबोर्ड पर 2026 अभियान के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक कलेक्शन और प्रतिभागियों का डेटा भी दर्ज किया जा रहा है। दुष्यंत कुमार जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता की चार पंक्तियां पेश है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। प्लास्टिक मुक्त भारत से हम सबका मतलब ये है कि वो प्लास्टिक जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जो मनुष्यों एवं जानवरों के लिए बहुत हानिकारक है, ऐसे प्लास्टिक का बहिष्कार करना। जिन प्लास्टिक की बनावटी से पर्यावरण को नुकसान नहीं होता वो प्लास्टिक हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि कल्पना करिए, उदाहरण के तौर पर जो प्लास्टिक की टेबल हमें 200 से 300 रुपए में मिलती है उसकी कीमत लकड़ी में बनवाने में ज़्यादा लगेगी और शीशे की टेबल तो और कीमत में मिलेगी। ज़रूरी रोज़मर्रा का सामान जो प्लास्टिक की बनावट की वजह से कम दाम में मिलता है वही किसी और मटेरियल में बनवाने में और महंगा बनेगा। प्लास्टिक हमारे लिए सस्ता और टिकाऊ विकल्प है लकड़ी और शीशे या किसी और मटेरियल के मुकाबले। कहने का तात्पर्य ये है कि प्लास्टिक हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर उचित सीमा के अंदर उपयोग किया जाए तो हमारा दोस्त, और अगर निर्धारित सीमा से बाहर जाए तो दुश्मन। बदलाव एक दिन में नहीं दिखाई देता, लेकिन निरंतर मेहनत और प्रयास से एक न एक दिन जरूर दिखाई देता है। धन्यवाद।
1: दोस्तों, आपने गांधी जी का वो किस्सा तो सुना ही होगा कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद के अंदर बदलाव लाना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: तो हमारे आज चर्चा का विषय भी यही प्लास्टिक पर ही था, और अभी आपने सुनी वार्ता अंशिल दुबे जी के साथ कि प्लास्टिक मुक्त भारत और युवा प्रतिभागिता। तो हमारे आज के इन विषयों का उद्देश्य यही था कि हम आपको जागरूक कर सके प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए।
2: बिल्कुल।
1: हमारे पास और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आपके लिए, जो आपके लिए आगे लेकर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक दोस्तों। तो चर्चा के पहले हम बात कर रहे थे हम आपसे
1: जीवन के बारे में।
0: आगे अगर हम बढ़े तो आपको बता दें कि आप जैसा कि जानते हैं हमारा एक खास सेगमेंट है प्रेरणा पुंज, जिनमें हम ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ योगदान किया। और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, हम उनकी चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार होता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ ऐसा काम करें, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें।
1: बिल्कुल। क्या आप एक ऐसे 25 साल के लड़के की कल्पना कर सकते हैं जिसके पास लंदन की हसीन वादियाँ थी, पिता अंग्रेज़ों के बड़े अफसर थे, बैंक में पैसा था, ऐशो आराम की पूरी ज़िंदगी थी, लेकिन उसने इन सब को न चुनकर सिर्फ एक चीज़ चुनी, मौत का फंदा।
0: आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं उसी 25 साल के बागी की जिसके नाम से कभी लंदन की हुकूमत भी कांप उठती थी।
1: दोस्तों, आज है तारीख 17 अगस्त और आज ही के दिन साल 1909 में एक शेर ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। नाम था मदन लाल ढींगरा।
0: ज़रा सोचिए दोस्तों, आज के यूथ को एक कप कॉफ़ी या पसंद का फ़ोन ना मिले तो उनका मूड ख़राब हो जाता है। उस दौर में ढींगरा साहब लंदन में इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे, अमीर ख़ानदान से थे, चाहते तो वो मज़े से अंग्रेज़ी हुकूमत की चाकरी करते और शानदार ज़िंदगी बिताते।
1: पर नहीं, लंदन के इंडिया हाउस में जब वीर सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे महान आत्माओं की संगत मिली तो खून खौल उठा। फिर आया वो खौफनाक और क्रांतिकारी दिन 1 जुलाई 1909। जहांगीर हॉल लंदन में अंग्रेज़ों का जमावड़ा लगा था। वही मौजूद था ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली, जो भारतीयों पर जुल्म ढाता था। भीड़ के बीच मदन लाल ढींगरा ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक गोलियां दागी और चीख कर कहा, मैंने जो किया है वो अपने देश के अपमान का बदला लेने के लिए किया है।
0: दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सब सुनकर। आपको बता दें कि अदालत में जज ने पूछा उनसे, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? तो ढींगरा साहब का जवाब था, मुझे गर्व है, मेरे पास अपने देश को देने के लिए इस खून के सिवा कुछ और नहीं था।
1: और आज ही के दिन 17 अगस्त 1909 को लंदन के पेंटन विले जेल में उस जाबाज को फांसी दे दी गई।

0: फांसी के फंदे पर जाते वक्त उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बल्कि एक फक्र था।
1: ऐसे ही नहीं, उन्हें प्रेरणा पुंज कहा जाता है दोस्तों। उनका जीवन ये सिखाता है कि सांसें तो सब लेते हैं, पर जीना उसे कहते हैं जो देश और वतन के नाम हो जाए। दोस्तों, मदनलाल ढींगरा जी के जीवन से अगर कुछ मिलने वाली सीख की बात करें तो पहली ये है कि सुविधाओं से ज़्यादा देश और कर्तव्य बड़ा होता है,
0: सच्चे उसूलों के लिए बिना डरे खड़े रहना चाहिए।
1: और बलिदान और समर्पण उम्र के मोहताज नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें हमारे आज के प्रेरणा पुंज मदन लाल ढींगरा के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपसे एक सवाल पूछते हैं हमारे क्वेश्चन एयर सेगमेंट के माध्यम से, तो उसी में हमारा आज का सवाल है।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रावधान यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, अपना उत्तर भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvani@gmail.com पर। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं
0: हमारे नंबर 8004926250 पर। तो साक्षी, अब वक्त हो चला है जब हम चलते चलते अपने श्रोताओं को एक आखिरी गीत भी सुनवाते चलते हैं।

0: तो दोस्तों अब वक्त हो गया है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और अगर आपका कुछ सजेशन हो कि आप अगर प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहते हैं या फिर और कुछ नई चीज़ें चाहते हैं तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आपके कोई सॉन्ग सजेशंस भी हो तो वो भी आप हमारे ईमेल पर और हमारी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com और हमारा नंबर है 8004926250। इसी के साथ मुझे यानी उन्नति
0: और मुझे यानी साक्षी को
1: दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।

0: हमारे युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की

लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव चाकन शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। यूपीआई से संचालित पोस ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 21-11 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारी प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। पहले आज के शेष कार्यक्रम, नौ बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों का प्रोग्राम कहकशा। 10 बजे सावन और हमारा स्वास्थ्य, इस पर केंद्रित चित्रपट संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में मधुसूदन भावे का ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे। 6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए प्रसारित होने वाले पंचायत घर कार्यक्रम में खोखा मिर्जापुरी के गए लोकगीत के अलावा हमारे किसान भाई सुनेंगे शिव प्रसाद से लोकभाषा कविता पाठ। 7:45 पर सुगम संगीत के प्रोग्राम में गार्गी द्विवेदी के स्वर में भजन सुनिएगा। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे श्याम मिश्र की वार्ता, विषय होगा हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की यात्रा। विषय एक बार आप फिर सुन लीजिए, हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की यात्रा। प्रसारण समय 7:30। 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे वंदना राठौर का लिखा रूपक प्रयाग की शिव तीर्थ, स्वर विनय श्रीवास्तव और कीर्ति द्विवेदी की। श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली हमारे शेष कार्यक्रमों की, और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं। कल रात 9:30 पर गजलों का प्रोग्राम कहकशा प्रसारित होगा। रात 10 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम। सुबह 6:05 पर सुनिएगा नियमित प्रसारित होने वाला भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना विचार बिंदु। इस कार्यक्रम में सुबह 6:30 पर रामप्रसाद बिस्मिल के विचार प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम रोज की तरह 6:35 पर लेकर हम हाजिर होंगे। कल डॉक्टर मुकेश सिंह से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी, विषय होगा ग्रामीण विकास के लिए कृषि विविधीकरण। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम 6:45 पर, जिसमें डॉक्टर गुलाब सोनी की वार्ता प्रसारित होगी पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50

मिनट पर ज्योति मिश्रा और शाम 7:45 पर श्रेया श्रीवास्तव की गाई भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे सुनवाया जाएगा और 7:10 पर हाजिर होंगे फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाओं के साथ। शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में सुबह 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। दिन में 12:30 पर आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रसारित होगा, हेलो फरमाइश। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में प्रीति लता श्रीवास्तव के स्वर में लोकगीत के अलावा बहनें सुनेंगी मधुबाला पांडे से गीता सिंह की बातचीत। बातचीत का विषय होगा करियर विकल्प और कौशल विकास। लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम सुबह 10:30 पर प्रसारित होगा, कलाकार होंगी शशि बाला जैन। इसके अलावा दिन में 2:30 पर हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में गुलाब सिंह यादव और साथ ही आपको लोकगीत सुनाएंगे। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में हमारे युवा श्रोता करियर की बात के अंतर्गत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बनाए करियर, इस विषय पर प्रोफेसर विनीता यादव से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई कमलेश कुमार यादव और साथियों की गई लोकगीत सुनेंगे। इसके अलावा डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से अरविंद कुमार की बातचीत भी इसी प्रोग्राम के तहत प्रसारित होगी, विषय होगा जैविक और प्राकृतिक खेती। शाम 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे अरुणय मिश्रा की वार्ता लोक मंगलस्य महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आकाशवाणी प्रयागराज अपने विविध रंगी कार्यक्रमों के माध्यम से आपकी सेवा में निरंतर प्रयत्नशील है। आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं।

और श्रोताओं, अब खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में आपको जानकारी दे देते हैं। जितेंद्र कुमार शुक्ला, जनपद कौशाम्बी से हमें सूचित करते हैं कि इनके संबंधी रेणु शुक्ला, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, कद 5 फुट 3 इंच, ये दिनांक 15 जुलाई 2026 से जनपद कौशाम्बी से लापता हो गई हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, जितेंद्र कुमार शुक्ल, थाना मंजनपुर, जनपद कौशाम्बी। मोबाइल नंबर है 8303803731। एक अन्य सूचना, कैलाश ग्राम चक जमीन महजूबा काजीपुर थाना सैनी जनपद कौशाम्बी से मैं सूचित करती हैं कि इनके संबंधी, जिनका नाम संदीप है, ये दिनांक 2 जून 2026 से लापता हो गए हैं। इनकी उम्र 19 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गेहुआ है। ये सफ़ेद रंग की टी शर्ट जो कि धारी

है और सफ़ेद लोअर पहने हुए हैं। इनके उस क्षेत्र के आसपास, इसके अलावा बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को संदीप के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध होती है, वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, ग्राम चक, जमीन महबूबा, काजीपुर, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी। और मोबाइल नंबर हम आपको बता दें, 9559217728, यानी 9559217728। एक अन्य सूचना, मतीश कुमार पुत्र संतलाल सरोज, कड़ाधाम सैनी से हमें सूचित करते हैं कि इनके संबंधी, जिनका नाम रानी देवी है, उम्र 19 वर्ष, कद 5 फीट, दोहरा बदन, रंग गोरा है। ये दिनांक 22 जून 2026 से थाना कड़ेधाम से लापता हो गई हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क स्थापित करें। पता नोट करें, मतीश कुमार पुत्र संतलाल सरोज, थाना कड़ाधाम, जनपद कौशाम्बी। मोबाइल नंबर हम आपको बता दें जिस पर आपको इनकी सूचना देनी है। मोबाइल नंबर है 6387225793, यानी 6387225793। आप सुन रहे थे खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

श्रोताओं, आकाशवाणी प्रयागराज अपने विविध रंगी कार्यक्रमों के माध्यम से आपकी सेवा में निरंतर प्रयत्नशील है। आप हमारे प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम संस्कृत में समाचार रिले करेंगे, बस थोड़ी प्रतीक्षा।

0: अधिकत्रिशताधिकानि उपवेशनानि सम्पन्नानि, यैः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः परिणामाः प्राप्ताः। असौ अग्रे उक्तवान् यत् एतैः उपवेशनैः ब्रिक्स इत्यस्य त्रयाणाम् आधारस्तम्भानां राजनैतिकसुरक्षासहयोगः, वित्तीयसहयोगः, प्रतिजनमध्ये पारस्परिकसहभागिता चेत्येतेषां मध्ये परस्परसहयोगः इतोपि सुदृढः अभवत्। अस्य वर्षस्य ब्रिक्स नागरिकमञ्चम् इत्यस्य विषये श्रीदलेला उक्तवान् यत् अस्मादायोजनात् प्राप्ताः परामर्शाः अस्मिन् वर्षे आयोज्यमानाय ब्रिक्स नेतृणां शिखरसम्मेलनाय उपयोगिनः भविष्यन्ति। BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय युगलं MR अर्जुनः, सहैव हरिहरन अम्साकरुणं च नवदिल्ल्यां पुरुषयुगलवर्गस्य द्वितीयचरणे प्रविष्टवन्तौ। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और अब वक्त हो चला है ग्रामीण भाइयों के लिए उनके कार्यक्रम पंचायत घर का।

0: पंचो राम राम।
1: का हो रघु भैया, का हाल चाल बाटे?
0: हाँ भैया, राम राम अवतार, हाल चाल ठीक बाटे भैया। मुला भैया देखा, दौ राजा मेहरबान बाटे भैया, देखा झमाझम बारिश होत बाटे भैया।
1: हाँ
0: रुक रुक के।
1: भैया, हो देखा बरखा का टाइम है ना?
0: हाँ भैया
1: तो बरखा तो हो ही बे करे।
0: बिल्कुल।
1: मुला देखा दो बात का ज्यादा जरूरत इस समय में ये आवत है। पहली बात तो जोन बरखा का जल है,
0: हाँ भैया,
1: वर्षा जल है, वो कैसे अधिक से अधिक हमारे सभी प्रयोग कर लिया जाए,
0: बिल्कुल,
1: कैसे ओकर संरक्षण कर लिया जाए, और कितना अधिक से अधिक मात्रा
0: हाँ भैया,
1: सिंचाई के खातिर प्रयोग किया जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो वर्षा जल के संरक्षण का तमाम तरीका हैं। अगर कहीं ताल तलैया है, ओके गहरी खुदाई करके
0: हाँ हाँ
1: ढाल बना दिया जाए कि
0: बिल्कुल,
1: इहर वहर से ऐती कैती से जौन जल हैं बरखा का, वो सीधे वहाँ चल जाए
0: हाँ, कुआं तालाब में भर जाए।
1: और ताल तलैया में भर जाए, फिर अपने उपयोग उपभोग के खातिर, विशेषकर सिंचाई के खातिर, बाद में हमें पंप लगा के ओके फिर से सिंचाई किया जा
0: बिल्कुल,
1: सकता है। एक तो पुरानी परंपरागत पद्धति है।
0: हाँ भैया,
1: और वर्षा जल अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कहीं न कहीं भैया हो वर्षा जल का सीधा प्रभाव भूमिगत जल पर पड़ता
0: हाँ
1: है।
0: भैया,
1: कोशिश ये रहे कि चाहे कि जौन बरखा जल कहीं यहर वहर बेकार ना जाए, ओके भूमिगत जल में परिवर्तित कर दिया जाए, नीचे जमीन में चला जाए,
0: हाँ भैया,
1: जौने से कि नीचे का जौन जल स्तर है, भूमिगत जल स्तर है, वो बढ़ जाए।
0: बिल्कुल,
1: भूमिगत जल स्तर अगर बहुत नीचे हो जाए तो गर्मी, विशेषकर गर्मी के दिन में, भारत का तो जलवायु ही ऐसा नहीं है भैया कि कमोबेश 6 से 7 महीना तक गर्मी प्रचंड पड़ रही बाटे
0: हाँ
1: आजकल।
0: भैया,
1: तो जौन गर्मी के समय में है, जबकि जल स्रोत भूमिगत जल का बहुत नीचे चला जाता है, ओकरे खातिर जरूरत यह है कि अगर वर्षा के जलों के नीचे भेजा जाए
0: अच्छा,
1: तो निश्चित रूप से जल स्तर बढ़ जाए,
0: बिल्कुल,
1: और कम से कम जौन धरती पर जेके भी पानी का आवश्यकता है, मानव के अतिरिक्त भी जितना पशु
0: जीव
1: हैं,
0: जंतु
1: सबके
0: बाटे,
1: पानी का कम बेश आवश्यकता है,
0: बिल्कुल
1: सबके वो कहीं न कहीं से पानी मिल सकत है।
0: बिल्कुल
1: ये हिसाब से अगर कीन जाए तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ
1: एक दूसर बात आवत है कि सरकार भी पे कारगर काम कर रही बाटे,
0: हाँ अभियान
1: रेन
0: चलाए बाटे,
1: वाटर हार्वेस्टिंग जोने के कहा जाता है कि ऐसे अब नवीन जोन घर भी बनत हैं,
0: हाँ
1: उनमें भी व्यवस्था है कि छत का पानी सीधे भूमिगत जल
0: बिल्कुल,
1: जीवन में चल जाए, जल स्तर जोने से बढ़ा रहे, और आगामी आवे वाले दिनन में वर्षा के दिन के अलावा
0: हाँ भैया,
1: सबके शुद्ध स्वच्छ पानी मिल सके। नहीं होत का है भैया हो कि बरसात में देखा हैंडपंप लगत है या ट्यूबवेल लगत है, लेकिन मई या जून के महीने

0: में देखा में ये जाता है कि सब सूख जाते हैं,
1: बिल्कुल भैया,
0: कहाँ से कि जलस्तर नीचे नीचे चल जाता है, उपाय ना ही पावत है।
1: कैस भैया देखा, हम सबके जो है सरकार के भरोसे नहीं रह चाहिए, खुद भी प्रयास करना चाहिए भैया, जो अगर अपने आसपास जो इतना कुआं तालाब सूख गए बैठे भैया, ओके
0: हाँ
1: साफ सफाई करके ओका और थोड़ा गहरा किया जाए, ताकि जो है वर्षा के जल में एकत्रित हो और जमीन जो धरती के जो जल बैठे थोड़ा ऊपर आवे हुए।
0: सही कहा भैया, जौन ताल तलैया हैं, जौन जौन कुआं हैं विशेषकर,
1: हाँ
0: वे
1: भैया
0: पट जाते हैं, तो उनके साफ सफाई करके ऐसे कह रहा जाए कि बरसखा का जल में सीधे जाए
1: बिल्कुल।
0: और जल स्तर एक बढ़िया बना रहे। एकरे अलावा हम कह रहे गुबाई, एक और बात है
1: हाँ
0: कि
1: भैया
0: देखा अब तो कृषि नवाचार का समय है,
1: हाँ भैया
0: नया नया कृषि यंत्र आ गए बाटे, तरह तरह का खेती किसानी का पद्धति आ गए बाटे,
1: बिल्कुल भैया
0: वैज्ञानिक आधारित और उन्नतशील ढंग के बीज आ गए बाटे कि कम लागत लगत है,
1: बिल्कुल
0: रोग रोधी रहते हैं और अधिक पैदावार भी मिलते हैं।
1: बिल्कुल भैया
0: लेकिन ये सबके बीच में चूंकि बरखा के समय में करीब कमोबेश 3 से 4 महीना
1: हाँ
0: पूरे वातावरण में नमी रहता है, तो
1: बिल्कुल
0: नमी में जो है कृषि यंत्रण पर जंग ज़्यादा लग
1: हाँ
0: जाता
1: भैया
0: है,
1: भैया गीली मिट्टी लग
0: हमेशा
1: जाती है मैं
0: गीली
1: ना,
0: मिट्टी रहते हैं, गंदगी रहते
1: पानी लग
0: हैं।
1: जाता है।
0: हाँ, और विशेषकर जो खरीफ का बहुत महत्वपूर्ण फसल है धान, ओके भैया खेत के तैयारी में धान की रुपाई में कृषि यंत्रण का जो प्रयोग होता है तो सीधे सीधे पानी में ही चलत है वो कृषि
1: हाँ
0: यंत्र, चाहे
1: भैया
0: ट्रैक्टर हो या ओकरे साथे जौन और कृषि यंत्र हो,
1: हाँ हाँ
0: तो कीचड़ लग जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब जरूरत ये बात का है कि वर्षा ऋतु में भी कृषि यंत्रण का देखभाल कैसे की जाए, तो खेती किसानी से निकल के जौन हल हैं, माटी पलटने
1: हाँ
0: वाले
1: भैया
0: हल हैं, रोटावेटर हैं, हार्वेस्टर हैं, तो इन सब के भैया जौन आधुनिक कृषि यंत्र भी हैं लोहा से बना है,
1: बिल्कुल भैया
0: इनके भैया खेती किसानी कहिए के बाद स्वच्छ जल से कहीं ताल तलैया के किनारे जो है बाल्टी से पानी निकाल के, ऐसा ना कि ताल तलैया में ट्रैक्टर वह हला दिया जाए,
1: हाँ
0: तो इनके साफ सफाई करके और बढ़िया सूखे कपड़े से पोछवाए के कोशिश ही रहे कि जौन ग्रीस आवत है या कोनो
1: हाँ
0: ऐसा
1: मोबिल
0: चीज
1: बाटे
0: जोने पर मोबिल जोने के कारण से नमी का प्रभाव ना पड़े, जंक न लगे, ऐसा जो है लेपन कह दिया जाए, तो
1: हाँ
0: अपन ये बरखा के टाइम में भी बरसात के मौसम में भी जौन कृषि यंत्र हैं वो बढ़िया सुरक्षित और बेहतरीन बना रही
1: हाँ
0: हैं।
1: और सही से काम भी करिए भैया, ग्रीस ग्रीस और तेल लगा रही तो अच्छा से काम करिए भैया। साथ ही साथ भैया जितने किसान भैया आ रहे हैं, हम तो यही कहा है कि अपन अपन जो है कृषि यंत्र के जो अच्छे से साफ सफाई रखें भैया, और जहाँ भी रखें उनका अच्छे से पोछ के बीच बीच में पोछाते रहें भैया, ताकि उनमें जंग ना लगे, देखते रहें, ये जो जरूरी बात है भैया।
0: सही कहा भैया, देखा हो अगर जंक लग जाए ना तो महंगा है, और एक विशेष बात तो ये है भैया, सबसे अरदास करे के बात है कि जौन कृषि आधारित यंत्र हैं, कृषि यंत्र हैं,
1: अच्छा
0: इन पर सरकार अनुदान भी दे रही बाटे,
1: हाँ
0: अगर
1: भैया
0: एक बार आप ओके प्रयोग में कह लिए बाटे, अनुदान मिल गया बाटे, तो ये जाने कि दोबारा तो मिले ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और आपका पैसा भी जाए, अनुदान भी बेकार जाए और आपका कृषि यंत्र भी खराब हो जाए,
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया
0: हर चीज़ कहीं खराब हो, ज़्यादा खराब हो, ओकर रख रखाव जरूरी है।
1: हाँ हाँ
0: किसान भाइयों से ये खरीफ के मौसम में यह अरदास है कि अपन जुताई खेत के जुताई करके कृषि यंत्रण का प्रयोग करके अगर दरवाजे पर ले आते हैं तो ओकर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें,
1: हाँ भैया
0: बाकी तो सब ठीक ठाक है भाई।
1: बिल्कुल
0: देखा भाई हो पंचायती में तरह तरह का हमारे सभी कार्यक्रम लिया हुआ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक हरे भैया भी आवत हैं,
1: अच्छा भैया
0: विभिन्न प्रकार के कवि भैया भी आवत हैं, कहे का मतलब तरह तरह के विविध फूलन से अपन जौन है कार्यक्रम
1: पंचायती
0: बनत है, पंचायत घर और पंचायती के हमारे सभी सजावा जाते हैं।
1: हाँ भैया
0: तो आज देखा एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाटे, देखा हम कह रघु भाई कि अब परंपरागत खेती किसानी का टाइम नहीं है,
1: हाँ भैया
0: अब तो भैया कृषि विविधीकरण का जमाना है,
1: बिल्कुल
0: केहू भाई मछली पालन करत है, केहू मौन पालन करत है, केहू भेड़ पालन करत है, केहू बकरी पालन करत है, केहू कुक्कुट
1: हाँ
0: पालन करत है, और लागत कम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: यही तरह भैया बहुत से पशुपालक भाई पशुपालन करत हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अब पशुपालन में भी जौन पुराने नस्ल का हैं, जौन देसी नस्ल का प्रजाति का पशु हैं,
1: अच्छा
0: वो
1: अच्छा
0: दूध देवे की क्षमता उनकर कम रहते हैं। अब हर पशुपालक चाहते हैं कि दूध देवे के ज़्यादा क्षमता वाले पशु रहें, तो
1: बिल्कुल
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: घर में भी काम आवे और कुछ हाट बाजार में जाके 4 पैसा भी मिले।
1: हाँ भैया
0: तो पशुओं के नस्ल सुधार पर आज बात बात कही है, ओके भी सुना जाए, साथे साथे आज के दिन बाटे लोग

0: भाषा कविता पाठ कर किसान भाइयों के साथ हमारे सभी भी लोग भाषा कविता पाठ कर रसा स्वादन किया जाए।
1: बिल्कुल भैया,
0: लेकिन जैसे की परंपरा बाट है किसान भाइयों के स्वागत में सम्मान में गौनई होत है।
1: हाँ।
0: तो आवा भैया हो खोखा मिर्जापुरी का गाई गौनई बाटे।
1: हाँ,
0: किसान भाइयों के साथ सुन लीजिए।
1: सुनवा दे भैया।

0: हाँ भैया, ई हमार गांव
1: गांव
0: देखा कितना बढ़िया गौने रही खोखा
1: खोखा
0: मिर्जापुरी
1: मिर्जापुर।
0: के। हम कहें जोन बात बत कही होत रही अरविंद भाई
1: हाँ भैया।
0: कि अगु भाई कि आज लोक भाषा कविता पाठ के दिन बाटे, तो आज लोक भाषा कविता पाठ में जोन है डॉक्टर शिव प्रताप जी के लोक भाषा कविता पाठ है, आवा गांव गिराव के किसान भाइयों के साथ हमारा सभी सुना जाए।
1: सुनवा दे भैया।
2: पंचो भैया, मेरी पहली कविता का शीर्षक है देश के लिए जान देने वाले वीर पुरुष के देशवा के खातिर अपन शीश चढ़ाई दिए, देशवा के खातिर अपन शीश चढ़ाई दिए, ऐसे वीर बलिदानियों के सौर को नमन है, देशवा के खातिर अपना शीश भी चढ़ाए दिए, ऐसे वीर बलिदानियों के सौर को नमन है, सारे तीर्थों से पूजित ओ आरती हुई, सारे तीर्थों से पूजित वो आरती हुई है, धन्य अजीने को मिला तिरंगे वाला कफन है, सारे तीर्थों से पूजित ओ आरती हुई है, धन्य जीने को मिला तिरंगे वाला कफन है, शीश को कटाए लेकिन रण में झुकाए नहीं, शीश को कटाए लेकिन रण में झुकाए नहीं, अब माई बाप धन धरती अंबर भी मगन है, शीश को कटाए लेकिन रण में झुकाए नहीं, माई बाप धन अरे माई बाप धन धरती अंबर भी मगन है, माँ भारती की आरती उतारते चले गए जो, माँ भारती की आरती उतारते चले गए जो, ऐसे रणबांकुरों को शिव प्रताप करता कोटि कोटि नमन है, माँ भारती की आरती उतारते चले गए जो, माँ भारती की आरती उतारते चले गए जो, ऐसे रणबांकुरों को शिव प्रताप करता कोटि कोटि नमन है। पंचो भैया, मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है तिरंगा आन बान शान, तिरंगा हमारा आन बान शान है, तिरंगा आन बान शान, तिरंगा आन बान शान, ये है भारत की पहचान, तिरंगा आन बान शान, तिरंगा आन बान शान, ये है भारत की पहचान, ये है जन जन की मुस्कान, तिरंगा आन बान शान, तिरंगा आन बान शान, हमारी जान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है, देश की शान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है, देश की शान तिरंगा है, इसी तिरंगे में बसता है मेरा हिंदुस्तान, इसी तिरंगे में बसता है मेरा हिंदुस्तान, हमारी जान तिरंगा है, देश की शान तिरंगा है, तिरंगा आन बान शान, तिरंगा आन बान शान। पंचो भैया, हमारी तीसरी कविता का शीर्षक है सावन मन भावन, बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जय, बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जय, बड़ा निकला गई सवाना वाना, बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जय, बड़ा निकला गई सावना वाना, जब से लगा सावन का महीनवा, जब से लगा सावन का महीनवा, बड़ा निकला गई भवन।

बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जई बड़ा निक लागई सावनवाना। जब से लगा सावन का महीनवा बड़ा निक लागई भवनवाना। तो झूला पड़ी ग चार ओरिया, झूला पड़ी ग चार ओरिया, गाँव सखिया गीत कजरिया। झूला पड़ी ग चार ओरिया, गाँव सखिया गीत कजरिया। बड़ा निक लागई सावनवाना, बड़ा निक लागई सावनवाना। जब से लगा सावन का महीनवा बड़ा निक लागई भावनवाना। बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जाए, बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जाए, बड़ा निक लागई सावनवाना। बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जाए, बड़ा निक लागई सावनवाना। चारों ओर छाई हरियाली, चारों ओर छाई हरियाली, नाचे झूमे कै फूलों की डाली। चारों ओर छाई हरियाली, अरे नाचे झूमे के फूलों की डाली। बड़ा निक लागई सावनवाना, बड़ा निक लागई सावनवाना। बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जाए, बड़ा निक लागई सावनवाना। जब से लगा सावन का महीनवा, जब से लगा सावन का महीनवा, बड़ा निक लागई भवनवाना। जब से लगा सावन का महीनवा, बड़ा निक लागई भवनवाना। बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जाई, बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जाई, बड़ा निक लागई सावनवाना, बड़ा निक लागई सावनवाना। यही बीच पियवऊ का भाव आया वनवा, यही बीच पियवऊ का भाव आया वनवा। बड़ा निक लागई सावनवाना, पियवऊ का होई गावा आवनवा, बड़ा निक लागई सावनवाना। तो नाचै मोर हमारे आंगनवा, नाचै मोर हमारे आंगनवा, बड़ा निक लागई भावनवाना। नाचै मोर हमारे आंगनवा, बड़ा निक लागई भावनवाना। बड़ा निक लागई भावनवाना, बड़ा निक लागई भावनवाना। नाचै मोर हमारे आंगनवा, बड़ा निक लागई भावनवाना। तो चारों ओर हरियाली है छाई, चारों ओर हरियाली है छाई, अधानों का होई गए रोपाई। चारों ओर हरियाली है छाई, अधानों का होई गए रोपाई। बड़ा निक लागई सावनवाना, बड़ा निक लागई सावनवाना। बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जाई, बड़ा निक लागई सावनवाना। नाचै मोर हमारे आंगनवा, बड़ा निक लागई सावनवाना। अन्न से भरे खेत खलिहानवा, अन्न से भरे खेत खलिहानवा, बड़ा निक लागई भवनवाना, बड़ा निक लागई भवनवाना। बदरा उमड़ घुमड़ घन घर जाई, बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जाई, बड़ा निक लागई सावनवाना। जब से लगा सावन का महीनवा बड़ा निक लागई भावनवाना। जब से लगा सावन का महीनवा बड़ा निक लागई भावनवाना। बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जाई, बदरा उमड़ घुमड़ी के घर जाई, बड़ा निक लागई सावनवाना, बड़ा निक लागई सावनवाना। तो शिव प्रताप का हवाई

0: तरनवा, बड़ा निक लागई सावनवा ना, जब से लगा सावन का महीनावा, बड़ा निक लागई भावनवा ना, बदरा उमड़ घुमड़ी के गरजई, बड़ा निक लागई सावनवा ना। पंचो भैया, हमारी चौथी कविता का शीर्षक है गौ पालन। तो गौ पालन कई कई आमदनी बढ़ावा है भैया, खेती में दुगुना अन्न उपजावा। गौ पालन कई कई आमदनी बढ़ावा है भैया, खेती में दुगुना अन्न उपजावा। अरे सरकारी सुविधा का लाभ उठावा, सरकारी सुविधा का लाभ उठावा, अघरवई में गौशाला बनवावा, सरकारी सुविधा का लाभ उठावा, अरे घरवई में गौशाला बनवावा। अरे गौ पालन कई कई आमदनी बढ़ावा है भैया, खेती में दुगुना अन्न उपजावा। तो कैसे? अरे नेडफ बर्मी कंपोस्ट खाद बनावा, नेडफ बर्मी कंपोस्ट खाद बनावा, आ घरवई में देसी खाद के फैक्ट्री बनावा, घरवई में देसी खाद के फैक्ट्री बनावा। अरे देसी खाद से पैदा बढ़ावा है भैया, देसी खाद से पैदा बढ़ावा है भैया, खेती में दुगुना अन्न उपजावा। अरे देसी खाद से पैदा बढ़ावा है भैया, खेती में दुगुना अन्न उपजावा। तो गौवंश के जीनी छोड़ा आवारा, गौवंश के जीनी छोड़ा आवारा, अब फसल के बर्बाद कई दे थी ये पूरा। गौवंश के जीनी छोड़ा आवारा, अब फसल के बर्बाद कई दे थी ये पूरा। अरे दुग्ध उत्पादन से, अरे दूध उत्पादन से आमदनी बढ़ावा, अरे दूध उत्पादन से आमदनी बढ़ावा, देसी घी दही खोवा बनावा। दूध उत्पादन से आमदनी बढ़ावा, और देसी घी दही खोवा बनावा। तो चारों तरफ से, अरे चारों तरफ से आए रुपया है भैया, खेती में दुगुना अन्न उपजावा। चारों तरफ से आए रुपया है भैया, खेती में दुगुना अन्न उपजावा। अब गोपालन से आमदनी बढ़ावा है भैया, गोपालन से आमदनी बढ़ावा है भैया, खेती में दुगुना अन्न उपजावा। अरे गोपालन से आमदनी बढ़ावा है भैया, खेती में दुगुना अन्न उपजावा। सरकारी सुविधा के लाभ उठावा, सरकारी सुविधा के लाभ उठावा, अरे गोपालन से आमदनी बढ़ावा है भैया, खेती में दुगुना अन्न उपजावा।
1: हाँ भैया, खेती में दुगुना अन्न उपजावा। शिव प्रताप भैया के देखा गौनई रही, और गौनई के माध्यम से कितना बढ़िया बताया हो कि देखा गोपालन पशुपालन भी बहुत जरूरी है खेती किसानी के साथ है।
2: बिल्कुल भैया।
1: आपका रघु भाई देखा कृषि विविधीकरण का यो एक ठे रूप है हो।
2: हाँ भैया,
1: कि परंपरागत खेती किसानी के अलावा अब हम तो कहें कि देखा प्रगतिशील किसान इज्जतदार किसान माना जाता है, जे दो चार पशुधन भी रखा है।
2: हाँ भैया,
1: घर में गोरस हो
2: बिल्कुल
1: है ना, तो वह माना जाता बढ़िया किसान। और दो चार जो ना हमें दरवाजे पर तो भैया मट्ठा है, दूध है, दही है, और भोजन के समय घी है शुद्ध। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है भैया।
2: हाँ।
1: और जौन अपने खाए से बचे ओके हाट बाजार में बेचा जाए।
2: बिल्कुल।
1: अब तो अगर हाट बाजार में जाए के नहीं मन है तो गांव-गांव सहकारी दुग्ध समिति है।
2: अच्छा भैया,
1: तो सहकारी दुग्ध समिति का लोग आपके दरवाजे पर आके ही दूध लेते हैं।
2: बिल्कुल,
1: ये सबसे अच्छा फायदा है कि अपन दूध दा, वही समय माफी कराए कि भैया बेच दा, महीना महीना में तुहरे पास पैसा आ जाए। वो पैसा के खेती किसानी में, घर खर्चा में, लड़का गदेला के चुन्नू मुन्नू के पठन पाठन के साथे साथे हाट बाजार जाए के कुछ नया खरीदे के खातिर, अपने स्वास्थ्य के खातिर, कहे का मतलब विविध रूप में रुपया पैसा का प्रयोग हो सकत है। लेकिन

0: एक बात का ध्यान रख रहा है कि जो ब्यात वाले पशु हैं उनके पोषक तत्वन का ज्यादा आवश्यकता है,
1: हाँ भैया
0: तो संतुलित मात्रा में जो भोजन उनके मिले,
1: हाँ
0: उनके चुन्नी चोकर कैल्शियम इत्यादि का भी व्यवस्था
1: हाँ
0: बनी रहे। मूला सबसे महत्वपूर्ण होता है हरा चारा।
1: हाँ भैया
0: तो
1: हाँ
0: किसान भाइयों से, विशेषकर पशुपालक भाइयों से ये अरदास है कि चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो,
1: हाँ
0: तो
1: भैया
0: तीनों मौसम में, रबी खरीफ के छोड़ के जायद में भी जाना कि ब्यात वाले पशुअन के हरा चारा हमेशा पौष्टिक होते
1: हाँ
0: हैं।
1: भैया
0: हाँ, वो चारा के देवे का पद्धति जाने का जरूरत है, काहे से कि अगर गर्मी ज्यादा है तो पहले ओके काट के, ओके छटाई करके, फिर बड़ी नाद में खूब ठंडा घंटा दो घंटा ठंडे पानी में करके,
1: अच्छा
0: फिर ओके
1: भैया
0: निकाल के तब दिया जाए, जौने से कि ओकर गर्मी खत्म हो जाए। ये विधि से, अब तो बरसात है भैया,
1: हाँ
0: तो
1: भैया
0: बरसात में भी आपके ध्यान देवे के पड़ी कि कहीं बहुत ज्यादा तो हरियरी नहीं दिया जाता। भूसा, हरियरी मतलब हरा चारा,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: ओकरे साथे साथे जौन चुन्नी चोकर है ओकर एक संतुलित मात्रा रहे, जौने से कि ब्यात वाले पशु के पोषक तत्व का जौन आवश्यकता वो भी
1: हाँ
0: मिले,
1: भैया बिल्कुल
0: उनका शरीर स्वस्थ रहे, शरीर रोग रोधी रहे। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान बरसात में देवे के है कि पशुअन के परजीवी ज्यादा लगत है,
1: हाँ हाँ
0: जैसे किलनी है, जैसे मक्खी है, जैसे मच्छर है। तो पशुपालक भाइयों से ये अरदास है
1: अच्छा
0: कि जौन पशुशाला है उसे साफ सुथरा रखा जाए,
1: बिल्कुल
0: और अगर कहीं से मिल जाए तो नीम के तेल का लेपन पशुओं के
1: अच्छा
0: शरीर पर किया जाए, जौन से मच्छर और मक्खी न बैठे।
1: अच्छा अच्छा
0: और अगर जौन किलनी बोला जाता है, जौन परजीवी आके पशु पर लग जाते हैं तो शरीर कमजोर कर देते
1: हाँ
0: हैं,
1: खून चूस लेते हैं
0: तो
1: भैया
0: ओकरे खातिर भी पशु चिकित्सक से
1: अच्छा
0: बढ़िया
1: अच्छा
0: सलाह लेके जौन भी वो परजीवी नाशक जौन औषधि है, जौन दवाई है,
1: हाँ भैया
0: ओके उन्हीं के बतावे के मुताबिक वही विधि से पशुअन पर लेपन कैल जाए,
1: अच्छा
0: जौने से कि परजीवी से अपन पशु बचे रहें, उनका स्वस्थ रहे शरीर और बढ़िया दूध भी देते रहें।
1: कहा जाता ना भैया कि पशु के साथ जो है खेती के साथ जो है बाड़ी जरूरी बाटे, मतलब खेती अगर करत बाटे तो पशु पाले जरूरी बाटे भैया। खैर भैया पशु रही हैं तो भैया दूध तो देवे करिए, साथ साथ जो गोबर हुई भैया वो खाद के काम भैया,
0: बहुत सही,
1: उससे
0: बहुत
1: अपन
0: सही,
1: घर के देसी खाद बनी भैया तो फसल के लिए भी अच्छी, उससे जो अन्न पैदा हुई भैया ओके बाज़ार में ज़्यादा मांग रहा थी भैया, हाँ अच्छा पौष्टिक अन्न हुई। अब भैया देखा बातचीत हो तो रही मिला दिखा तो
0: पशुअन
1: बात
0: के बारे में ही बात होते रही ना
1: हाँ
0: रघु
1: पशु
0: भाई,
1: हाँ
0: तब
1: पशुओं में
0: पशुअन के जौन है, अगर देशी पशु रही हैं तो मेहनत ज्यादा लगी,
1: बिल्कुल
0: भोजन भी ज्यादा ले हैं, लेकिन वो तुलना में उनका दूध ना ही मिल सकत है।
1: हाँ तो
0: तो
1: भैया
0: पशुअन में नस्ल सुधार कैसे हो, ये
1: हाँ
0: विषय पर कर
1: डॉक्टर प्रिया दर्शना राव से चंद्रजीत यादव की बातचीत बाटे हम का भैया, तू सुना किसान भैया सुना
0: सुनवा दो भाई, सुनवा दो।
2: आप सब खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन के भी काम करते हैं, निश्चित तौर पे पशुपालन करे के आप सबके मकसद होत है कि भाई हमेशा के दूध की पर्याप्त मात्रा स्वस्थ रहे के लिए मिल जाए, और साथे साथे भाई जौन दूध के अतिरिक्त उत्पादन होए ओका बाजार में बेच के अच्छा खासा पैसा उसी लिया जा सके। तब भाई देखा आप सबके जौन मकसद होत है कि जानवर ऐसन हो जौने से ज़्यादा दूध उत्पादन होए, तो अब नस्ल सुधार के बात किया जाता पशुअन में, तो निश्चित तौर पे अगर नस्ल में सुधार किया जाए तो दूध के उत्पादन भी अच्छा होए, या मांस दे वाला जौन पशु में मांस में सुधार होए, तो भाई पशुअन में जौन नस्ल सुधार के बात किया जाता है भाई, विषय पे जानकारी देख ले आज हमारे साथे बाटी डॉक्टर प्रियदर्शना राव बनी जौन की पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, बनी आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे, और जाने चाहब कि पशुअन में नस्ल सुधार के काहे के जरूरत पड़ी एकरे विषय में बताऊँ।
3: सबसे पहले नमस्कार। और मैं नस्ल सुधार से पहले एक ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे नस्ल सुधार में हम AI करते हैं, जिसे कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है,
2: जी
3: तो भारत में सर्वप्रथम इसका 1939 मतलब 1941 में इसका मैसूर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर संपत कुमार सर द्वारा प्रयोग किया गया था।
2: जी
3: उसके बाद 1942 में भारतीय पशुपालन शोध संस्था में डॉक्टर भट्टाचार्य सर हैं, उनके द्वारा नेतृत्व के अंदर AI प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाया, और इसको सफल बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को 4 केंद्रों में जो है भारत सरकार ने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, जिसमें पटना, कोलकाता, बैंगलोर और मोंटेंगारो आता है,
2: जी
3: जिसके रिजल्ट में स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में की विलेज स्कीम की शुरुआत हुई, और आज

0: तक इसे अलग अलग नामों से पशुपालन विभाग में एआई को महत्व दिया जाता है। अब मैं बताती हूँ नस्ल सुधार के बारे में। तो इसमें जो है हम जो गुणवत्ता होती है सीमन की, जिसे हम हाई क्वालिटी सीमन कहते हैं, उसमें उच्च प्रजाति के जो नर होते हैं उनका हम सीमन एक मानक अनुसार जो है फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ और फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ सेक्स सीमन में उपयोग करके उच्च की गुणवत्ता का संतति का उत्पन्न करवाते हैं। तो मेन हम इसमें ये कार्य करते हैं। और इसमें संतति जो उत्पन्न होती है उसमें हम देखते हैं कि जो उसकी दुग्ध की उत्पादनता है वो बढ़ जाती है और जो उनकी नस्ल है उसमें सुधार होता है। और इन सब चीज़ों से जो पशुपालक हैं उनको भी आय में वृद्धि होती है।
1: बनी एक चीज़ जानना चाहिए, जैसे गाय बा या भैंस बाटे, तो विशेषकर गाय में देखे में यह होता है कि ज़्यादा नस्ल सुधार के परिणाम जो है अच्छा परिणाम होकर देखे में आवत है। तो ऐसा स्थिति में का कुछ अपने देश में जो गाय बाटी उनमें सुधार की है ऐसे सकत नस्ल में?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और उन्होंने जो है बहुत सारी स्कीम पशुपालन विभाग को दी है, जिसमें अभी एक स्कीम चल रही है सेक्स सॉर्टेड सीमन की स्कीम। इसमें हम जो है बताना चाहेंगे कि जो हम सीमन यूज़ करते हैं उसमें ये दावा किया जाता है कि 90% बच्चिया ही उत्पादन होगी संतति में और केवल 10% मादा जो नर है वो उत्पन्न करेगी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आजकल देख रहे हैं कि जो पशु बाहर छुट्टा घूम रहे हैं उसमें सांड है, नर को छोड़ दिया जाता है। तो ये अब शिकायतें पशुपालन से कम हो जाएंगी और हमें बच्चिया रखने का जो है सहयोग मिलेगा।
1: का मतलब कि अब जो बच्चा पैदा हुई ही उनमें ज्यादा से ज्यादा बच्चा मादा पैदा हुई यानी बच्चिया पैदा हुई गाय से,
0: बच्चिया पैदा होंगे
1: तो उसी अपने आप जो ना है जब इनकर संख्या बढ़े तो दूध का उत्पादन बढ़ जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बहनी ये देखे में आवत है कि जानवर जब गर्म होते है तो ऐसन स्थिति में पशुपालक भाई जो ना है आस पास के जौन खराब नस्ल के जौन सांड होते हैं वहाँ जो ना है ओकर संकरण करावत हैं। तो ऐसन स्थिति में जो कृत्रिम गर्भाधान बे वो कितना महत्वपूर्ण हो जाते है, कैसे ओका का करे चाहे पशुपालक भाई?
0: बिल्कुल, ये सही बात कही आपने कि जब पशु गर्म होता है तो लोग ये नहीं देखते हैं कि वो सांड जो है किस नस्ल का है, उससे जो जो संतति आएगी उसका क्या परिणाम होगा। तो ये जो सेक्स सीमेन या जो सीमेन हम यूज़ करते हैं अपने वेरीफाइड हॉस्पिटल पे, जिसे पशु चिकित्सालय कहा जाता है, और हमारे अंदर जो है एक ट्रेंड वर्कर होते हैं जो पर्टिकुलर इसी काम के लिए रखा जाता है, जो कि कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है, उन्हें संस्था से ट्रेनिंग करके और उसके उपरांत कुछ जो हम सहयोग लेते हैं वो घर घर जा करके, अगर कोई पशुपालक हमारे अस्पताल पे नहीं आ सकता है तो उनके घर पे ऑन कॉल भी जाते हैं और वहाँ जा करके जो स्ट्रॉ की बात हमने की है उस स्ट्रॉ से उसका जो है संतति उत्पन्न होने का जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छे आता है। तो मैं सभी पशुपालकों से ये निवेदन है कि वो जब भी कभी उनका पशु गर्मी में आता है तो उसके उपरांत जो है अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय पर जाके संपर्क करें और वहाँ से निशुल्क भी ये सेवा दी जा रही है और इसमें कोई आपको शुल्क नहीं देना है। और इससे ये भी एक चीज़ है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग तुरंत आकर के बताते हैं और ये सोचते हैं कि देर ना हो जाए और तुरंत कृत्रिम गर्भाधान का प्रोसेस शुरू हो जाए, तो ये बता दूँ कि गर्मी में आने के बाद मादा के 10 से 12 घंटे के बाद ही हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं और इसलिए आप बहुत जल्दी में नहीं रहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जब पशु गर्मी में होता है तो अगल बगल में जैसे कोई खुले सांड होते हैं उनसे उनको बचा के रखें ताकि वो जैसे नेचुरल जो इंसेमिनेशन हो जाता है वो प्रक्रिया ना हो।
1: जी का मतलब कि अगर जानवर गर्मी का अवस्था में बाटे तो ऐसी स्थिति में जो नज़दीक के पशु चिकित्सालय बाटे वहाँ संपर्क करके कृत्रिम गर्भाधान के जवन अच्छे नस्ल के बात होते है वो अच्छे नस्ल के गाय के जो बच्चा बाटे उसका पैदा किया जाए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: बनी एक चीज़ ये बताओ, जैसे पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए का पशुओं के स्वस्थ रहे के लिए भी कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है?
0: जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही सवाल किया है कि जब पशु स्वस्थ रहेगा तभी वो संतति भी स्वस्थ रहेगी। तो इसके लिए हमें शुरुआत से ही ध्यान रखना होगा कि पशु जो होता है एक समय के

0: बाद जब वो गाय है तो 18 से 20 महीने में जो है उसका पहला प्यूबर्टी जिसे बोलते हैं कि वो एक व्यवस्था आती होती है जिसमें शारीरिक में चेंज होता है, बदलाव आता है और वो आगे के लिए संतति उत्पन्न करने के लिए तैयार होता है। तो उसी समय से हमें ध्यान देना है कि हम उसका नियमित जो है टीकाकरण है,
1: जी
0: नियमित जो है उसको कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करवाएं जो हर 6 महीने पे हमें देनी होती है,
1: जी
0: नियमित जो है उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय पे, जहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी के संपर्क करके आप इसका स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकते हैं। उसे संपूर्ण आहार दें,
1: जी
0: संपूर्ण आहार में आप उसे हरा चारा दे सकते हैं, जरी दे सकते हैं, चोकर दे सकते हैं, भूसा दे सकते हैं, आपके पास जो भी मतलब उत्पन्न है या फिर उपलब्ध है सुविधाएं वो आप उसे दे सकते हैं।
1: जी
0: इसके साथ साथ आप जब भी कभी पशु गर्मी में आता है तो अपने ट्रेन्ड सेंटर पे ही जा करके उसका कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। जी
1: अच्छा बनी, मान लें कि 18 महीना के बच्चा हो, इसे पहले अगर खान पान पर करे विशेष ध्यान रखा जाए, वो स्वास्थ्य के ध्यान दिया जाए, तो निश्चित तौर पे 18 महीने के बाद वो गर्मी का अवस्था में आए तो गर्भाधान करावा जा
0: जी
1: सकत
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: बनी एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि पशुओं के जौन बांधे की जगह बाटे जहाँ पर गौशाला बनावत लोगे, वहाँ के रख रखाव, वहाँ के जौन व्यवस्था बाटे वो पे कैसे ध्यान दें जौन पशु स्वस्थ रहें।
0: हाँ जी, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे भी पशुओं को रखा जाता है वो कंक्रीट मतलब कि एक पक्का जगह होते हुए भी एक समतल होना चाहिए जिसमें पानी का मतलब रुकाव ना हो।
1: जी
0: पानी वहाँ रुकेगा तो उन्हें बीमारियाँ फैलेंगी, मच्छर वहाँ रहेंगे, बीमारियाँ फैलेंगी। उसके अलावा वहाँ पे हर महीने 3-4 महीने पे जो है आप उसमें चूने का या फिनाइल का छिड़काव करवाते रहिए,
1: जी
0: जिससे जो शरीर पे कीटे कीड़े होते हैं वो कभी-कभी अंडे के रूप में वहाँ पनपने लगते हैं।
1: जी
0: आप उन्हों आपने अपने जो पशु को है वो तो टीकाकरण के साथ और अपने क्या कहते हैं कीटनाशक के साथ तो सेफ कर लिया, बचा लिया, लेकिन जो कीड़े के अंडे होते हैं वो अक्सर उन पे चढ़ जाते हैं और वो शिकायत आती है कि फिर अभी तो मैंने कीड़े की दवा खिलाई थी और साहब फिर से जो है कीड़े आ गए। तो
1: जी
0: ये आप जब वहाँ पे छिड़काव करवाएंगे, साफ सफाई रखेंगे तो ये दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। इसके साथ आप ऊपर की जो है छत वो ऐसी रखें कि पशु को बहुत गर्मी ना हो, बारिश से बचा के रखें। तो जहाँ हम उनको उठते बांधते हैं वो जगह भी बदलनी चाहिए,
1: जी
0: पशुओं का खाने का जगह अलग होना चाहिए और बांधने की जगह उनको रात में रखने का जगह अलग होना चाहिए। ये
1: जी
0: ध्यान में रखेंगे तो पशु स्वस्थ रहेगा और दूध भी अधिक देगा।
1: बनी एक चीज़ दिमाग में पशुपालक भाइन के रहा था कि जौन नस्ल सुधार से जानवर तैयार किया जाते हैं उनमें रोग लगे के कुछ ज़्यादा संभावना बनत है, तो ये कितना सही बात है और अगर कैसे वो जो ना है रोग से बचा सकत है मेरे पशुअन के।
0: हाँ जी बिल्कुल, ये मैं बता दूं कि जो हमारे पास स्वदेशी नस्ल के कुछ पशु हैं जिनके मैं बता दूं, गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, ऐसी नस्ल जो होती हैं इनमें गर्मी सहने की और रोग सहने की क्षमता अधिक होती है।
1: जी
0: तो ऐसी नस्ल के हम नर मादा से जो सीमन उत्पन्न करवाते हैं और उसको स्ट्रॉ के द्वारा माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो जो संतति उत्पन्न होती है उसमें भी एक चीज़ें पाई गई हैं कि उनमें भी रोग की और गर्मी सहने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। और अगर जैसे पशुपालक बहुत पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहा है, उनको नहीं उपलब्ध करा पा रहा है और विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे जो पशु होते हैं वो भली भांति वहाँ रह पाते हैं,
1: जी
0: तो ये इस नस्ल की कुछ खूबियां हैं और इसी वजह से इन नस्ल के हम आगे भी बढ़ने की उम्मीद रखते हैं और इन नस्ल को हमने आगे जो है प्रयोग में लाया है।
1: का मतलब कि संकर नस्ल के अलावा अपने देश के जवान शुद्ध नस्ल बाटी गाय के,
0: जी जी
1: उनमें भी खान पान पर सुधार करके और जोन भाई नस्ल सुधार की बात की जाता है उनमें नस्ल सुधार करके अच्छा गाय के तैयार किया जा सकत
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: वहीं जोन भैंस में बाटी जोन जात बाटी मुख्य रूप से मुर्रा और भदावरी भाई तो ज़्यादा दूध दे वाली बाटी, का इनमें भी नस्ल सुधार की बात की है जात।
0: अभी ये प्रोग्राम फिलहाल जो है जो बछिया और उसका हो चल रहा है वो गायों में ज़्यादातर हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं,
1: जी
0: भैंसों में कम ला रहे हैं, पर आगे आने वाले टाइम में इसको भी हम कोशिश में करेंगे कि भैंसों में ये चीज़ आए और
1: जी
0: इसमें भी हम कृत्रिम गर्भाधान करके इनका भी नस्ल सुधार किया जा सके।
1: एक चीज़ और हम जानने चाहते बाटी, जैसे पशुपालक भाई पशुओं में अच्छा खासा भाई धन लगाए के तैयार करते उनका,

0: बीच बीच में उनके साथ कुछ घटना भी हुई जाते जेकर लिए बीमा वगैरह भी करावत हैं, उसी काफ़ी कुछ बचाव होते हैं। लेकिन ऐसन बीमारी जोन भाई बहुत जानलेवा बीमारी हैं वो न हो पशुअन के, एक लिए का कुछ उनका ध्यान दे चाहे अलग अलग मौसम में।
1: अलग अलग मौसम में देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि हर मौसम के 6 महीने पर जो है आप उन्हें कीटनाशक दवाइयाँ ज़रूर दें। कीड़े की बीमारी जब पेट में होती है तो पशु कम आहार लेता है। आहार का घटना मतलब कि पौष्टिक चीज़ों का कम होना शरीर में, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। और इसके अलावा जैसे आप खुरपका मुँहपका बीमारी का नाम सुने होंगे, इसका नियमित टीका हर चिकित्सालय पर उपलब्ध है।
2: हाँ भैया देखा हो, बहुत बढ़िया ही तो बात बत कही रही, और डॉक्टर या जी इतने बढ़िया बतौनी, उतने बढ़िया चंजीत भैया आपने पूछना। हम कहें देखा समय समय पर सब ठीक लागत हो, लेकिन किसान भाइयों से ये अरदास है कि प्रतिक्रिया अपन जरूर दें भैया।
3: हाँ,
2: नंबर नोट कर लें 800-4926-250 ये पर अपन प्रतिक्रिया दें। अब चला चले के बेला है, विदा लीन जाए तो पंचों राम राम, राम।

0: अभी हमारी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रही थी पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने सुनने वालों को याद दिला दी, आज रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे वंदना राठौर का लिखा रूपक प्रयाग के शिव तीर्थ, स्वर विनय श्रीवास्तव और कीर्ति द्विवेदी की। सात बजकर 30 मिनट पर हिंदी कार्यक्रम में श्याम मिश्रा की वार्ता होगी, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की यात्रा। प्रसारण समय 7:30 और 7:45 का वक्त सुगम संगीत के कार्यक्रम के लिए निर्धारित है। आज के इस कार्यक्रम में गार्गी द्विवेदी के स्वर में भजन आप सुनेंगे। कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के तहत रात 10 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लेरियोनेट वादन और रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन।

कल दिन में 1:15 पर बनघट की जमी हमारी ग्रामीण बहने प्रीतिलता श्रीवास्तव के स्वर में लोकगीत सुनेंगे। इसके अलावा मधुबाला पांडे से गीता सिंह की बातचीत प्रसारित की जाएगी। बातचीत का विषय होगा करियर विकल्प और कौशल विकास। कल शाम 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

शाम 7:31 पर कल की सभा में, हमारी सांध्यकालीन सभा में संस्कृत प्रोग्राम के तहत आपको सुनवाएंगे अरुणेय मिश्र की वार्ता। विषय होगा लोक मंगलस्य महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। श्रोताओं, अभी आप हमारी कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

शिक्षा व्यक्ति में आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा करती है, खुद साक्षर बनिए और दूसरों को भी साक्षर बनाने में अपना अमूल्य योगदान कीजिए। हमें यह नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई। आइए सांप्रदायिक सौहार्द का व्रत ली। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को ही वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में नई ईपॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का हुआ शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को बढ़ाकर किया गया 125 रुपये प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए खेल संस्कृति को आगे बढ़ाए जाने पर दिया बल। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की गई घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी और चित्रकूट में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उचित दर विक्रेताओं के लिए नई ईपॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का लखनऊ से शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने प्रदेश खाद्य वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदेश पर उचित मूल्य विक्रेताओं से जुड़ी दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है, जहां दुकान और वेयर हाउस की सुविधा दी जाएगी।
1: आप सभी अपने यहां अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़वाई। धनराशि का आवंटन सरकार आपको करेगी। राशन वितरण का काम तो आप 1 सप्ताह 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन आप उस वेयर हाउस का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। अतिरिक्त इनकम उससे भी कमा सकते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद भी अगर हम वहां रखेंगे, उस पर्व और त्योहार में अगर हम स्थानीय उत्पाद को भी प्रायोरिटी देते हैं, हमारा जो स्थानीय कारीगर स्थानीय हस्तशिल्पी उससे प्रोत्साहित होगा। उसके माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।
0: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कन्नौज, बलरामपुर, कौशाम्बी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कानपुर देहात और बदायूं सहित विभिन्न जिलों में सीधा प्रसारण किया गया। कोटेदारों में लाभांश बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में नागपंचमी के अवसर पर खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए सरकार की खेल संस्कृति को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ में योजनाओं के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नव विकसित ऑनलाइन पोर्टल potato.uphorticulture.in का शुभारंभ किया।

0: इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लाभ के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 1,000 करोड़ रुपए का भामाशाह भाव स्थिरता कोष, भंडारण शुल्क में छूट और आलू के बीज पर छूट शामिल है।
1: राज्य में भामाशाह भावांतर योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 1,000 करोड़ का प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। निर्धारित लागत मूल्य का जो अंतर होगा उसका 25% अनुदान राज्य के किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित हो जाएगी। जो आलू किसानों के द्वारा अपना आलू शीत गृहों में भंडारित किया गया है, उसके किराए में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब के दर से राज्य सरकार उन्हें अनुदान डीबीटी के माध्यम से देगी।
0: उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा है कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई न करे। शीर्ष अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से भी कहा है कि वे गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में

0: के माध्यम से देगी।
1: उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा है कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई न करे। शीर्ष अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से भी कहा है कि वे गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए केंद्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाया गया है। वहीं 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और 8 राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में उत्तर प्रदेश के अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश से रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरीश द्विवेदी और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वहीं डॉ भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। सहारनपुर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई भर्ती रैली में पहले दिन हापुड़ जिले की 3 तहसीलों के 899 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। भर्ती रैली 4 सितंबर तक चलेगी। नागपंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक तरीके से श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पुष्प वर्षा से कांवड़ियों के चेहरे खिल उठे और वातावरण भक्तिमय हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। मार्कंडेय महादेव और महामृत्युंजय मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। नागपंचमी पर प्राचीन नाग कुआं मंदिर कारकोटक वापी में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने नाग देवता और नागेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन किया। नाग कुंड में दूध, जल और लावा अर्पित करने की परंपरा निभाई गयी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: वहीं बाराबंकी, अमेठी और जौनपुर के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिव भक्तों तथा कांवड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं लखनऊ, गोरखपुर, पीलीभीत, आगरा, अमरोहा, फर्रुखाबाद और जौनपुर में भी प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि विभाग द्वारा इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है।
3: कल भी भारी वर्षा का जो सदर्न पोर्शन है और तराई बेल्ट है, वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि लो प्रेशर धीरे धीरे मूव होकर उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 20-21 को फिर से जो उत्तर प्रदेश के साउथ वाले हिस्से हैं, बुंदेलखंड, विंध्याचल रीजन से बहुत भारी वर्षा आने की संभावना हो सकती है। तापमान में जैसा कि 3-4 डिग्री की गिरावट हुई है, यही क्रम में कल भी रहेगा। बाकी परसों से हल्का हल्का खुलेगा, हालांकि हल्की हल्की बारिश का सिलसिला बनेगा।
1: प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर घाटों के ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रामघाट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है।

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में नई ई पॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का हुआ शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को बढ़ाकर किया गया 125 रुपये प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए खेल संस्कृति को आगे बढ़ाए जाने पर दिया बल। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की गई घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी और चित्रकूट में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारी कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है हिंदी कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्याम मिश्र की वार्ता, जिसका विषय है हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की यात्रा। आइए सुनें।
2: कल्पना करिए, वर्ष 1826 का कलकत्ता, अंग्रेजी हुकूमत का दबदबा, सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां दौड़ रही हैं, छापेखाने में शीशे के अक्षर एक एक कर सजाए जा रहे हैं, समाचारों की दुनिया में अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला का वर्चस्व है। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति यह तय करता है कि हिंदुस्तानियों की अपनी भाषा में भी एक समाचार पत्र होना चाहिए। नाम था पंडित जुगल किशोर शुक्ल, और 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकला हिंदी का पहला अखबार उदंड मारतंड। उदंड मारतंड यानी समाचार का सूर्य। यह सिर्फ एक अखबार का जन्म नहीं था, यह उस भाषा की सार्वजनिक आवाज का जन्म था जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की भाषा बनने वाली थी। आज हम जब हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, तो यह सिर्फ अतीत को याद करने का अवसर नहीं है, यह अपने आप से पूछने का अवसर भी है कि इन 200 वर्षों में हमने पत्रकारिता को क्या दिया और पत्रकारिता ने हमें क्या दिया। 30 मई 1826 को प्रकाशित उदंड मारतंड साप्ताहिक था, बाद में यह दैनिक हुआ। पंडित जुगल किशोर शुक्ल उसके संपादक और प्रकाशक दोनों थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उस समय यह थी कि पाठक कहाँ से आएंगे, पत्र कैसे पहुंचेगा और पत्र को प्रकाशित करने में खर्च कैसे निकलेगा। यह वह समय था जब हिंदी के लिए न तो आज जैसा विशाल पाठक वर्ग था और न ही आज जैसी संचार व्यवस्था। फिर भी शुक्ल जी ने शुरुआत की। यह साहस अपने आप में पत्रकारिता की पहली सीख देता है। पत्रकारिता सुविधा से नहीं, आवश्यकता से जन्म लेती है। उदंड मारतंड आर्थिक कठिनाइयों और वितरण की समस्याओं से जूझता रहा और दिसंबर 1827 में उसका प्रकाशन बंद हो गया। लेकिन 1.5 वर्षों से कुछ अधिक की यात्रा ने इतिहास में वो जगह बना ली जिसे 200 साल भी मिटा नहीं सके। किसी अखबार का जीवन छोटा हो सकता है, उसका विचार बहुत लंबा जीवन जी सकता है। उदंड मारतंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की, तो इसके बाद हिंदी पत्रकारिता धीरे धीरे आकार लेने लगी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी पत्रकारिता केवल खबर देने तक सीमित नहीं रही, वह भाषा, समाज और राष्ट्र के सवालों से जुड़ने लगी। काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का दौर आया। भारतेंदु ने पत्रकारिता को साहित्य और सामाजिक चेतना से जोड़ा। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन जैसे प्रकाशनों के माध्यम से हिंदी गद्य को नया तेवर मिला। इसी दौर में प्रयागराज की धरती पर बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाला। क्योंकि जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं और प्रयागराज की बात न हो तो वो अधूरा सा होता है। सितंबर 1877 में शुरू हुआ यह पत्र औपनिवेशिक शासन की नीतियों और सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर मुखर था। 1878 के दमनकारी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में हिंदी प्रदीप ने हम चुप न रहेंगे जैसी मुखर भूमिका अपनाई। जरा सोचिए, जिस समय सरकार भारतीय भाषाओं के अखबारों की आवाज दबाने के लिए कानून बना रही थी, उसी समय हिंदी पत्रकारिता कह रही थी कि हम चुप नहीं रहेंगे। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था या उद्घोष नहीं था, यह हिंदी पत्रकारिता के चरित्र की घोषणा थी। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो भारतीय भाषाओं

की पत्रकारिता को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। अंग्रेजी हुकूमत को यह डर था कि यह आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस तरीके स्थानीय भाषाओं में जो अखबार आते हैं, जो समाचार पत्र जनता तक पहुंचते हैं, उनमें असंतोष और राजनीतिक चेतना पैदा कर रहे हैं, और शायद उस दौर में यही हिंदी पत्रकारिता की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सत्ता को हिंदी पत्रकारिता से डर लगने लगा था, क्योंकि जिस कलम से जनता अपनी पीड़ा पढ़ने लगी थी, जिस अखबार में उसे अपनी आवाज सुनाई देने लगे, वह केवल कागज नहीं रह जाता, वह जनमत बन जाता है। 20वीं सदी आते आते हिंदी पत्रकारिता का स्वर और मुखर हुआ। 1900 में सरस्वती का प्रकाशन शुरू हुआ। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में उसे नई दिशा मिली। साहित्य, भाषा, समाज और राष्ट्रीय चेतना सब एक साथ इस पत्रिका के पन्नों में उतर आए। यह वह समय था जब पत्रकारिता और साहित्य के बीच कोई कठोर दीवार नहीं थी। लेखक संपादक था, संपादक आंदोलनकारी था, पत्रकार साहित्यकार था, और साहित्य समाज की बेचैनी का दस्तावेज था। इसीलिए हिंदी पत्रकारिता की कहानी केवल अखबारों की कहानी नहीं है, यह हिंदी भाषा के आधुनिक विकास की भी कहानी है। यह भारतीय समाज में आधुनिक चेतना के जन्म की भी कहानी है। यह राष्ट्रीय स्वाधीनता के चेतना के विस्तार की कहानी है। फिर हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को हम छोड़ नहीं सकते। उनकी पत्रकारिता मराठी में थी, लेकिन उसका पूरा प्रभाव भारतीय पत्रकारिता जगत पर था। केसरी और मराठा के माध्यम से तिलक ने पत्रकारिता को राजनीतिक प्रतिरोध का हथियार बनाया। पत्रकारिता ने जनता को केवल यह नहीं बताया कि देश में क्या हो रहा है, उसने यह भी बताया कि देश को किस दिशा में जाना चाहिए। और फिर हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक ऐसा नाम आता है कि जिसके सामने पत्रकार शब्द छोटा पड़ जाता है। हम उनके अवदान को आज भी याद करते हैं, और पूरा पत्रकार जगत उनके अवदान को भूल नहीं सकता। नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। 1913 में उन्होंने प्रताप शुरू किया, बाद में यह दैनिक बना। प्रताप ने किसानों, मजदूरों, शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ को जगह दी और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल बनाई। विद्यार्थी जी को कई बार जेल जाना पड़ा। 1931 में कानपुर के सांप्रदायिक दंगों के दौरान लोगों को बचाते हुए उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्रकारिता का मूल भाव था जनता के पक्ष में खड़ा होना। यही वह जगह है जहां पत्रकारिता खबर से आगे बढ़कर लोक धर्म बन जाती है। पत्रकार के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं होती, समाज महत्वपूर्ण होता है। कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं होती, सच महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी ने भी पत्रकारिता को अपने सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया। हिंदी में उन्होंने बहुत काम किया। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसे प्रकाशनों के माध्यम से देश से संवाद किया। गांधी जी कहते थे कि पत्रकारिता को सनसनी फैलाने का माध्यम बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि वे पत्रकारिता अपने जीवन के मिशन की सहायता के रूप में करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे क्रोध या दुर्भावना में नहीं लिख सकते, और केवल उत्तेजना पैदा करने के लिए भी नहीं लिख सकते। गांधी जी की यह बात आज भी पत्रकारिता के लिए एक आईना है। क्या हम लिखते समय सत्य के प्रति उतने संयमित हैं जितने अपने विचार के प्रति उत्साही? यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महात्मा गांधी के समय था। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में हिंदी पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा आंदोलन का सहभागी भी था। कानपुर से प्रताप की आवाज़ गूंजी, कर्मवीर ने मध्य भारत में चेतना जगाई, हंस ने साहित्य और राजनीति के बीच संवाद बनाया, प्रेमचंद्र ने 1931 में हंस का संपादन संभाला और उसके माध्यम से सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर मुखर लेखन किया, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का कर्मवीर भी इसी परंपरा का महत्वपूर्ण अध्याय था। उनकी पत्रकारिता में एक अद्भुत आत्मविश्वास था। वे कहते थे, हम फक्कड़ सपनों के स्वर्गों को लुटाने निकले हैं। ये पत्रकारों के लिए उनकी एक लाइन थी जो हिंदी भाषी पत्रकारों के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। किसी भी फरमाइश पर जूते बनाने वाले चर्मकार नहीं हैं हम। और पत्रकार के लिए उनकी एक और पंक्ति आज भी पत्रकारिता की आचार संहिता है। वो कहते थे कि कलम न रुके, न झुके, न अटके और न भटके। क्या इससे बेहतर पत्रकारिता का संक्षिप्त दर्शन संभव है? शायद नहीं। फिर आया 1942। ये वो समय था जब ब्रिटिश हुकूमत अपने चरम पर थी और भारतीय आंदोलन अपने शिखर पर। 15 अगस्त 1947 को देश

0: स्वतंत्र हुआ, लेकिन यहां से हिंदी पत्रकारिता के सामने एक नई चुनौती सामने खड़ी हुई। हिंदी पत्रकारिता को हम यदि दो कालखंडों में विभाजित करते हैं, पहला आज़ादी के पहले और दूसरा आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले हम ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहे थे, हमारी हिंदी पत्रकारिता उसके लिए मुखर थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो पत्रकारिता के सामने स्वतंत्रता के बाद एक नई चुनौती खड़ी हुई। अब सवाल यह नहीं था कि अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध कैसे लिखा जाए, सवाल यह था कि स्वतंत्र भारत के बारे में कैसे लिखा जाए, गरीबी पर कैसे लिखा जाए, अशिक्षा पर कैसे लिखा जाए, जातीय भेदभाव पर कैसे लिखा जाए, किसान की समस्या पर कैसे लिखा जाए, लोकतंत्र की कमियों पर कैसे लिखा जाए, सत्ता अपनी हो तो भी सवाल कैसे पूछा जाए। यहीं पत्रकारिता की असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में सत्ता विरोध आसान हो सकता था, आसान था, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछते हुए राष्ट्रहित और जनहित के बीच संतुलन बनाए रखना कहीं अधिक कठिन था। समय बदला, छापाखाने भी बदले, अखबारों की प्रतियां बढ़ी, रीडर बढ़े, फिर दौर आया ऑफसेट मशीनों का, ऑफसेट मशीनों के बाद रंगीन पन्ने आए, फिर टेलीविज़न आया, फिर इंटरनेट आया और फिर मोबाइल आया, और आज की पत्रकारिता हमारी और आपकी जेब में है मोबाइल के माध्यम से। आप सोचिए कि जिस खबर को कभी कलकत्ता से कानपुर पहुंचने में कई कई दिन लगते थे, वह आज एक सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। एक पत्रकार की रिपोर्ट अखबार में सुबह पढ़ी जाती है, फिर वेबसाइट पर जाती है, शाम को वीडियो बनती है और रात तक सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर के सामने होती है। तकनीक ने हिंदी पत्रकारिता की गति बदल दी, लेकिन एक बात नहीं बदली, सत्य की आवश्यकता। आज पत्रकारिता के सामने चुनौतियां नहीं हैं, फेक न्यूज़ है, डीप फेक है, AI से बनी तस्वीरें और वीडियो हैं, सूचना की बाढ़ है, हिंदी पत्रकारिता में ध्यान खींचने की होड़ है, क्लिक की अर्थव्यवस्था है और हर व्यक्ति संभावित प्रकाशक है। ऐसे समय में पत्रकार की भूमिका खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद और महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि सूचना बहुत है लेकिन विश्वसनीय सूचना कम है, आवाज़ें बहुत हैं लेकिन विश्वसनीय आवाज़ की ज़रूरत आज भी है। 200 वर्षों की यात्रा में हिंदी पत्रकारिता ने एक लंबा रास्ता तय किया है। उदंड मार्तंड की कुछ 100 प्रतियों से शुरू हुई यात्रा आज करोड़ों पाठकों और दर्शकों तक पहुँच चुकी है। हमें केवल संख्या पर गर्व नहीं होना चाहिए, हमें उस परम्परा पर गर्व होना चाहिए जिसने हिंदी पत्रकारिता को जनता से जोड़ा। हमें उस परंपरा पर गर्व करना चाहिए जिसमें संपादक जेल गया लेकिन कलम नहीं झुकी। हमें उस परंपरा पर गर्व करना चाहिए जिसमें अखबार आर्थिक संकट से बंद हुआ लेकिन विचार नहीं बंद हुए। उस परंपरा पर गर्व करना चाहिए जिसमें पत्रकार ने सत्ता के सामने सवाल पूछा और पीड़ित के सामने अपना कंधा रखा। हिंदी पत्रकारिता के इन 200 वर्षों को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो शायद यह कहा जा सकता है कि यह कागज पर छपी हुई 200 साल की यात्रा नहीं है, यह भारतीय समाज की जागती हुई चेतना की 200 साल की यात्रा है। 1826 में उदंड मार्तंड ने हिंदी समाचार को आवाज दी, भारतेंदु ने भाषा को आधुनिक चेतना से जोड़ा, बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग से सत्ता के सामने सवाल खड़े किए, द्विवेदी जी ने भाषा और विचार को अनुशासन दिया, तिलक जी ने पत्रकारिता को प्रतिरोध की शक्ति दिखाई, गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकारिता को धर्म निरपेक्ष और जन पक्षधरता का अर्थ समझाया, गांधी जी ने पत्रकारिता में सत्य और संयम का महत्व बताया और स्वतंत्र भारत के पत्रकारों ने पत्रकारिता को लोकतंत्र की चौथी शक्ति के रूप में मजबूत किया।
1: हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की यात्रा। श्रोताओं, अभी आपने इस विषय पर श्याम मिश्रा की ये वार्ता सुनी। इसी के साथ अब आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

राज के साथ। और अब से कुछ ही क्षणों में वक्त हो रहा है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं गार्गी द्विवेदी। इनके स्वर में हम आपको एक दो भक्ति रचनाएं सुनवाने जा रहे हैं। पहली रचना है मीराबाई की।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारी कलाकार हैं गार्गी द्विवेदी। मीराबाई की इस भक्ति रचना के बाद प्रोग्राम के आखिर में इनके स्वर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संत कवि तुलसीदास की ये भक्ति रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गारिकी द्विवेदी के सर में मीराबाई और संत कवि तुलसीदास की ये भक्ति रचना। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारी कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वंदना राठौर का लिखा रूपक प्रयाग के शिव तीर्थ, स्वर विनय श्रीवास्तव और कीर्ति द्विवेदी की।

0: विष्णु प्रिया जलधारा शिवम प्रिया ब्रह्माणम मधुरम प्रिया
1: अनंतम व्ययम शांतम लक्षमालधरम हरम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्युः करिष्यति आनंदम परम नित्यम कैवल्य पद कारणम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्युः करिष्यति।
0: अर्थात जो अनंत हैं, अव्यय हैं, शांत हैं, अक्षमाला धारण करने वाले हैं, परम आनंद स्वरूप हैं, नित्य हैं, कैवल्य पद का कारण हैं, ऐसे भगवान शिव को मैं सिर झुकाकर नमन करती हूँ। मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती।
1: काल के नियंता शिव महाकाल हैं, जिनके शरणागत हो जाने पर मृत्यु भी परास्त हो

0: कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भी शिव तत्व है, मध्य में भी और अंत में जब सब कुछ शून्यता में परिवर्तित हो जाता है, उस समय भी उसी असीम शिव की सत्ता विराजमान रहती है। वे सबके कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं, वे आदि अंत रहित हैं।
1: मान्यता है कि भोले शंकर बहुत ही दानी हैं, भोले हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं। इसी कारण श्रावण मास के सोमवार के दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। विशेष रूप से संगम नगरी प्रयागराज स्थित शिव मंदिरों की शोभा देखने योग्य होती है।
0: वैसे तो सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परंपराओं की अद्भुत धरोहर के लिए

0: विश्वविख्यात प्रयागराज अपनी अनूठी संस्कृतियों, रीति रिवाजों, मान्यताओं को लेकर आकर्षण का केंद्र बना ही रहता है, लेकिन श्रावण मास में इस नगर में शिव आराधना, शिव भक्ति से उत्पन्न श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिकता अपने चरम पर होती है, जो अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ स्थापित सोमेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, मनकामेश्वर और पड़िला महादेव मंदिरों का महात्म्य अनिर्वचनीय है।
1: तीर्थराज के रूप में प्रयागराज का वर्णन वेदों में है। ऐसी मान्यता है कि चार वेदों की प्राप्ति के बाद ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में ही यज्ञ किया था। सृष्टि की प्रथम यज्ञ स्थली होने के कारण इसे प्रयागराज कहा गया। मंदिर के गर्भगृह में दो काले पत्थर के शिवलिंग हैं, एक दशाश्वमेघ महादेव का तो दूसरा ब्रह्मेश्वर महादेव का। दोनों लिंगों के मध्य बड़ा सा त्रिशूल स्थापित है। मंदिर में नंदीश्वर तथा शेषनाग की प्रतिमाओं के साथ ही चैतन्य महाप्रभु की पीठ भी दर्शनीय है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित इस शिवलिंग से जुड़ा एक ऐतिहासिक किस्सा भी है। कहते हैं कि मुगल काल में जब औरंगजेब ने अपनी तलवार से दशाश्वमेघेश्वर शिवलिंग पर वार किया तो शिवलिंग से रक्त का प्रवाह होने लगा। इससे वो इस शिवलिंग की महिमा के आगे नतमस्तक होकर चला गया। दशाश्वमेघ मंदिर के पौराणिक महत्व को बताते हुए संस्कृति मनीषी एवं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रामेश्वर प्रपन्नाचारी शास्त्री जी, श्री देवराहा बाबा संस्थान, प्रयागराज।
2: ऐसी मान्यता है कि सतयुग में जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तो जगत पिता ब्रह्मा ने तीर्थराज प्रयाग के इस परम पावन भूमि में आकर और दशाश्वमेध अर्थात दश अश्वमेध यज्ञ इन्होंने संपन्न किया और वह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होते रहे उसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम भगवान शंकर की स्थापना करी और तब से वह जो ब्रह्मा जी महाराज द्वारा स्थापित शिव मंदिर है उसका नाम है दशाश्वमेध मंदिर। और ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर की स्थापना ब्रह्मा जी महाराज ने सतयुग में किया था और इसके पश्चात फिर उनके समस्त यज्ञ यहाँ पर निर्विघ्न संपन्न हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस तीर्थराज प्रयाग में आकर के यज्ञ संपादित किया है, अर्थात जो व्यक्ति दशाश्वमेध में पहुंचकर भगवान शंकर का दर्शन करता है और गंगा जल से उन्हें अभिसिंचित करता है वह एक यज्ञ के बराबर पुण्य का भागी बनता है, उसे एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।
1: संगम नगरी प्रयागराज में स्थापित इन शिव मंदिरों का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। पौराणिक मान्यता वाला सोमेश्वर महादेव मंदिर अपने अनूठेपन के कारण जगत प्रसिद्ध है। अरेल के गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती यानी त्रिवेणी के तट पर स्थित इस मंदिर की स्थापना के पीछे की कहानी भी कम रोचक और अनूठी नहीं है। सोमेश्वर महादेव मंदिर के पौराणिक महत्व को बताते हुए महंत श्री राजेंद्रपुरी जी महाराज, सोमेश्वर महादेव मंदिर, प्रयागराज।
3: इसका पौराणिक महत्व पुराणों में ये दिया गया है कि इनकी स्थापना चंद्रदेव द्वारा हुई है। तो दक्ष की 27 पुत्रियों का ब्याह चंद्रदेव से हुआ है। उस समय तक तो चंद्रदेव सबसे समता व्यवहार करते रहे, कुछ समय बाद उन्होंने क्रिया बदल दिया, एक के साथ संबंध रखना चालू कर दिया, 26 को उपेक्षित कर दिया। तो 26 बहनें आती हैं अपने पिता के यहाँ, दक्ष के यहाँ पहुँचती हैं। दक्ष ने सुना तो उनको बड़ा क्रोध आया, उसी क्रोधावेश में जाते हैं चंद्रदेव से मिले, बोलते हैं मैं दक्ष प्रजापति श्राप देता हूँ कुछ चैरों से ग्रसित होकर नष्ट हो जा। अब वो कुरूपता बढ़ी तो गए सौराष्ट्र सोमनाथ का जो मंदिर बना हुआ है, उस शिवलिंग की स्थापना समुद्र सतह में किया था। समुद्र सतह में करने के बाद वहीं सभी देवी देवताओं का हवन करने बहुत अर्था किए तो कैलाश पे उसके जप का प्रभाव पहुंचा। जब पहुंचा तो वहाँ शिव जी का आसन कंपन हुआ। तो अंतर ध्यान होने के बाद आता है उनके समझ में कि तीर्थराज प्रयाग में प्रभास नामक क्षेत्र है, वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करके विधि विधान से सरस्वती और शिव का पूजन करके बहुसी कष्टमय जीवन में त्रिशूल लिए अकेले आए, प्रकट हुए। बोले चंदेव मैं तेरे से प्रसन्न हुआ, बोल तू क्या चाहता है। तो बोलते हैं प्रभु मेरा अच्छा ही लोग दूर कर दिया, तथा महीने के दो भागों में परिवर्तन कर दिया कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनसे भी ये परे हैं, ये यहाँ के राजा हैं।

0: चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसीलिए ये मंदिर सोमेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर में स्थापित त्रिशूल अपनी चमत्कारिक विशेषता से श्रद्धालुओं को हतप्रभ और चमत्कृत कर देता है।
1: कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन यदि त्रिशूल की दिशा पूर्व से पश्चिम है तो अमावस्या तक ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर परिवर्तित हो जाता है। मंदिर के परिसर में एक अष्टकोणीय स्तंभ भी है जिस पर जयपुर के राजा मानसिंह ने 1676 ईस्वी में संस्कृत भाषा में 15 पंक्तियों का लेख उत्कीर्ण कराया। यज्ञ की धरती प्रयाग पर भगवान शिव का अद्भुत दर्शन यमुना के तट पर स्थित मन कामेश्वर मंदिर के पौराणिक स्थल पर भी होता है।
0: माना जाता है कि मन कामेश्वर मंदिर में पूरी श्रद्धा और मन से मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं।
1: पुराणों में भी मन कामेश्वर मंदिर का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण और प्रयाग महात्म्य के अनुसार अक्षयवट के पश्चिम में पिशाच मोचन मंदिर के पास यमुना के किनारे भगवान मन कामेश्वर का तीर्थ है।
2: महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का वर्णन करते हुए डॉक्टर रामेश्वर प्रपन्नाचार्य शास्त्री जी,
3: मन कामेश्वर मंदिर ये यमुना के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता में स्वयं भगवान लक्ष्मण ने इस मंदिर की स्थापना करी थी। जब वह वनवास के समय भगवान राघवेंद्र सरकार और जगत जननी माता सीता के साथ वनवास गमन कर रहे थे तो भरद्वाज आश्रम से जब आगे बढ़े हैं, यमुना जी को पार किया है, उसके पहले मन कामेश्वर मंदिर में पहुंचकर यमुना के किनारे यमुना की बालू से शिवलिंग का निर्माण किया है जिससे उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होवे और साथ साथ उनका 14 वर्ष का जो वनवास है वह निर्विघ्न संपन्न हो जावे, ऐसा जो है उनके मन में भावना थी। तो उन्होंने इस कार्य की निर्विघ्नता के लिए मन कामेश्वर मंदिर में शिव की स्थापना करी, पूजन किया और आज उसकी मान्यता यह है कि श्रावण मास में या जब भी कभी सोमवार को, प्रदोष को या मास त्रयोदशी के दिन जो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच करके शिव जी का जलाभिषेक करता है उसकी समस्त मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है।
1: मंदिर के परिसर में ऋण मुक्तेश्वर और सिद्धेश्वर महादेव का अद्भुत शिवलिंग भी स्थापित है। दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा का यहाँ विराजित होना मंदिर को और भी महत्वपूर्ण प्रसिद्धि दिलाता है।
0: श्रावण मास के पवित्र माह में यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। विशेष रूप से प्रदोष और महाशिवरात्रि पर्व पर तो यहाँ भक्तों का तांता ही लगा रहता है।

0: शिव की महिमा अपरंपार है। शिव भोले हैं, कल्याणकारी हैं। वे सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं।
1: महाशिव करुणा के सागर हैं। थोड़े ही में प्रसन्न होने वाले शिव अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामचित हैं।
0: भूत प्रेत नंदी सिंह सर्प मयूर मूषक सभी को समभाव से देखने वाले भगवान आशुतोष राम के प्रिय हैं। प्रयागराज की पुण्य भूमि इन दोनों के इस अनन्य प्रेम की साक्षी रही है। वनगमन के समय भगवान राम ने मन कामेश्वर महादेव की स्थापना की थी और लंका पर विजय प्राप्त कर जब प्रभु राम पुनः अयोध्या वापस लौट रहे थे तब उन्होंने स्वयं गंगा तट पर स्थित शिवकुटी में कोटेश्वर महादेव को स्थापित किया था।
1: कहते हैं कि लंका विजय के पश्चात जब प्रभु राम अयोध्या लौटते समय प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज का आशीर्वाद लेने गए

0: भरद्वाज ऋषि ने श्री राम से कहा था कि रावण ब्राह्मण था। राम, तुमने रावण का वध किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप है। इस पाप को समाप्त करने के लिए तुम्हें 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना होगा।
1: श्री राम ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि महर्षि, इतने सारे शिवलिंगों का कलयुग में क्या उचित रूप से पूजन अर्चन हो पाएगा? इस पर महर्षि भरद्वाज ने कहा कि दोनों हाथों की मुट्ठी में जितने बालू के कण आए, उससे शिवलिंग बना दें। इस शिवलिंग की आराधना से 1 करोड़ शिवलिंग की स्तुति का फल प्राप्त होगा। श्री राम ने उसी के अनुसार शिवलिंग का निर्माण किया। यही शिवलिंग कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है।
0: कोटेश्वर महादेव की महिमा निराली है। इस शिवालय में वर्ष पर्यंत दर्शन, पूजन और दुग्ध जल से अभिषेक करने के लिए श्रद्धालु लालायित रहते हैं। श्रावण मास में यहाँ विशेष अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। जन कल्याण हेतु नियमित रूप से आराधना पूजा की जाती है।

0: गुजरात के शिवकुटी में ही स्थित शिव कचहरी मंदिर का एक अलग ही इतिहास, मान्यता और कहानी है। ये भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां भोलेनाथ शिव शंकर न्यायाधीश के रूप में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके कर्मों पर निर्णय और न्याय करते हैं।
1: इस मंदिर में लगभग 286 शिवलिंग हैं। इनमें एक शिवलिंग मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुशोभित है तो अन्य न्यायाधीश और अधिवक्ता के रूप में है।
0: शिव कचहरी मंदिर में भक्त जाने अनजाने में हुई अपनी त्रुटियों की क्षमा मांगने और उसका प्रायश्चित करने के लिए आते हैं।
1: कोई चिट्ठी लिखकर अर्जी लगाता है तो कोई यहाँ स्थित शिवलिंग के बहुत करीब जाकर धीमे स्वरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। मान्यता है कि इस अभूतपूर्व कचहरी में भगवान शिव न्यायाधीश के रूप में विराजित तो अवश्य हैं, लेकिन वो बड़े ही दयालु हैं। गलतियों को स्वीकारने वाले और प्रायश्चित करने वाले अपने भक्तों को न सिर्फ क्षमा का उपहार देते हैं बल्कि उन पर अपनी स्नेह दृष्टि भी रखते हैं, उनका कल्याण भी करते हैं।
0: भक्तों को इच्छित फल प्रदान करते, उनकी मनोकामना पूर्ण करते भगवान त्रिपुरारी पांडेश्वर महादेव अर्थात पड़िला महादेव के रूप में भी प्रयाग के उत्तरांचल में फाफामऊ के थरवई गांव में स्थापित हैं। इस मंदिर की गणना प्रयागराज के पंचकोसी परिक्रमा में होती है। मंदिर में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु महादेव का पूरे एक माह तक जलाभिषेक करते हैं जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। शिव अपने भक्तों को निराश नहीं करते, उनकी छोली मुरादों से भरते हैं, उन पर अपने आशीर्वाद और कृपा की बरसात करते हैं।
1: सावन के पवित्र महीने में तो यहाँ की छटा अनुपम होती है। भक्तगण पड़िला महादेव की पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से तो करते ही हैं, साथ ही वे शिव को प्रसन्न करने के लिए निशान भी चढ़ाते हैं। इस प्राचीन मंदिर की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता सर्वविदित है।
0: कांवरिये पांडेश्वर धाम में आकर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। गंगाजल, ध्वज पताका, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करके महादेव को अपनी श्रद्धा और भक्ति से आनंदित करते हैं।
1: इस मंदिर के निर्माण की कथा द्वापर युग से जुड़ती है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान

0: पांडव इस क्षेत्र में पहुंचे तो पांडुपुत्र भीम ने शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या की थी। भीम की कठोर तपस्या देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से यह स्थान पांडेश्वर नाथ धाम से जग प्रसिद्ध हो गया।
1: देश के कोने कोने से लोग पड़िला महादेव के दर्शन को आते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। सावन में यहाँ मेले के कारण बड़ी धूम रहती है। जन जन के हृदय में भोले शंकर का बीज मंत्र, उन्हीं के भजन गुंजायमान होते हैं।

0: लय प्रलय के स्वामी त्र्यंबकेश्वर अपने भक्तों के अधीन हैं। वे सब प्राणियों पर समान कृपा बरसाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न जल, वायु सभी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। आशय ये है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। चतुर्मास में महादेव की महिमा अपरंपार होती है।
1: आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक का समय भगवान शिव और विष्णु को हृदय में स्थापित कर अभेद बुद्धि से उनका चिंतन, स्मरण एवं उपासना करने से मनुष्य को सब पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है।
0: इन चार महीनों तक भगवान विष्णु श्री हरि शयन कर रहे होते हैं और इस अवधि में भगवान आशुतोष महादेव सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। चतुर्मास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये आत्मसंयम, साधना और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।
1: भगवान शिव संसार की पीड़ा का विष अपने कंठ में धारण करते हैं। वे नीलकंठ कहलाते हैं। वो हम सब पर सहज कृपालु हैं, भोलेनाथ हैं। वो देवों के देव महादेव हैं। वो शक्ति के साथ मिलकर जगत के संचालक कल्याणकर्ता हैं। शिव शंभु हैं, अर्धनारीश्वर हैं।
0: प्रयाग की पुण्य भूमि पर स्थापित ऐतिहासिक पौराणिक शिव मंदिर मात्र मंदिर भर ही नहीं है, बल्कि अद्भुत अलौकिक दिव्य पीठ है जिनका वर्णन शब्दातीत है।
1: भगवान शिव भारतीय जीवन की ऊर्जा और रचनात्मक शक्ति के प्रतीक हैं। शिव औषधियों के परम ज्ञाता हैं, ज्ञान हैं, योग हैं। वे कुशल नर्तक और प्रवर्तक भी हैं। त्रिलोकीनाथ शिव आशुतोष हैं, औघड़दानी हैं, योगेश्वर हैं शिव। शिव को प्रेम करने वाला भगवान राम का भी अति प्रिय है। तभी तो श्री रामचरितमानस में श्री राम घोषणा करते हुए कहते हैं,
0: शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हु नहीं भावा। अर्थात जो भक्त शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है, वो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता।
1: ऐसे हृदय में निवास करने वाले भगवान चंद्रमौली के भव्य स्वरूप की अनुपम छटा दृश्यमान होती है प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर स्थापित सुजावन देव मंदिर में। प्राकृतिक सुषमा को स्वयं में धारण किए घोरपुर से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में यमुना नदी के सानिध्य में सृष्टि के निर्माता, पालक व संहारक भगवान महादेव का ये मंदिर अविचल है।
0: भक्तगण भगवान शिव के इस दिव्य रूप के दर्शन की अभिलाषा लिए सुजावन देव मंदिर आते हैं और अपनी भक्ति श्रद्धा के दीप जला महादेव को प्रसन्न करते हैं। सुजावन देव मंदिर के विषय में दंत कथा प्रचलित है कि एक बार यमद्वितीया के अवसर पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने यहाँ आए थे और बहन का हाथ थाम कर यमुना नदी में डुबकी भी लगाई थी।

0: जी ने अपने भाई यमराज का बहुत ही मन से आदर सत्कार किया, जिससे यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने यमुना से वरदान मांगने के लिए कहा।
1: यमुना जी ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर यमराज से वर मांगा कि भैया दूज के दिन जो भक्त यमुना नदी में स्नान करें, उन्हें मृत्यु का भय न रहे और देवलोक में स्थान प्राप्त हो। यमराज ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा। इसी मान्यता के

0: में स्नान करें, उन्हें मृत्यु का भय न रहे और देवलोक में स्थान प्राप्त हो। यमराज ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा। इसी मान्यता के अनुसार सुजावन देव मंदिर और यमुना तट पर दीपावली पर्व के पश्चात यम द्वितीया को विशाल मेला लगता है। श्रद्धालु यहां आकर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और यमुना नदी में दीपदान भी करते हैं और आज ये शिव भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है।
1: भारत देश की संस्कृति में विद्यमान भगवान शिव सर्वव्यापी परम ब्रह्म और सर्वेश्वर है। शिव का डमरू आकाश का, सर्प वायु का, गंगा जल का, त्रिशूल पृथ्वी का, तृतीय नेत्र अग्नि एवं ज्ञान का, वृषभ धर्म का, चंद्रमा संत और नीलकंठ त्याग का प्रतीक स्वरूप है।
0: भगवान शिव शास्त्र पारंगत संगीत प्रवर्तक हैं। शिव सत्यम शिवम सुंदरम के प्रणेता हैं। शून्य से सृष्टि तक के रचनाकार हैं। आदि अंत से परे देवाधिदेव महादेव संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं।
1: ऐसे त्रिगुणधारी भगवान महाशिव का वंदन वेद पुराण ऋषि मुनि चर अचर देवतागण पृथ्वी निवासी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त तत्व करते हैं। सदा शिव की उपस्थिति पवित्र पावन प्रयाग भूमि के कण कण में अनुभव

श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी वंदना राठौर का लिखा रूपक प्रयाग की शिव तीर्थ। स्वर विनय श्रीवास्तव और कीर्ति द्विवेदी की, प्रस्तुति आशुतोष सुंदरम की थी।

हर व्यक्ति अपना जीवन बिना किसी दबाव के जीना चाहता है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो। हर एक व्यक्ति को यह चाहिए कि किसी दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी न करे। अपनी बात को कहने का पूरा पूरा हक हर व्यक्ति को है, लेकिन ऐसा कोई कार्य न करे जिससे दूसरे का सम्मान कम हो जाए। चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो चाहे वृद्ध बालक जो भी हो, व्यक्ति किसी से शादी कर सकता है, संतान उत्पन्न कर सकता है, यह उसका खुद का जीवन है। वह अपने जीवन में स्वतंत्र है। स्वतंत्रता ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। इसका मतलब है कि आप क्या खाते हैं, किससे शादी करते हैं या आपका डेटा कैसे इस्तेमाल होता है, यह आपका निजी मामला है। सरकार बिना किसी ठोस कानूनी कारण के इसमें दखल नहीं दे सकती। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इससे पहले हम 1954 की बात करें तो एक एमपी शर्मा नामक विवाद आता है। इस मामले में यह कहा जाता है कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है। इस मामले को 8 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सुना। इसके बाद एक मामला 1962 में खड़क सिंह नाम से आता है, जिसे 6 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सुना और कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन जुलाई 2017 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार में निहित है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर थे। निजता के अधिकार को संरक्षण अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त होता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। निजता के अंतर्गत जो निजी जानकारी है उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो समाज का सभी वर्ग है, निजता उन सभी की आकांक्षा है। साथ ही साथ यह भी कहती है कि जो राजनैतिक अधिकार हैं इसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के अधीन नहीं रखा जा सकता। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे के एस पुट्टा स्वामी के द्वारा 2012 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार अन्य अधिकारों की आधारशिला है। निजता का अधिकार मनुष्य की आज़ादी और गरिमापूर्ण जीवन जीने का आधार स्तंभ है। आधुनिक और तकनीकी समाज में निजता व्यापक विषय हो चुका है। सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, हम किस हद तक बाहरी लोगों के साथ आत्मसात होना चाहते हैं, यह भी निजता का महत्व माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि निजता का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त होना चाहिए, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा निजता का अधिकार तीनों को सम्मिलित कर दिया है। कोई भी नागरिक यदि सार्वजनिक स्थान पर है तो भी वह निजता के अधिकार का दावा कर सकता है। व्यक्ति की पसंद नापसंद दोनों निजता में ही शामिल है। इसके अलावा विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, परिवार के साथ रहना निजता में शामिल होती है। निजता का प्रभाव आधार कार्ड की वैधता पर एवं व्हाट्सएप की निजता तथा डिजिटल इंडिया पर पड़ने वाला है, और जो प्रत्यक्ष लाभ एवं स्थानांतरण है उस पर भी पड़ने वाला है। आपका मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन, आपकी ईमेल आईडी, आपका राजनीतिक विचार किसी दूसरे तक पहुंच जाए

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

मीडियम व्यू 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून और हम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अधिवक्ता अतुल कुमार यादव की वार्ता, जिसका विषय है डिजिटल युग में निजता का अधिकार।

ये आप नहीं चाहते हैं। आपको अनचाहे मैसेज आने लगे या अनचाहे फ़ोन आने लगे अन्योन नंबर से, जिन्हें आप जानते ही नहीं हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ प्रयास कर रही थी। इस प्रयास के क्रम में एक कानून आया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, क्योंकि आपकी निजी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी निजी जानकारी किसी व्यक्ति, संस्थान या कंपनी के पास जाए, ये ठीक नहीं है। जिसको आप दे रहे हो वह आपके डेटा को बेवजह उपयोग करे, यह भी उचित नहीं है। जैसा किसी फूड कंपनी को अपना डेटा, अपना पता या ईमेल इसलिए देते हैं कि वह आपको, आपके खाने की वस्तु को आप तक पहुंचा सके, लेकिन इसके अलावा वह ऐड देना, दूसरी कंपनी के बारे में जानकारी देना शुरू कर दे, यह उचित नहीं होगा। इसलिए यह कानून आया। सिर्फ भारत सरकार ने ही नहीं, बल्कि भारत सरकार के पहले न्यायपालिका ने भी माना कि आपका निजी डाटा आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि निजता के अधिकार की बात कही गई है। अभी सरकार एक नियमावली जारी की है, जिसके अंतर्गत नियम धीरे धीरे आ रहे हैं और आपके डेटा को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। 2023 में यह नियम आ गया था। 2018 में न्यायाधीश बीएन श्री कृष्णा की समिति में एक प्रकार से यह बात सामने आई थी। इसके बाद धीरे धीरे यह कानून बना। अब आपका डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके कुछ वर्ड्स हैं, डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूसिटी, जो डेटा देता है उसे डेटा प्रिंसिपल और जिसे डेटा दिया जाता है उसे डेटा फिड्यूसिटी कहते हैं। जिसके पास डेटा है वह उसका गलत उपयोग करे तथा जिसके पास हम डेटा न देना चाहे उसके पास न जाएं। इसके बाद भी यदि डेटा लीक होता है तो इस कानून के तहत सजा और जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना 250 करोड़ तक का हो सकता है। जितना डेटा हम जिसको देना चाहे उससे ज़्यादा डेटा यदि लेता है तो उसे डेटा मिनिमाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा यूजर्स के मर्जी के बिना डेटा नहीं लिया जा सकता है। यदि बच्चों का मामला है तो अभिभावक की सहमति होना अनिवार्य है। यहाँ तक कि डेटा हमारे देश के बाहर कैसे जाता है, जहाँ पर डेटा जाता है और जहाँ पर नहीं जाता है, दोनों की सूची तैयार की जाती है। इसके अलावा एक बात यह है कि डेटा 3 वर्ष तक रखा जा सकता है। डेटा जिसका है वह चाहे तो डेटा बदलवा सकता है, हटवाना चाहता है तो हटवा सकता है, अपडेट करवाना चाहता है तो वह अपडेट करवा सकता है। ये सारी सुविधाएं उसके पास हैं। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की नियुक्ति सरकार के द्वारा कुछ सदस्यों के माध्यम से की जाएगी। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में डेटा में कुछ गड़बड़ी होने पर शिकायत की जाती है, उसके बाद यह जांच करेगी, एक्शन लेगी। एक्शन 250 करोड़ तक का हो सकता है। यदि कोई कंपनी किसी का डेटा लेकर अपने पास रख ली हो, भले ही इसका उपयोग न किया हो, तो भी 200 करोड़ का जुर्माना होगा। यदि एक से ज़्यादा बार शिकायत आती है तो उस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। भारत में जो विजिटर आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवा लेने वाले लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी यह मददगार हो सकता है। अब यहाँ पर चिंता की बात यह है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत यदि कोई जानकारी मांगते हैं तो अधिकारी यह कहता है कि यह हमारी निजता का अधिकार के अंतर्गत आता है।

0: ऐसी स्थिति में आरटीआई और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट दोनों में टकराव हो सकता है। अब दूसरी बात यह आती है कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आ गया तो सरकार को आपके डेटा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपात स्थिति में सरकार बिना अनुमति के आपकी डेटा ले सकती है आपात स्थिति में फंसे लोगों की सहायता के लिए, लेकिन आपात स्थिति समाप्त होने पर जब सरकार को हमारे डेटा की आवश्यकता न पड़े तब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकार का कोई अंग या उससे संबंधित कोई निजी व्यक्ति या संस्था उसका गलत प्रयोग न कर सके। जिसका डाटा लिया गया है उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचे।
1: कानून और हम, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अधिवक्ता अतुल कुमार यादव की वार्ता, जिसका विषय था डिजिटल युग में निजता का अधिकार। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं समाचार संध्या। बस थोड़ी प्रतीक्षा।
0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
2: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
3: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने

0: को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
3: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कोलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे।

0: देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट। घर घर
1: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
3: केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यौम आजादी से कबल आईएसआई की हिमायत वाले शहजाद भट्टी दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह कर दिया गया है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत ने इस नेटवर्क के 200 से ज्यादा कारिंदों को गिरफ्तार भी किया है। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत तकरीबन 7,900 करोड़ रुपए मालियत की 31 नई तजावीज को मंजूरी दी है। वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने इम्तिहानी इस्लाहात के मौजू पर सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की। वजीर तालीम ने सभी इम्तिहानात के तरीक़ाकार का जामे ऑडिट करने की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हिदायत दी। बीजेपी ने पार्टी अहदेदारों की नई कौमी टीम का ऐलान किया है। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया टीम में शामिल अहम नाम हैं। कतर में रिहाइश पजीर भारतीय अब डाकखानों के जरिए UPI से अपने घर रकम भेज सकते हैं। और मर्दों के क्रिकेट में गाले टेस्ट की पहली इनिंग्स में भारत ने श्रीलंका को 284 रन तक महदूद करते हुए 178 रन की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इत्तला दी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत ने यौम आजादी से कबल ISI की हिमायत वाले दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को तबाह कर दिया है। जनाब शाह ने बताया कि हुकूमत ने इस ग्रुप के 200 से ज्यादा कारिंदों को गिरफ्तार करते हुए उनके मुमकिन हमलों के मंसूबों को भी नाकाम बना दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 रियासतों के मुख्तलिफ मकामात पर तालमेल पर मबनी कार्रवाइयां अंजाम देते हुए इस नेटवर्क को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के भारत के अज़्म की उम्दा मिसाल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस महीने की 12 तारीख को रियासती पुलिस फोर्सेज के साथ मिलकर कई रियासतों में तालमेल पर मबनी ऑपरेशन के जरिए हकीकी वक्त पर मबनी इंटेलिजेंस इश्तराक की बिना पर शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी है। ये नेटवर्क यौम आज़ादी के आसपास खलल डालने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान 14 रियासतों से तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 अफराद शामिल हैं। ISI की माली एयानत वाले इस ग्रुप से IED, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले CCTV कैमरे बरामद किए गए। ये नेटवर्क मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में मुकीम ISI की हिमायत वाला दहशतगर्द ग्रुप है, जो भारत में ग्रेनेड, IED, पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड किलिंग्स में मुलविस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पुलिस, दिफाई तनसीबात और मजहबी मकामात की रेकी के लिए मुकामी कारिंदों को रकम अदा करता था, ताकि वो जासूसी के लिए CCTV कैमरे नसब कर सकें। शहजाद भट्टी नेटवर्क मामले में अब तक 80 से ज़्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं और 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: हर घर तिरंगा मुहिम आज इख्तिताम पजीर हो गई। हर घर तिरंगा मुहिम के पांचवें साल ने एक तरफ जहां तिरंगे को लाखों भारतीयों के दिलों से जोड़ा, वहीं सरहद पार भारतीय भी तिरंगा लहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए यकजा हुए। मुल्कगीर पैमाने पर मनाई गई इस मुहिम ने शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को जगाया, कौमी यकजहती को मुस्तहकम किया और भारत के सकाफती विरसे को फरोग दिया। साल 2022 में शुरू हुई हर घर तिरंगा मुहिम अवामी शमूलियत वाली मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक के तौर पर उभरी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हर घर तिरंगा मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल की तकमील से मंसूब रही। इस मुहिम ने हुब्बुल वतनी के मुनफरिद इम्तजाज के तहत कौमी परचम और कौमी गीत को यकजा किया। इस साल की मुहिम की खासियत लोगों का इसमें नित नए तरीकों से शामिल होना था। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियों, सकाफती जुलूसों, स्कूल और कॉलेज प्रोग्रामों और बिरादरियों के जश्न में हर घर तिरंगा का जज्बा साफ नज़र आ रहा था। स्कूलों और कॉलेजों ने कौमी परचम और वंदे मातरम के बारे में जानने के लिए नौजवान लोगों की हौसला अफजाई की।

0: ये मुहिम हर साल लोगों को तिरंगे से जोड़ने के नए तरीके लाती है और साल 2026 में भी इस मुहिम को मनाने का दायरा काफी वसी रहा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: हुकूमत ने 7,877 करोड़ रुपए की तखमीना जाती सरमायाकारी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत 31 मजीद दरख्वास्तों को मंजूरी दी है। इन मंजूरियों से 9,500 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। ये दरख्वास्तें 10 रियासतों से मौसूल हुई हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7 और महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 दरख्वास्तें शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान इन दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी नामे सौंपे। ये दरख्वास्तें एसिटाइलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन ऑप्टिकल कैपेसिटर्स ट्रांसीवर्स और कॉयल्स जैसी मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि इन 31 मंजूरियों के साथ ही इस स्कीम के तहत कंपनियों की मंजूर की गई दरख्वास्तों की मजमू तादाद 106 हो गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि हुकूमत ने 59,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी रागिब करने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन अब हुकूमत अपने हदफ से आगे बढ़ गई है और 69,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल कर चुकी है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: वजीरे तालीम जनाब प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ ने इम्तिहानात से मुतालिक जाब्तों पर सख्ती से अमलावरी किए जाने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप्ड सिस्टम्स यानी बाहरी नेटवर्क से मुनकता निजाम, डिवाइस जमा करवाने जैसे जाब्तों पर जंगी पैमाने पर अमल किए जाने की तलकीन की। NTA से कहा गया है कि वो सभी इम्तिहानात के अमल की तफसीली जांच करें और उसे दुरुस्त करने के लिए किए गए मुतालिका इकदाम के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने आज पार्टी के कौमी ओहदेदारों की नई टीम का ऐलान किया। जनाब नबीन ने 13 कौमी नायब सुदूर का तकरर किया है, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा शामिल हैं, जबकि जनाब पीयूष गोयल को पार्टी का कौमी खजांची मुकर्रर किया गया है। नीज BL संतोष को तंजीमी कौमी जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। जनाब नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव समेत पार्टी के 8 लीडरों को कौमी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया है। पार्टी ने मुख्तलिफ मोर्चों के लिए भी नए सरबराहों के नामों का ऐलान किया है। इनमें डॉक्टर हेमंग जोशी को बतौर युवा मोर्चा सदर, रूप कुमार चौधरी को महिला मोर्चा सदर और बंसीलाल गुजर को किसान मोर्चा का सदर के तौर पर तकरर किया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के ओहदेदारों की नई टीम को मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात और नफसियात पर असरअंदाज होने वाले मादों की रोकथाम से मुतालिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में मुलव्वस गैर मुल्की शहरियों के लिए जमानत की शराइत सख्त कर दी है। ये फैसला फर्जी जमानत के खदशात के मद्देनजर किया गया है। इस सिलसिले में मुतादिद हिदायत जारी करते हुए जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत पर रिहा होने वाले गैर मुल्की शहरियों को अपने पासपोर्ट मुतालिक अदालत में जमा कराने होंगे और उन्हें पेशगी इजाजत के बगैर भारत से बाहर सफर करने के मजाज नहीं होंगे। अदालत ने मजीद कहा कि ऐसे मुलजिमान को रिहाई के एक हफ्ते के अंदर गैर मुल्कियों के इंदराज के इलाकाई दफ्तर FRRO में अपना इंदराज कराना होगा। अदालत ने हिदायत दी कि आमतौर पर मुलजिम की जमानती मुचलके की रकम के मसावी 2 जमानतें भी जमा करानी होंगी। इसके अलावा अगर तफ्तीश के दौरान मुलजिम के भारत में रिहायशी पते और राबते की मालूमात की

record C. तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करती हैं जमीर काजमी के लिखे इस कलाम के साथ, इश्क की कहानी पंकज उदास के स्वर में।

और अब इंतजार की सबसे खूबसूरत गजल। कलामी शायर हैं कैसरुल जाफरी।

श्रोताओं, प्रोग्राम के आखिर में वो गजल समाप्त फरमाइए जिसमें जीवन का फलसफा समाया हुआ है। जमीर काजमी साहब कहते हैं, जिंदगी भी संगीत है, सात सुर और बेशुमार एहसास।

27 फरवरी 2024 उस दिन गजल की दुनिया का एक सितारा डूब गया। पंकज उदास जी हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए, पर वो गए कहाँ?

वो तो हर उस रात में है जब कोई तन्हा चांद की बात गुनगुनाता है, वो हर उस खत में है जो आज भी चिट्ठी आई है कि इंतजार में है। सुप्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास को उनके संगीत करियर में योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री और सन 2025 में मरणोपरांत पद्म भूषण से नवाजा गया। हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ खत्म होती है गजलों की आज की कहकशा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास जी पर। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर जरूर बताइएगा। और अब अपने रेडियो साथी संतोष श्रीवास्तव को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। शब्बा खैर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सावन का मौसम और हमारे स्वास्थ्य पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी संतोष श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का ये विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे रिमझिम फुहारों के साथ आने वाली बीमारियों की और कैसे फिल्मी गानों के संग संग रखें हम अपना ख्याल। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सावन आया है, सेहत का पैगाम भी लाया है। सावन का महीना मन को भाता है, पर भीगी हवा और जगह जगह जमा पानी अपने साथ मच्छर, वायरल और पेट की बीमारियां भी लाता है। WHO कहता है कि बरसात में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के केस 40% तक बढ़ जाते हैं। तो आज हम 5 सदाबहार नगमों के साथ जानेंगे कि बरसात में कैसे रहें तंदुरुस्त। शुरुआत करते हैं 1989 की फिल्म मंजिल के इस रोमांटिक गाने से। अमिताभ और मौसमी भीगते हुए गा रही हैं रिमझिम गिरे सावन। लेकिन दोस्तों, बारिश में भीगना अच्छा लगता है, पर भीगने के बाद हवा ठंडी लग जाए तो सर्दी जुकाम

बारिश में भीग जाएं तो तुरंत सूखे कपड़े पहनें, गीले बालों से एसी में न बैठें, अदरक वाली चाय या तुलसी का काढ़ा जरूर लें, यही है पहला बचाव। और अब सुनिए ये भीगा भीगा गाना।

बरसात में सड़क का पानी और खुले में कटी सब्जी मतलब टाइफाइड और डायरिया को दावत। बरसात में बाहर का तालाब होना और खुले में रखा खाना अवॉइड करें। घर का बना गर्म खाना खाएं। पानी हमेशा उबालकर या आरू का ही पिएं, क्योंकि सावन में पानी दूषित सबसे जल्दी होता है।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का ये विशेष कार्यक्रम। बरसात का मजा तभी है जब सेहत साथ हो। अगर आपको बुखार, बदन दर्द या उल्टी जैसा लगे तो घरेलू इलाज में समय न गवाएं, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं 1988 की फिल्म वारिस का ये खूबसूरत सनकमा सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में।

लेकिन दोस्तों, बादल के साथ साथ बरसात में मच्छर भी एंट्री मारते हैं। घर के कोने में जमा पानी, गमले, टायर, यही डेंगू और मलेरिया के मच्छर का घर बन जाता है। कूलर का पानी हर हफ्ते बदलें और सुखाएं। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। शाम होते ही पूरी बाजू के कपड़े पहनें। सोते समय मच्छरदानी या लिक्विड वेपराइजर जरूर इस्तेमाल करें। सावधानी रखेंगे तो भाई बीमारी दूर रहेगी। और अब आनंद लीजिए इस मधुर।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

इसी मौसम में फंगल इन्फेक्शन भी शोर मचाता है। गीले जूते मोजे सीलन भरे कपड़े से दांत खाज हो जाती है। पैर हमेशा सूखे रखें, बारिश से आकर पैर साबुन से धोएं। सूती कपड़े पहने, जूतों में अखबार रख दें तो नमी सोख लेगा। एंटी फंगल पाउडर काम की चीज है। याद रखिए, साफ सफाई ही बचाव है। सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

और श्रोताओं, अब आखिरी गीत नए दौर का, श्रेया घोषाल की आवाज में बारिश का जश्न। लेकिन जश्न मनाए होश से, बरसात में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ऐसे में विटामिन सी के लिए नींबू, आंवला लें, मौसमी फल खाएं पर धोकर, दिन में 8-10 गिलास साफ पानी पिए। हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी बूस्टर है। और हाँ, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। अब इस प्यारे से रत्न के साथ कार्यक्रम समाप्ति की ओर।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

तो दोस्तों, पांच गीतों के साथ हमने जाना कि बरसात में कैसे रखें सेहत का ख्याल। याद रखिए, भीगने के बाद तुरंत कपड़े बदलें, बाहर का खाना अवॉइड करें, मच्छरों से बचें, साफ सफाई रखें और इम्यूनिटी बढ़ाएं। श्रोताओं, इस प्रोग्राम के तहत हमने आपको जिन फिल्मों के गाने सुनवाए उनके नाम इस तरह से हैं: मंजिल किशोर कुमार, लता मंगेशकर, गुलजार आर डी बर्मन,

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

द्रुत रचना के बोल हैं अति मनभावी। आपके साथ तबले पर संगति की है लखनलाल भट्ट ने। तो आइए सुनते हैं मधुसूदन भावे का राग कामोद में ख्याल गायन।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मधुसूदन भावे का राग कामोद में ख्याल गायन। विलंबित एक ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं हूं तो जन्म का, और तीन ताल में निबद्ध

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप मधुसूदन भावी का राग कामोद में ख्याल गायन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगति की लखनलाल भट्टनी और सारंगी पर लहरा दे रहे थे नजीर अहमद खां। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में। समाचारों की बस थोड़ी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को

0: मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉ हिमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।